अल्लाह मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठा लो। मूवी सिकंदर निकंदन अख्तन सस्तका, जो इसका जो म्यूजिक बजाया गया है शंकर जय किशन और हसरत जयपुरी का, जो हाथ है कलम जो से लिखा गया है वो हसरत जयपुरी है। ठीक है दोस्तों, मैं अगले प्रोग्राम को, अगले गाने को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, दम मारो दम। चलो हरे रामा हरे कृष्णा जीनातमन। जीनातमन ने काम किया है देव अनंत जीनातमन और आशा भोसले की आवाज से दोस्तों। और देखा जाए ये भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है और म्यूजिक सजाया है एरदे बिरमन। चलो मिलके सुनते हैं एवर ग्रीन लव फॉर हिंदुस्तानी रेडियो से।

जी हाँ दोस्तों, दम मारुदम अभी आप सुने थे, दम मारुदम, और हम आपको ले जाते हैं इस वक्त रंबा हो शंबा हो। चलो हम सब सुनते हैं मूवी अरमान, और हम मिलके इसे सुनेंगे दोस्तों। चलो देखते हैं प्रोग्राम में क्या क्या नहीं है।

जी हाँ, रंबा हो शंबा हो मूवी अरमान उषा उत्तम पप्पी लहरी और इंदिवार आप सुन रहे थे दोस्तों। चलो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ याद आ रहा है, देखा जाए तो पप्पी लहरी का ये डांस नंबर है याद आ रहा है। पप्पी लहरी है डिस्को डांसर का ये जो गाना है और लाइरिक से अनजान जो इस हाथ चलाया है और म्यूजिक पप्पी लहरी का है। चलो हम आप लोग सुनाते ही डिस्को डांसर और मिथुन चक्रवर्ती ने इसमें काम किया है।

जी दोस्तों, पप्पी लहरी की आवाज मूवी डिस्को डांसर, इसमें काम किया है मिथुन चक्रवर्ती, याद आ रहा है। चलो हम ले चलते हैं दिलर मेहंदी की तरफ और देखा जाए तो बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले चले, बल्ले बल्ले सब सुनते हैं। सुखवार है, वीकेंड आ गए हैं, रेड पूछो या ब्लैक पूछो उसके तफरा पर रखिए, एक बॉल मारिए, डोसा पकाइए, खाइए और कुछ नाच गाना भी कीजिए क्योंकि वीकेंड थे दोस्तों। चलो मिलके सुनते हैं दिलर मेहंदी की।

जी हाँ दोस्तों, हो जाए तो बल्ले बल्ले दिलर मेहंदी का आवाज अभी आप सुन रहे थे। हम चलेंगे बोले तारा रा रा रा रा रा रा। चलो सुन के देखे, देखते ही मिलके हम आप लोगों को सुनाते हैं। देखा जाए तो बोले तारा रा रा रा रा भी मैंने गाने को देखा है और यहाँ है वो गाना हम आपको सुनाते हैं। बोले तारा रा रा रा क्या हुआ यार, देखा जाए तो कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें। देखा जाए इसमें तो है कुछ और, हम इस गाने को रखते हैं, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें।

जी हाँ दोस्तों, जाने जा ओ मेरी जाने जा इस दे बिरमन। जी हाँ दोस्तों, चलो हम घर की तरफ देखते ही तो क्वाट फोर फिर है, इसका मतलब है हम दो गाने और चलाएंगे, उसके बाद न्यूज़ बयाम चलेंगे और हमारा कोलेगा, मैं नहीं जानता हूँ कौन सा कोलेगा, लेकिन एक सा कोलेगा फिर से ले लेगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं पढ़ते हैं आगे और बोलो तारा रा रा दिलर मेहंदी, पंजाबी गाना है दोस्तों।

जय दोस्तों, हर एक को हम यहाँ से राम राम कहते ही अस्सलाम वालेकुम रहमत रहमतुल्लाह बरकातुह और खुदा हाफिज हो, हर एक जुम्मा मुबारक हो, हर एक जो हमारा साथ दिया है हम उनको राम राम नमस्कार कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम को सुने हैं, पसंद भी करे हैं, काफ़ी लोग हैं जिसका फरमाइश से मैं दिन तक के ज़रूर सुनाऊँगा। यहाँ से हम ज़रूर विदाई लेंगे, दिन तक के मंगलवार को हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे। यहाँ से हम न्यूज़ रखते हैं, कुछ बयान है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम द्वारका ले लेगा राजन द्वारका हमारा कुलेखा जो प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए जाने के लिए, राम राम नमस्कार और खुदा हाफिज हो। हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हर रोज की तरह हमसे तुमसे होगी प्यारे प्यारे बातें और कुछ प्यारे प्यारे गाने हम आप लोग के सुनाने वाला है। जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, जहाँ तक लोग मुझे सुनते हैं, हमारा प्यार भरा पैगाम पहुँचे, ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे। आप सब जानते हैं हम सब चून है द एवरग्रीन लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे। हम आप लोग के आज चले चलेंगे कुछ मूवी, एक मूवी है जिसे काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और देखा जाए हरियाली और रास्ता के हम कुछ गाने आप लोग के सुनाएंगे। आज मेरा प्रोग्राम ऐसे रहेगा, हम हर गाने सुनाएंगे आप लोगों के, अच्छे अच्छे गाने जो हरियाली और रास्ता में गाया गया है। तो हम ले चलते हैं पहला गाना लेके चलते हैं हरियाली और रास्ता के, नई खंती तो इन शस्तक के जिसमें मनोज कुमार माला जीना ने काम किया है, शंकर जय किशन का ये म्यूजिक है और हम सुनते हैं, हम आप लोग के सुनाते हैं, चलो मिलके सुनते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता, मूवी हरियाली और रास्ता नई खतीन तो शस्त्र का, जिस पे मनोज कुमार माला जी ने काम किया है, शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ है, और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, लाख तारे आसमान पे।
1: आँख

जी दोस्तों, दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता, नेगेटिव ट्विन्स का फिल्म में मूवी, मनोज कुमार माला जीना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन रहे थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का बोले, कहीं कहीं पे राजा और रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं और हरियाली और रास्ता का निकाला गाना है।

जहाँ दोस्तों एक बार मैंने फिल्म से चला दिया था हरियाली और रास्ता का, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम सोचते हैं आगे में आप लोग के भी पसंद है। तो ठीक है, एक था राजा एक था रानी।

जहाँ दोस्तों बोले नाव तो खो गया रह गया पानी, फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे एक था राजा एक था रानी, नेकेडिन टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो मैं चलते हैं दोस्तों हरियाली रास्ता का नेकेडिन टू इंसेस्ट फिर से एक बार देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जी हाँ दोस्तों, इब्तदाए इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है। काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

ये हरियाली और रास्ता 1962 का मूवी है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो एक गीत और है, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगा। करोड़ों का दिल जीतने वाला मिलियंस ऑफ हार्ट, मुकेश का गाया हुआ गाना है। चलो हम सब मिलकर सुनते हैं हरियाली और रास्ता का ये निकाला हुआ गाना है, नेकेस्टर का है जे। ये फिल्म बिना देखे से उसे देख सकता है, काफ़ी अच्छी फिल्म है, मूवी।

जी हाँ दोस्तों, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगी, मूवी हरियाली और रास्ता नहीं कंती द मिलियन ऑफ आर्स नाइट, मुकेश की आवाज थी, शंकर जयकिशन का म्यूजिक थे। एक आखिरी गाना है फिल्म हरियाली और रास्ता का, हम सब मिलके सुनते ही परवानों की रात। आशा भोसले इस गाने को गाया है, नहीं कहते जो इस शस्त का है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप जो रहे थे एक आखिरी गाना मूवी हरियाली और रास्ता का, आशा भोसले ने गाया था, मनोज कुमार मलाजीना ने इसमें काम किया है, नेहा चिन ट्विंस का है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं मूवी हम आप लोग के लिए चलते नेहा चिन वेफन सेस्तक में, जोहर महमूद इन गोवा, आंखियों का नूर है तू, ये मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ है दोस्तों, सुलेमान कल्याणपुर जो इसका सिंगर है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश, ना लता मंगेशकर नहीं है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ है, कल्याण जानन जी का ये म्यूज़िक है। और देखा जाए आप लोग के हमले चलते हैं नेहा चिन फेफन सेस्तक में, आँखियों का नूर है तू।

चले हे चले हे चले हे ससुरार। अभी आप सुन रहे थे जोहर एंड महमूद इन गोवा, लोदो दीवाने दिल के चले हे देखो मिल के, महमूद सिमी अग्रवाल और जोहर इसमें काम किया इस मूवी में। चलो हम ले चलते हैं एक ऐसा गाना है फिल्म जोहर महमूद के, जोहर इन महमूद इन गोवा निकले फैंस तक में। और देखा जाए तो एक जो गाना अब हम रखें बहुत वही गाना है और हम सब मिल के सुनेंगे, उषा खन्ना गाई से और मुकेश इसका जो म्यूजिक बजाए से कल्याण जी आनंद जी है, और वही जलाबादा जलाबादी का ये लिखा हुआ गाना है। हम आप लोग के सुनाते हैं दोस्तों एक ऐसा गाना जो हम बहुत दिन ना सुन ली है और बहुत मिल के सुना, काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं, और अभी ये गाना आप सब के नाम है दोस्तों।

न कोई रहा है ना कोई रहेगा। जोहर महमूद इन गोवा, नेकंत इन फैन सस्त का गीत था दोस्तों। हम थे आपके आपके साथ अनिल सरजू, जो पूरा प्रोग्राम को आपको सुनाया है और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर पसंद है ये प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, अभी ठीक है, यहाँ से हम कहते ही अपना आप सबको राम राम नमस्कार। हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हर रोज़ की तरह हमेशा की तरह आपसे आज भी होगी कुछ प्यारे प्यारे बातें और सॉन्ग्स हम चलाएंगे जो आपको पसंद है। जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे और हर एक सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, अदाए बरस और सत्यकाल हो। मैं हूँ आपके खिदमत में अनिल सरजू, जो आपके साथ देंगे और कुछ पुराने पुराने गाने हम आप लोग के ज़रूर सुनाएंगे। जहाँ पे जिस घर में दुख है या मातम है, पूरा फाहुन टीम उसका दुख में शामिल है। जहाँ पे खुशी है वहाँ पे भी हम साथ हैं। दुख और सुख में हर एक को सदा साथ देना चाहिए, वैसे हम भी आपके साथ हैं। चलो दोस्तों, हम प्रोग्राम को आप चलाएंगे। एक घंटे तक हम कुछ हिले मिले जुले गीतों से आपको आपको ज़रूर सुनाने वाला है। मिल के हम सब सुनेंगे आज का प्रोग्राम और हर एक ज़रूर इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन के रख चुका है। मूवी हम सफ़र, जिसमें जितेंद्र शर्मिला टैगोर ने काम किया, लता मंगेशकर और मुकेश ने इस गाने को गाया है। देखा जाए इसका म्यूजिक जो बजाया गया है वो ही आनंद बख्शी और लाइरिक्स आनंद बख्शी और म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी। हम मिलकर सुनते हैं किसी राह पे किसी मोड़ पर। इसमें थोड़ा से कुछ गलत हो गया है देखा जाए तो, देखते क्यों आवाज नहीं आता है इसमें से।

0: सभी को राम राम नमस्कार और ढेर सारा दुलार पहुंचे, जहां तक ये आवाज पहुंचे वहां तक हमारा पैगाम पहुंचे और ढेर सारी मोहब्बत पहुंचे। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूं आपकी खिदमत में अनिल सरजू, जो कुछ हिले मिले जुले गीतों से हम आप लोग के सेवा करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन करके लाए हैं, कुछ पुराने गाने हैं, और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर आज का रेडियो प्रोग्राम फाहून द्वारा ज़रूर पसंद आएगा। आप सब चुन है द एवरग्रीन लव फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पे, और मैंने चुन करके रखा है मूवी फिल्म हम सफ़र के एक ऐसा गीत है जो लता मंगेशकर और द नाइट मुकेश ने गाया है, जो करोड़ों का दिल जीत चुका है, जीत लिया था, जीते जाते भी है। क्या आवाज़ है मुकेश और लता मंगेशकर का, आवाज़ है किसी राह में किस मोर पर। लता मंगेशकर मुकेश लाइरिक्स, जो हाथ और कलम चलाया गया है, जो सिहाही से लिखा गया है वो आनंद बख्शी है, म्यूजिक सजा करके हम लोग तक लाया है कल्याण जी। आनंद जी, हम आप लोग के मिल के सुनाते हैं, जितने लोग प्रोग्राम को सुनते हर एक के लिए ये गीत मैं पेश करता हूँ, नामोस रेडियो फाहून।
1: मैंने देखा नहीं, तुम बंसी भी बजाते हो?
2: हाँ हाँ, सुनाओ।
1: अरे अभी नहीं, क्या तुम भूल गए हो? तुम छुप कर जा रहे हो।
2: खुशी के मारे मैं तो भूल ही गया था।
1: खुशी? किस बात की खुशी?
2: न जाने क्यों।
1: राजू, तुम बहुत अच्छे हो।
2: बापू और उस्ताद के बाद एक तुम ही हो जिसने मुझे अच्छा कहा।
1: तुम्हारा अपना और कोई नहीं है?

मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मूवी मेरे हम सफ़र, किसी राह पर किसी मोर पर। चलो दोस्तों, अगले गाने को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, रख दिया है आपके लिए। मूवी हीरा हीरा हीरा तमन्ना, एल्बम मूवी हीरा तमन्ना है, और सिंगर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर। फिर से लाई दीक्षा आनंद बख्शी की, और देखा जाए म्यूजिक है लेबल शरगमा। चलो दोस्तों, हम आपके सुनाते हैं जिसमें काम किया है देवानंद और जीना तमन्ने। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।

प्रोग्राम चलाते हैं। मुकेश जी का एक गाना हम आप लोगों को सुनाना चाहते हैं, जो प्यार से गाया है, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा मूवी कति पतंग तक का है। और देखा जाए म्यूजिक डायरेक्टर है एरदे बर्मन, एक बार फिर से आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है। और हम आपके नाम करते हैं क्योंकि आप प्रोग्राम को सुनते ही जितने गाना या गीत हम चलाते हैं बस आप सबके नाम है। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं और बहुत पसंद करते, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ऐसे ही सुनते रहना, ये गीत भी आप लोग के नाम है मूवी कति पतंग के, जिसमें जितेंद्र आशा परीक ने काम किया है।

0: बाल
1: मा। जी हाँ दोस्तों, जिस गली में तेरा घर ना हो बाल मा, मूवी कति पतंग सैफन तक का ये फिल्म है जिसका आपने भी गीत को सुना है और जो जो सुनता है हर एक गीत जो मैं चला रहा हूँ बस आप सबके नाम है। चलो दोस्तों, हम अगले सांस को लगा चुके हैं अगले गाने को और देखा जाए, देखिए तो कौन मूवी दो कल्याण, दो कल्याण नीलकंठन शस्त्र का है यार। और वो देखा जाए, तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, कभी कभी हो जाता है ना, नज़र भी खफा हो जाते हैं लोग, लोग से जुदा हो जाते हैं तो क्यों खफा नहीं हो सकता है। पद्मा श्री मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का आवाज़ है, म्यूजिक डायरेक्टर रवि। हम आपको सुनाते हैं, मिल के सुनेंगे, तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई।

जहाँ दोस्तों तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, पद्मश्री मोहम्मद रफी ऑफ द क्वीन लता मंगेशकर की आवाज। म्यूजिक जिसने सजाया है वो रफी है और लाइरिक्स साहिर। मूवी दो कल्याण निखंतिन अख्तर से का, जिसमें माला सिन्हा और विश्वजीत ने काम किया है। चलो दोस्तों अगले गीत को मैंने चुन पे रख चुका हूँ। देखा जाए एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। मूवी जिंदगी और तूफान निखंतिन फैफन जैफन तक का है यार, और गाने वाला वही है मुकेश लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक है और लाइरिक्स राम अवतार। चलो हम मिलकर सुनते हैं

जी हाँ, हमारे सुनने वाले एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मुकेश की आवाज थी। चलो दोस्तों आगे ले चलते ही, ना जाने क्या हूँ। बहुत विशाल गाना है, यह गाना है लता मंगेशकर का, मूवी दर्द है नहीं कंती एनन तख्त का। न जाने क्या हुआ जो तुम छोड़ लिया, छू लिया। ये गाना हम सोच रहे सब कोई जाने और सब कोई के मोहल्ले की लता मंगेशकर की आवाज़ है और सब कोई सुनो कोई मिल के फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप सब चोर है दोस्तों, मिल के सुनेंगे। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया।

ना जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, मूवी दर्द नहीं खनते इन तख्त का जिसमें हेमा मालिनी रजेश खन्ना ने काम किया है। तो चलो दोस्तों हम आप लोग के लिए चलते हैं मूवी प्रोफेसर नहीं खनते ट्विंसेस्ट का जिसमें जामी कपूर और कल्पना ने काम किया है और गायक और गायिका है पद्मश्री मोहम्मद रफी और द क्वीन लता मंगेशकर, म्यूजिक शंकर जयकिशन और लायरी से साई लेंद्रा।

जी हाँ प्यारे सुनने वाले, मैं चली मूवी प्रोफेसर का चल हम आगे ले चलते, दूरी ना रहे कोई, लता मंगेशकर की आवाज है। और देखा जाए जी हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर म्यूजिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लायरी से कफीन आजाद मुत के जो लिखा गया है, हाथ और कलम उसी ने चलाया है। चलो मिलके सुनते हैं रेडियो फोन के जरिए से।

लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है, बयान नहीं। ये एक नाम है जिसे सुनते ही मेरे दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। टू मी शी इज इथीरियल, समवन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, लार्जर देन लाइफ, नो लेस देन अ गॉडेस, अ देवी। दिस वन नेम इवोक्स अ मिलियन फीलिंग्स इनसाइड मी। आई हैव कोल्ड फीट, वीक नीज, अ नॉट इन माई स्टमक, आई स्माइल ऑन माई लिप्स एंड टीयर्स इन माई आईज। इन अदर वर्ड्स आई फील अलाइव व्हेन आई हियर दिस नेम, लता

जी हाँ दोस्तों, तुम मुझ में समा जाऊँ, मैं तुझ में समा जाऊँ। द क्वीन ऑफ लता मंगेशकर की आवाज़ थी और कर्तव्य मूवी का नाम है और रेखा और धर्मेंद्र पाजी ने इसमें काम किया है। चलो दोस्तों, हम आप लोग के सुनाते हैं तेरे इश्क का मुझ पे हुआ है असर।

तेरे इष्ट का मुझ पे हुआ है असर। आशा भोसले पद्मश्री मोहम्मद रफीक आवाज से मूवी नागिन निकली सेशन ज़ैफ़न तक का है। ठीक है दोस्तों, मैंने वक्त से पूछा मेरा क्या कसूर था। वक्त हंस के बोला कसूर तो कुछ बड़ा नहीं था, बस तूने हर किसी को दिल से अपना समझ लिया और जिए इस दुनिया में सबसे बड़ा कसूर होता है। जहां हर रिश्ता दिल से नहीं निभाया जाता है, हाय तुम दिल से जीते रहा है और लोग मतलब से याद करता है, दिल से नहीं। ये ऐसा होता है हमारे प्यारे सुनने वाला, शायद बोलने में कुछ गलत हो गया, ये ऐसा होता है। आपकी खिदमत में मैं हूँ अनिल जारजू और आप सब द एफगे लॉ फाहौन हिंदुस्तानी पे चून है। देखा जाए तो अभी हम आप लोग के

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विदिनं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा।

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम। सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं हूँ आपके सेवक संजय और आपके साथ जुड़ गए हैं।

जो बीमार है भगवान से यही प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। जिनके घर पे एक नया जीव जन्म लिया है तो उन्हें बहुत बहुत सा बधाई दिया जाता है।

जिनका सालगिरह है आज, उनको भी बहुत सा बधाई। और ये कहना चाहूँगा कि वही श्रेष्ठ है जिसमें शब्द कम और विश्वास ज़्यादा हो, अहंकार कम और प्रेम ज़्यादा हो। और सभी प्यारे प्यारे बच्चों को भी नमन करता हूँ। हमारे सभी नाना नानी, दादा दादी, सभी जो इस समय कार्यक्रम को सुनते हैं, हार्दिक से अभिनंदन। और ये जरूर कहना चाहूँगा कि आपकी अंतर आत्मा आपका अच्छे मित्र है, उसकी बार बार सुनें।

है इसमें भी जोड़ देता हूँ कि जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताइए जो आपको हंसाए और आपको महसूस कराइए कि आप उनके लिए जरूरी है। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना संभाल कर।

किसी ने क्या खूब कहे हैं कि खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो पर कम हमेशा। भरोसे मंद इंसान के साथ बांटने चाहिए। तो इन पे जरूर ध्यान देना कि भरोसे मंद इंसान के साथ बांटने चाहिए, इस पे जरूर ध्यान दे। हम एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ते हैं।

राधा गोरी और ये सुंदर सा भजन जो इंद्रेश उपाध्याय के ओर से हम सब सुने। इंद्रेश उपाध्याय ने 2025 में ये गीत को और ये भजन को और लिख करके अपने आवाज दिया। सुनो वालों, आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत हुए। रेडियो का डायरेक्टर श्रीमान कुमार घेराव के ओर से ये संदेश रखा जाता है। कहते हैं कि माता पिता को ईश्वर से भी बड़ा मानना गया है। माता पिता को ईश्वर से भी बड़ा माना गया है क्योंकि ईश्वर भाग्य से सुख और दुख दोनों लिखते हैं, जबकि माता पिता केवल सुख ही लिखते हैं। हमारे डायरेक्टर श्रीमान कुमार घेराव जो और भी रखते हैं कि कहने से कठिन सुनना होता है और सुनने से कठिन सहना, पर सबसे कठिन होता है सब भूल जाना और सामान्य रहना।

हम एक और भजन की ओर बढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि समय सब कुछ बदल देता है। जरूरत सिर्फ सब्र की है।

फाउन रेडियो के सभी कोलेखा जैसे गंगा जी, सुरेन, भगवान दीन, राजन, द्वारका, जॉनी, सुरुजबाली, शांता खेमाई, श्याम पूरन, रोसिता गिरजा सिंह के ओर से ये सुंदर सा भजन जो प्रस्तुत किया जाता है।

सुनने वालों, कहते हैं कि आपके कर्म निश्चित ही आपसे मिलने आएंगे, क्योंकि यही आपके सच्चे साथी है। जब संसार के सारे चेहरे बदल जाते हैं, तब भी आपके कर्म आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके भाग्य का निर्माण करते हैं।

हम जानते हैं कि कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जैसे कि अभी आपने सुने कि कद में तो साया भी इंसान से बड़े होते हैं, इस पे आगे क्या लिखा गया? अपने स्वामी स्वयं बनो, आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं।

ताकतवर होकर भी झुक जाना श्रेष्ठ गुण है, लेकिन श्रेष्ठ होकर भी सामान्य रहना सर्वश्रेष्ठ गुण है।

कहते हैं कि रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह होती है, जिधर प्यार मिले उधर की ही घूम जाते हैं।

सुनने वालों, ये सुंदर सा संदेश कि रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर प्यार मिले उधर को ही घूम जाते हैं। ये प्यार भी क्या चीज है ना, क्योंकि प्रतिदिन एक नेक कार्य करे, प्रतिदिन एक नेक कार्य करे

इंसान के लिए इंसानियत बने। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सूर्य के किरणों निकल गए और एक आपके शुभ दिन प्रस्तुत किया जाता है।

प्यारे प्यारे बच्चों जो इस समय अपना तैयारी में लगे हुए हैं स्कूल के ओर पढ़ने के लिए, तो ये कहना चाहूँगा कि दोस्त, किताब रास्ता और सोच सही हो तो जीवन बेहतरीन बन जाता है।

नमो नमो शंकरा। अमित त्रिवेदी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। सुनने वालों, कहते हैं कि आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत हुए और दुनिया में सबसे तेजस रफ्तार, दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबा पर आते ही ईश्वर तक पहुंच जाती है। आप सभी को एक वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे दोस्तों, हमारे कोलेग खास जो है राजेश बदलू, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, बबली आसरा, अमित अवतार, रोमियो हाउस, करण सिंह, यूसेफ सेतु, मफरो रहीम बख्श और अनुराधा चंदर, राजेंद्र सिंह और हैन की ओर से एक और सुंदर सा भजन के ओर हम बढ़ेंगे।

कुछ खो कर लौटे या ना लौटे, लेकिन कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वे अच्छे हो या बुरा हो।

का महत्व क्या है ना, देखा जाए कि कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, लेकिन कर्म अवश्य ही लौटता है, फिर चाहे वे अच्छे हो या बुरा। कहते हैं वही कर्म करो। ये शरीर जो हमारा मिला है, इसे वही बीज बो जिसे आपको वो फल मिले जिसमें मिठास भी रहे और भविष्य में कोई कष्ट ना पहुंचे।

क्योंकि कहते हैं कि किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर नजरों में इज्जत होता है। और बोलने में लिहाज। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज। इस पे जरूर ध्यान दे। क्योंकि कर्म तुरंत नहीं बोलता, पर जब बोलता है तो सबको चुप करा देता है।

यह बात भी हम जानते हैं कि मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वस्थ है। जिस दिन स्वस्थ ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है।

तो ये कहना चाहूँगा कि बोझ बनने के लिए कुछ न कुछ तो व्यवस्था करना पड़ता है। और ये आशा रखे कि बोझ ना बने, तो मन खराब हो तो शब्द खराब ना बोले, मन खराब हो तो शब्द खराब ना बोले, क्योंकि बाद में मन अच्छा हो सकता है लेकिन शब्द नहीं।

और यही मांग रखना कि अपनी दया का भाव मेरे अपनों पर सदा बनाए रखना।

क्योंकि सुने वालों, कहते हैं कि जिंदगी में किसी का साथ ही काफी है, कंधे पर किसी का हाथ ही काफी है, दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है, अनमोल रिश्ते का तो बस एहसास ही काफी है।

हड्डी नहीं होती है, जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है, लेकिन अच्छे अच्छे को काट या जोड़ सकती है। इससे सावधानी से प्रयोग कीजिए।

इसी कारण हम सब यहां से रेडियो बनाते हैं और यही मकसद रखते हैं कि किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत दौर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज रहे।

एक ऐसा पेड़ है जो प्रेम से झुक जाता है, स्नेह से। ऐसा पेड़ है जो प्रेम से झुक जाता है, स्नेह से पनप जाता है और शब्द से

से टूट जाता है। ये संबंध भी क्या चीज है ना, कि संबंध एक ऐसा पेड़ है, पेड़ कहते हैं वृक्ष को, जो प्रेम से झुक जाता है, स्नेह से पनप जाता है और शब्द से टूट जाता है। तो वही शब्द प्रयोग करो, क्योंकि शब्द को अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता है दोस्तों। शब्द को अपने जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता दोस्तों।

क्योंकि धैर्य वे गुण हैं जो तुम्हें हर तूफान के बाद भी स्थिर खड़ा रखने का ताकत देता है। तो धैर्य रखना

और अपनी जिम्मेदारी भूलना नहीं, क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाओं में एक है जिम्मेदारी। क्योंकि सबसे बेहतरीन दवाओं में एक कहा गया है जो हमारे जिम्मेदारी है। जो भी इस दवा को एक बार ले लेता है फिर उसे कभी थकान नहीं होती है। क्योंकि भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो ही निकलता है। तो वही खेती करो।

लेखक ने बड़ा अच्छा लिखा है। उनका ये कहना है कि अच्छे लोग टुकराए क्यों ना जाते हैं, क्योंकि ये ना गलत रहते हैं और ना ही गलत करते हैं, इसीलिए ये बहुत कम लोग को पसंद आते हैं।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा।

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

नमः माता पिता चरणम् नमः विद्या प्रदायकम् दीक्षम मंत्रम गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सुनने वालों की सेवा में मैं संजय आपके साथ जुड़ गए हैं। जो बीमार है भगवान से यही प्रार्थना किया जाता है कि आपके तंदुरुस्ती में परिवर्तन आए। जिनके परिवार में एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा और बधाई दिया जाता है। जिनका आज जन्मदिन है उन्हें बहुत से बधाई भी। और मंगलमय दिवस प्रस्तुत है। जो अपने नौकरी की ओर पढ़ रहे हैं उनके ये कहूंगा कि हर बार की तरह मत भूलना कि गांधी जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ये मत सोच हमारा देश हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। जब ये माइंड आप में होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सफलता ही सफलता आपको प्राप्त होगा।

कहते हैं जहाँ सच्चाई है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ विजय ही विजय है।

जो तैयारी कर रहे हैं स्कूल के ओर बढ़ने के लिए, तो उनके लिए ये कहूंगा कि माँ सरस्वती को भूलना नहीं। क्योंकि नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नर उतात्मम देवीम सरस्वती व्यासो ततो जयमुद्रियत। क्योंकि माता सरस्वती का देन बुद्धि और ज्ञान है।

माँ सरस्वती जो आपके जीवन में ज्ञान बुद्धि एवं समृद्धि का वरदान दे। माता की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बने रहे। और जो हमारे देश में सफर पे आए हैं तो उन्हें हार्दिक से स्वागत। से स्वागत करते हुए ये कहूंगा कि आप दुनिया के एक ऐसा सुंदर देश में आए हैं जहां जो स्वर्ग के समान कहा जाता है। अनलांत फॉल मेट मिशेयस यहाँ जो रहते हैं अपने शहर को छोड़कर बगल वाले शहर को जब उस पे दृष्टि डालते हैं तो देखा जाए कि कितना बसीन स्वार्थ खेद भी है।

देश यहां सुंदर सुंदर मंदिरों भी है। जैसे कि अलमेर पैटा में श्री विष्णु मंदिर, दनहाक में सेवाधाम मंदिर, देव मंदिर और राधे कृष्ण मंदिर और राम मंदिर, अगर आप अंस्कदे में रहते हैं तो वहां भी एक मंदिर है, आरनहेम में शिव मंदिर, रोतरदाम में शिव मंदिर जो नीचे गुफा के तरह, जरूर जाकर देख जाना। श्रीमती विमला जी जो दनहाक के निवासी है, उनके ओर से ये सुंदर सा शिव तांडव प्रस्तुत करता हूं।

कौशिक नामक एक ब्राह्मण बड़ा तपस्वी थे। तप के प्रभाव से उसमें बहुत आत्मा बल आ गया था। एक दिन वे वृक्ष के नीचे बैठे हुआ था कि ऊपर बैठे हुए चिड़िया ने उस पर बीट कर दिया। कौशिक को क्रोध आ गया, लाल नेत्र करके ऊपर को देखा तो तेज की प्रभाव से चिड़िया जलकर नीचे गिर पड़ी। ब्राह्मण को अपने बल पर गर्व हो गया। दूसरे दिन वे एक सद्गृहस्थ के यहाँ भिक्षा मांगने गए। गृहस्थमी पति को भोजन परोसने में लगी थी। उसने कहा कि भगवान थोड़े देर और ठहरो, अभी आपके भिक्षा दूंगी। इस पर ब्राह्मण को क्रोध आया कि मुझे जैसे तपस्वी की अपेक्षा करके ये पति सेवा की अधिक महत्व दे रही है। और तभी गृहस्वामिनी ने देवी दृष्टि से सब बात ज्ञान ली। उसने ब्राह्मण से कहा कि क्रोध ना कीजिए, मैं चिड़िया नहीं हूँ। अपना नियत कर्तव्य पूरा करने पर आपकी सेवा करूँगी।

में वो स्त्री जो ब्राह्मणी थे उनसे पूछने लगा कि ये चिड़िया वाला बात आपको कैसे पता। तभी ब्राह्मणी ने इसे पति सेवा का फल बताया और कहा कि इस संबंध में अधिक जानना हो तो मिथिलापुरी में तुलाधार वैश्य के पास जाइए, वे आपको अधिक बता सकेंगे। भिक्षा लेकर कौशिक चल दिया और मिथिलापुरी में तुलाधार के घर जाकर के पहुँचे।

कौशिक जब मिथिलापुरी में तुलाधार के घर जा पहुंचे तो क्या होता है कि वहां तौल और नाप के व्यापार में लगा हुआ उसने ब्राह्मण को देखते हुए प्रणाम अभिनंदन किया और कहा, तपो धन कौशिक देव जी, आपको उस सत गृहस्थ स्वामिनी ने भेजा है, सो ठीक है, अपना नियत कर्म कर लो, तब आपकी सेवा करूंगा, कृपया थोड़ी देर बैठिए। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बिना बताए ही इसे मेरा नाम तथा आने का उद्देश्य कैसे जाना।

आश्चर्य से घेरे हुए कौशिक बैठे सोच रहे हैं। थोड़ी देर में जब वैश्य अपने कार्य से निवृत्त हुआ तो उसने बताया कि मैं ईमानदारी की साथ उचित मुनाफा लेकर अच्छे चीजें हित की दृष्टि से बेचता हूँ। इस नियत कर्म को करने से ही मुझे ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। अधिक जानना हो तो मगध के नीच जाता चंडाल के पास जाइए। और कौशिक मगध चल दिए और चंडाल के यहाँ पहुँचे।

चलते चलते कौशिक धीरे धीरे मगध आकर के पहुंचे, जहां चांडाल का निवास स्थान था। वे नगर की गंदगी झाड़ने में लगे हुई थी। ब्राह्मण को देख करके उसने साष्टगन प्रणाम किया और कहा, भगवान, आप चिड़िया मारने जितना तप करके उस सद्गृहस्थ्य देवी और तुलाधार वैश्य के यहाँ होते हुए यहाँ पधारे हैं, मेरा सौभाग्य है। मैं नित्य कर्म कर लूं तब आपसे बात करूंगा, तब तक आप विश्राम कीजिए।

कौशिक ब्राह्मण आश्चर्य से डूबे हुए और इंतजार कर रहे हैं और चांडाल सब सेवावृत्ति से निवृत्त हुआ तो उन्हें संग ले गया और अपने वृद्ध माता पिता को और दिखा कर कहा, अब मुझे इनकी सेवा करनी है। मैं नियत कर्तव्य कर्मों निरंतर लगा रहता हूँ, इसी से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है।

इन सारे वृतांतों को देखते हुए तब कौशिक की समझ में आया कि केवल तप साधना से ही नहीं, नियत कर्तव्य कर्म निष्ठपूर्वक करते रहने से भी अध्यात्मकता का लक्ष्य पूरा हो सकता है और सिद्धि मिल सकती है।

इस बात का समझ तो आ गया है कि हम कोई काम करें तो प्रण लगाकर सच्चे दिल से दृष्टि का संदेश आप भी समझ गए होंगे। हमारे कार्यक्रम को सुनने वाले श्रीमती विमला जी उनके ओर से गीत को मांग किया गया है।

कहानी तेरी आत्मा भी जाने और परमात्मा भी जाने। धन्यवाद दिया जाता है कि श्रीमती विमला जी जो अपने ओर से ये सुंदर सुंदर गीतों को खोज करके हमारे लिए भेजे हैं। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए

सत्य है, राधा अनंत है, राधा अनादि है, राधा भगवंत है, राधा अवकार है, राधा ब्रह्म है, राधा शक्ति है, राधा भक्ति है, राधा सबके है।

कहते हैं कि त्याग स्नेह से श्रेष्ठ है, त्याग स्नेह से श्रेष्ठ है, चरित्र सुंदरता से श्रेष्ठ है, मानवता संपत्ति से श्रेष्ठ है, परंतु संबंधों के बनाए रखने से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो एक सुंदर सा गीत और जो श्रीमती विमला जी हमारे लिए भेजे हैं, तो हम उसे सुनाने को कोशिश करूंगा।

अब तो मिला है पता नहीं फिर कभी मिलेंगे या नहीं, पर इतिहास ये भी बताते हैं कि जिससे बराबरी नहीं हो पाती लोग उसकी छवि खराब करने में जुट जाती है। शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ।

0: सुनने वालों नमस्कार, ये है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और हमारे आज कार्यक्रम में सहयोग दे रहे श्रीमती खैर लिंदा जी और अनास्तासिया जी। एक कार्यक्रम जो हॉलैंड में होने वाले हैं, जिसमें स्पिरिचुअल के अंतर्गत में सुनाया जाएगा, बताया जाएगा। और सद्गुरु जी जो फ्रेंच यानी कि फ्रांकरेक से यहाँ आने वाले हैं, तो हमारे कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं अनास्तासिया जी। अनास्तासिया जी, आप जो कहते हैं हम सबको कि हम गोरे लोग, और कैसे आप हिंदी कितना अच्छे से बात करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है।
1: धन्यवाद।
0: बड़ा धीरे से आपने कहे कि धन्यवाद, कहने के तात्पर्य यह है। दोस्तों सुनने वालों, अनास्तासिया जी कुछ सालों जो भारत में रहे हैं और भारत में रह करके अपना भाषा हिंदी खूब अच्छी तरीका से बात कर लेते हैं और उसमें मराठी भी बात कर लेते हैं। तो अनास्तासिया जी, पहले अपने बारे में हम सबको सुनाइए कुछ।
1: हाँ, तो मैं जब 4 वर्ष की थी तो मेरे पिताजी और माताजी एक आश्रम में, गोवा में स्थित एक आश्रम में रहने के लिए गए थे। और मैं 4 वर्ष की थी तो तब से वहाँ 15 साल रहती थी आश्रम में, गोवा में। मैं स्कूल में जाती थी वहाँ गोवा में, और वहाँ से मैंने मराठी हिंदी दोनों सीखा। मुझे भी गोवन लैंग्वेज कोंकणी भी थोड़ी आती है। मैं जन्म से साधना में साधना कर रही हूँ। मेरे पिताजी माताजी मेरे जन्मे के पहले साधना करने का शुरुआत किया था, और मैं साधना में बड़ी हो गई। और मैं छोटीपन से भगवान पर बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण बहुत बहुत प्यारा है और मैं उनके साथ बहुत बात करती हूँ। तो ये मेरे बदल थोड़ा थोड़ा है।
0: अनास्तासिया जी, आपने अति सुंदर रूप से ये संदेश को रखे कि भगवान से प्रेम करना कैसे होता है, और इसी अंतर्गत में और जो जाकर के सद्गुरु जी हमारे देश हॉलैंड में आने वाले हैं, कार्यक्रम जो होने वाला है सेवाधाम में मंदिर में, हम सब अभी सुनने वालों जरूर उसके बारे में बात करेंगे कि कई बजे और कब और कहां पर कार्यक्रम को रखा जाएगा। पर अनास्तासिया जी, हमें थोड़ा से संदेश दीजिए कि सद्गुरु जी जो अपने बचपन जो फ्रेंच में जिनका जन्म हुआ नेहतीन एनन शैफंतक में, और उन्होंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, उनके जब बायोग्राफी जब देखा जाए कि बचपन से उन्हें कुछ था भगवान के रुचि, थोड़ा से उसका और संदेश हम सबको लिए रख दीजिए।
1: हाँ, तो बचपन से मेरे पिताजी को भगवान में बहुत विश्वास था। लेकिन हमारे माता पिता, उनके माता पिता भगवान में बहुत विश्वास नहीं करते थे। लेकिन मेरे मेरे पिता के माता वो जीसस पर बहुत प्रेम करते थे, और वे पिताजी को भगवान के बारे में बहुत सुनाई देते थे। फिर पिताजी बड़े होते होते एक सुपर मॉडल बन गए, और सुपर मॉडल में वो काम करते थे। और फिर जापान में गए, जाकर उनको मेरे माताजी से मिलना हुआ। मेरे माताजी तब साधना में शुरू उनने किया था, और फिर माताजी ने बाबा को, सद्गुरु को साधना में उनके बारे में सब बताया। और फिर तब से पिताजी को ऐसे लगा कि अब मुझ मेरा जो सर्च था, या उनको बहुत ऐसे लगा लगता था छोटेपन में कि मुझे कुछ तो चाहिए। और फिर बाद में उनको लगा कि अपने मैंने ढूंढा जो मुझे चाहिए था। और फिर वे साधना करते करते, जैसे मैंने बताया, जब मैं 4 वर्ष की थी तो हम आश्रम में गए थे। अभी मैं 22 इयर्स की हूँ। वहाँ साधना करते करते वे ऐसे सारे नाम का एक, जैसे गोवा में सनातन संस्था ऐसे नाम का ये है, ऐसे सारे एक ब्रांच है उससे। तो मेरे पिताजी उन इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया उनने SSRF को सब संभालने का। और SSRF क्या है, वो सनातन साधना के तरह, लेकिन सब बाहर के लोगों के लिए। लाइक इंडिया में भी साधक आ सकते हैं SSRF में, लेकिन अब्रॉड ऐसे सब विदेशी लोग ऐसे जो साधना कर सकते हैं, क्योंकि विदेशी में थोड़ा अलग है इंडिया के तरफ। तो पिताजी ने ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उनको सबको साधना कैसे अच्छे से कर सकते हैं ऐसे सब सिखा रहे थे। नाम जप कैसे करना, भगवान को कैसे बुलाना, हमारे जो दोष है वो, हमारे जो बेस जेलसी ऐसे सब जो दोष है हमारे में, तो वो कैसे निकाल कर गुणों को अंदर लाने के लिए ऐसे सब कैसे। तो फिर दूसरों लोगों को भी साधने बारे में कैसे बुलाना, कैसे बताना, कैसे उनको वो जो माया है उससे बाहर निकालने का, उनको चैतन्य पॉजिटिविटी ऐसे सब लाने के लिए कैसे साधना कर सकते हैं। नाम जप, दोष निर्मूलन, ऐसे सब छोटे छोटे जो है वो कैसे सब अच्छे से करने का, और भगवान के चरणों में कैसे जा सकते हैं, ऐसे सब वो सब विदेशी साधकों को सब लोगों को सिखा रहे थे। और वो करते करते हमारे जो गुरु है इंडिया में, उनके गाइडेंस और उनके मार्ग से मेरे पिताजी 2018 में सदगुरु तक पर पहुंचे। और अभी हम एक जर्मनी आश्रम कर रहे हैं। तो 2021 में हमारे गुरु ने बोला कि जर्मनी में हम आश्रम बनाएंगे। तो पिताजी को पूरे जर्मनी को फिर कर उनको बोला कि आप एक आश्रम ढूंढो। तो 2 वर्ष मेरे पिताजी पूरे जर्मनी आश्रम ढूंढने के लिए उन्हें प्रवास किया। और फिर 2022 में हमको आश्रम मिला, एक जर्मनी आश्रम अलरोडे में। तो अभी मेरे पिताजी उनके रेनोवेशंस और साधकों को साधने के लिए कैसे बढ़ा सकते हैं आश्रम में, ये सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी यहाँ ले रहे हैं। तो ये थोड़ा मेरे पिताजी के बारे में है।
0: बहुत अच्छा रूप से आपने ये संदेश को रखे कि देखा जाए कि आपका यानी कि सद्गुरु जी जो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने सिर से लेकर के हम सब के लिए, क्योंकि हम सोचते हैं हमने जीना सीख लिया, पर जीना असलियत में जहाँ पर आनंद को प्राप्त कर सके तो साधना, और कैसे साधना होगा, इस अंतर्गत में सद्गुरु जी जो हॉलैंड देश सेवाधाम में आने वाले हैं। अनस्तासिया जी, मैं आपसे ये प्रश्न रखना चाहता हूँ कि सेवाधाम में, जैसे कि हमने सुने हैं कि 17 को आप लोग फ्रेंच से छूटने वाले हैं और 18 को आप लोग नेदरलैंड्स यानी कि डेन हाग में पहुंच जाएंगे, तो कई बजे और कहां पर ये कार्यक्रम रखा जा रहा है?
1: तो 19 सितंबर को हिंदू सेंटर सेवा धाम इस जगह एक प्रोग्राम चलेगा।
0: सेवाधाम जो डेन हाग शहर में है अल्बर्ट प्लेन पे, और वहां पर ये कार्यक्रम चलेगा 19 सितंबर को।
1: हाँ, वो एक दिन, और दूसरा दिन भी 20 सितंबर, दो दिनों में वो प्रोग्राम होगा।
0: और अनस्तासिया जी, जब देखा जाए कि 19 सितंबर शनिवार होता है, तो कितने बजे से कितने बजे तक कई सेशंस रखा जाएगा, इसके बारे में हम सबको जरूर बताइए।
1: हाँ, तो पहला सेशन 10 o'clock इस बजे होगा,
0: 10 बजे सुबह में।
1: हाँ, 10 बजे सुबह में शुरू होगा। मैं मेरे पिताजी को हिंदी में इंट्रोड्यूस करूंगी और फिर गणेश श्लोक बताऊंगी, और फिर बाद में पिताजी श्री राम नाम जप का एक मेडिटेशन सेशन लेंगे। उसके बाद हम, मेरे पिताजी एक्सप्लेन करेंगे कि नाम जप कैसे चलता है और कैसे हमको लाभ मिलता है नाम जप करते, और किसी को भी प्रश्न या ऐसे कुछ पूछना है तो इस टाइम में भी पूछ सकते हैं।
0: और देखा जाए ट्रांसलेट करने वाले यानी कि अनस्तासिया जी जो रहेगा, और हर रविवार को वहाँ हम लोग सेवाधाम में मंदिर भी लगाते हैं, जो कि दिन में 2 बजे से शुरू होता है 6 बजे तक, और इसमें कार्यक्रम रविवार का कार्यक्रम कितने बजे से कितने बजे तक है?
1: रविवार का कार्यक्रम 10 से 12 बजे
0: तक। तो दोस्तों सुनने वालों, आपने सुने हैं कि हमारे देश में और हम सब को और संदेश देने के लिए सद्गुरु जी, जिन्होंने बहुत से तपस्या किया है, बहुत सा और फ्रंट वार्डिंग भी पाए हैं, और जाकर के हमारे साधना के लिए, स्पिरिचुअल के लिए कैसे किस प्रकार से हम सब उस पे और ध्यान दे सकते हैं, और इस प्रकार से जो यहाँ डेन हाग में कार्यक्रम होने वाला है। और अनस्तासिया जी, हम सब के जो अभी और भी संदेश सुनाने वाले हैं, कहने के तात्पर्य यह है कि हम अपने पितरों के बारे में क्या कर सकते हैं। अनस्तासिया जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और सदगुरु जी हम सबको क्या संदेश सुनाने वाले हैं? क्या हम सबको अभी से कुछ आप सुना सकते हो?
1: हाँ, तो अब थोड़े दिनों में पितृपक्ष आने वाला है। तो पितृपक्ष क्या होता है? जब पितृदोष हमारे ऐसे बहुत लेवल्स होते हैं, तो पाताल होता है, फिर भूमि, फिर भूमि तत्व, फिर ऐसे दूसरे दूसरे लेवल्स होते हैं भगवान तक। तो ये पितृपक्ष क्या होता है? जब पितृदोष हमारे तो रीजन होता है, वहां वे नीचे ऊपर से नीचे आते हैं और उनका हमारे पर इफेक्ट और होता है। तो उन दिनों में हम कैसे पितृदोषों को के जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं उनसे कैसे हम सेफ रख सकते हैं? तो हम कैसे सेफ रख सकते हैं हमको? तो एक होता है नाम जप करने का, श्री दत्तात्रेय का। तो दत्त श्री दत्त जी पितृदोषों को यहाँ से भगवान तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इनका वो भगवान होता है। तो उन पितृपक्ष के समय रोज दत्त जी का नाम जप कर किया तो हमको पितृदोषों से कुछ होता नहीं।
0: बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं अनस्ताशिया जी, हम सब यहाँ पर कभी कभी लोग अपने मुसीबतों को लेकर के और हम कहीं मंदिर में या कहीं मुसीबत के जहाँ पर पहुँच जाते हैं, कोई हल नहीं मिलता है और हल नहीं मिलता है, और जबकि हमारे अपने हमारे पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, इस पे जो हम ध्यान दे तो हम उससे कितना बच सकते हैं ना। हम देख रहे हैं हमारे सद्गुरु जी भी कुछ शायद हम लोग के साथ और बातने वाले हैं, तो हो सके तो सद्गुरु जी से और हो पाए तो हम सबको सुना दे। सद्गुरु जी को भी नमन करते हुए अगर हो सके तो आप थोड़ा से कुछ संदेश सद्गुरु जी से हम सबके लिए यहाँ के रेडियो के वास्ते कुछ सुना सकते हैं?
1: हाँ, तो ये मेरे पिताजी हैं सद्गुरु सिरियक वाले, वे अभी हॉलैंड में आएंगे प्रसार करने के लिए। उन हम सबको नाम जप और साधना के बारे में बताने के लिए अभी पिताजी थोड़ा एक छोटा मैसेज बताएंगे साधने के बारे में।
2: नमस्कार संजय, I live in India for almost 12 years. Come to India for more than 25 years now, since 1999, and live in ashram to practice the beauty and knowledge of Sanatan Dharma and India. And this for us is not making this knowledge available for people in the West. Because the importance of sadhana, spiritual practice, because even many Hindus who live abroad, even though they have learned all this sanskar of shastra, of the science of spirituality, they actually are not practicing it, or they don't know all the knowledge also. So I think this is also why we are traveling in caravan, speaking in temples to share the knowledge. Because people from India, or who have born in India, or grow up, or born also outside India, they have that understanding, that knowledge, but they don't know sometimes the why and how to put it into practice. So this is in a way what we will be sharing also in the temple. And this is a different lecture also. I'm traveling across the world and as we're doing lecture in different temple also. And they understand immediately the knowledge, like we will be speaking about Pitru Dosh, about this concept of departed ancestor. By God's grace, we all know this knowledge. And the West people, we have to start from scratch, from zero, because they have no concept of the concept of Pitru Dosh. And sometimes the solution is very simple, but we have to do it into practice. It's not only rituals, of course there is rituals, but it's chanting also. Chanting like what we call Nam Jap or Namasmaran of Sri Gurudev Datta. Myself, that was my biggest anubhuti, spiritual experience, before I went to India, because whatever I was experiencing, I didn't know, and I was smoking. I was in 3 days when I started chanting Sri Gurudev Datta. I stopped smoking within 3 days.
0: So there is a lot of things. So you can by chanting, you can progress in your life.
2: Of course, you not only you make progress, but you also give momentum to your departed ancestors. That's what people don't know. You free also your ancestor who are in a way in Vuva Lok or the different Lok, to be able to move on and get reborn. So not only your problem can be alleviated, and at the same time you give them that momentum. So that's why also there is this ritual, puja or ritual that can be done. But puja or ritual has limitation. There are few places in India where this special ritual is done for ancestor. But the chanting, namja, it is in our hand. And it is something we can do. And that is the power of Sri Gurudev Dutta. We have even published on our website, that's why we have a website called ssrf.org. And we have published more than 900 articles of all the knowledge from actually based on Hinduism. And of course, the science of spirituality. And we explained a lot about this concept of Pritu Dosh, and so many testimony we have from people across the world and religion. They were able to overcome many problems, addictions, depression, insomnia, the different type, because the root cause in today's time, often the problem that people see is that it is addressed at the physical level or psychological level. But sometimes the root cause may be actually spiritual in nature, and people don't know. All the modern science is not taking that into consideration, except of course in India, where that knowledge of Pritu Dosh is known, but not all known in all India.
0: We are very happy that Sadhguruji is visiting Holland at Den Haag Sewadham. So I'm very glad to meet Sadhguru, and so I think also everyone that are tuned now at Fahon Hindustani Radio shall be at Sewadham at 19 September. There are sessions 19 September and also sessions Sunday 20 September. So I cannot wait to see you, Sadhguruji. Namaskar.
2: Namaskar, and see you in a few days.
0: नमस्कार अनस्ताशिया जी, आपको भी नमस्कार कर कहते हूँ, और ये कहना चाहूंगा कि आप मराठी में नमस्कार कर देना प्लीज.
1: हाँ ठीक है. नमस्कार, माझं नाव अनस्ताशिया. मी सगळ्यांना माझा भावपूर्ण नमस्कार सांगते, आणि आम्ही तुम्हाला हॉलंड मध्ये भेटू. नमस्कार,
0: धन्यवाद. सुनने वालों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और ये संदेश जरूर आप सुन करके इस पे ध्यान देना, क्योंकि ये कार्यक्रम एक भी सुंदर कार्यक्रम होते होने वाला है, जो स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत में सेवाधाम मंदिर से और रखा जा रहा है. 7 19 सितंबर को 10 बजे सुबह से कार्यक्रम होने वाले हैं, और उसके बाद में रविवार को जो 10 बजे सुबह से भी कार्यक्रम सेवाधाम मंदिर में होने वाला है. नमस्कार आप

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, सुना दी हमको नजीम और उमर वागित हुसैन। चलते हैं सुनते हैं इस बार फिर है उमर वागित हुसैन की आवाज़ में।

दिन बिक जाएंगे, बिक जाएगा माटी के मोल। बस अच्छे अच्छे यादगार जो है वो रह जाएगा, बुरा जो करोगे तो वो भी रह जाएगा।

एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। और खास बात ये है, ये म्यूजिक जो आपने सुने ये गीत में, ये म्यूजिक दिया है ज्वाला जी। कितना अच्छा बात है ना।

बेमिसाल गीत आपके लिए पेश किया जाता है, द वन ओनली। हाँ वही फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। कहते हैं कि जिंदगी ख्वाब है,

0: सच है क्या? सब सच है।
1: सब सच है, सुना दे मुकेश जी। जिंदगी ख्वाब है और ख्वाब में बताओ सच है क्या, कि आंखें खोले और सपने टूटे, पर वो सपना जो हम देखते हैं उसे हमें हकीकत में बनाना है, मेहनत करना है, परवेश अलग करना है, हिम्मत से आगे और बढ़ना है। यहाँ से चल हम कुछ मिले जुले गीत सुन लेते हैं मुकेश जी के आवाज में। इस बार आपके लिए है तौबा ये मतवाली चाल।

0: लोगों के इस स्पेशल ऐप के लिए। ऐसे मतवाली चाल है कि झुक जाता है, तौबा ये मतवाली चाल झुक जाता है, ये सब जो है आमने सामने ये सब रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। पत्थर के सनम फिल्म का नाम।
1: अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना, और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने तो मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज। अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना, और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने तो मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज। अरे
0: जिनके पास रोने वाले की फौज बहुत ज्यादा है। हकीकत में मौत तो आते हैं, ये तो सही है, ये एक अहम सच है। इससे बचने वाले तो कोई नहीं है। मौत तो आएगा, एक दिन तो आएगा, किधर से आएगा ये तो पता नहीं, पल हम तो जी ले, जी ले जिंदगी, हंसी बना ले, यादगार बना ले, कि जो आप ना रहेंगे कोई भी जो रहेगा तो जरूर से याद करेंगे, दो आंसू जरूर से बहाएंगे, अगर आंसू नहीं बहाएंगे तो जरूर से अपने चेहरे में कुछ ऐसा याद आपके लाएगा जो खुश हो जाएगा, मुस्कान लेगा, और ऐसे कुछ भी आप करके जाओ कि वो तालीम याद रखे।

खूबसूरत गीत हमको सुना दी है मुकेश जी, साधे रहती लता जी। फिल्म का नाम है मिलन। जी हाँ, हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के

0: लिए मैं ये रखी हूँ, जरूर से इसे हमें मिलकर और सुने।
1: जब थाली में खाना खत्म हो जाता है ना, तो थाली गंदी लगने लगती है, उसको कोई भी प्यार से नहीं देखता। ठीक वैसे ही जब आपकी जरूरत लोगों को खत्म हो जाती है, तो आप उन्हें बेकार लगने लगते हो, आपकी कोई भी कीमत नहीं होती। पर पता है, थाली गंदी नहीं होती, वो तो किसी का पेट भर चुकी होती है। ठीक वैसे ही आप भी बेकार नहीं हो, आपने तो लोगों की जरूरत में उनका भरपूर साथ दे दिया है। आज उनको आपकी जरूरत नहीं है तो उन्होंने आपको छोड़ दिया, तो इसका मतलब आप ये मत समझो कि आप बेकार हो। आपकी कीमत लोग तय नहीं करेंगे, आपकी कीमत आपके किरदार से तय होती है।

सुंदर गीत मुकेश जी और लता जी फरमा दी है। हमने सुने बर्तन और थाली, थाली और खाना के साथ जो खाना दोन हो गए तो थाली हम किनारे धर देते हैं, पर ये ना सोचना कि थाली में अब वो कीमत नहीं है, थाली हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे। वैसे आप भी कभी मत सोचना कि आपसे कोई फायदामंद उठा ली है, आपसे कोई फायदा उठा ली है, तो बुरा ना मानना, आप अपने के खुद कीमती समझना कि आपसे कोई एक कदम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आप में वो औकात है, आप वो फौलाद है कि आप किसी के जरूरत पूरी कर सके हो। एंड लातु सेल्फ नीत मिसप्रयोग माकन देंक खुद ना एंड कैक वेल खुद आउट हेल्प एलकार हेल्प दैट इज अ गुड टेकन मा गेन मिसप्रयोग माकन लेट वेल दैरोप वंट वी हैव एलकार नोदिग सोंदर एलकार कुनन वी नीत फर्दर verdwijnt u in het eenzaamheid

0: आज अरे अब मेरा दिल पुकारा आप कहाँ हो। लता जी और मुकेश जी की आवाज में सुने हम फिल्म आ। हाँ हाँ, फिल्म आ से ये सुंदर सा गीत निकाल दिया गया है।
1: याद आती है रे तेरी, मैं तुझे कॉल नहीं करता, तुझे मैसेज नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे याद नहीं करता। मेरे भाई, मैं जब भी किसी रास्ते से गुजरता हूँ, जब भी कुछ खाता हूँ, जब भी दो लोगों को साथ देखता हूँ ना, तो तेरी बड़ी याद आती है। बहुत याद आती है रे तेरी, मैं तुझे कॉल नहीं करता, तुझे मैसेज नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे याद नहीं करता। मेरे भाई, मैं जब भी किसी रास्ते से गुजरता हूँ, जब भी कुछ खाता हूँ, जब भी दो लोगों को साथ देखता हूँ ना, तो तेरी बड़ी याद आती है।
0: वाकई में याद तो दिल में रहता है, कभी कोई आपका मैसेज ना करे या कॉल ना करे तो ये ना समझना कि आप उनके दिल में नहीं हैं। कभी कभी वक्त ना मिलता है कॉल करने के लिए, मैसेज देने के लिए, तो आप थोड़ा से वक्त निकाल कर उनसे पूछ लेना कैसे चल रहा है। कहना कि अच्छा वो नहीं मेरे को कॉल करते हैं या मैसेज करते या कांटेक्ट नहीं करते तो मैं भी नहीं करूंगा, ऐसा मत सोचना। आप थोड़ा से वक्त निकाल के बस आप ही पूछ लेना तो देखना कितना तारीफ करेगा, वो भी महसूस करेगा कोई तो है जो मेरे को याद कर रहे हैं।

0: खींचता फेंको फूल बड़ा नाजुक होते हैं, अवश्य फूल बड़ा ही नाजुक होता है। मुकेश जी और लता जी की आवाज में हम सुने फिल्म का नाम प्रेम कहानी। वही मैं ढूंढ रही थी कि फिल्म का नाम क्या है। फिल्म का नाम प्रेम कहानी। आपके लिए ये सुंदर सा डायलॉग।
1: जय श्री कृष्णा। असफलता अंत नहीं होती, वो दिशा बदलने का संकेत होती है। जब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हमने चाहा, तो जीवन हमें रुककर सोचने का अवसर देता है। असफलता हमें कमजोर नहीं बनाती, वो हमें सच्चा और गहरा बनाती है। जो गिरकर उठना सीख लेता है, वही आगे चलना जानता है। सत्य में ही स्वतंत्रता है। झूठ मन को बांधता है और भय को जन्म देता है। पर सत्य हल्का होता है, वो किसी

अभी आप सुन रहे थे वफा जिनसे की बेवफा हो गए वो वादे मोहब्बत में क्या हो गए। दमायती मुकेश जी प्रोग्राम में फिर से आने वाले हैं। तू मिले तो पूछूं तुझसे क्या है ये न्याय तेरा।

दमाई तेमुकेश जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे। तो मिले तो पूछो तुझसे, क्या ये है न्याय तेरा, दुनिया को दिए उजाले और मुझको दिया अंधेरा। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, जो जितना दूर होता है नज़रों के, उतना ही वो दिल के करीब होता है। मुश्किल से भी जिसके एक झलक देखने को मिले, वो जिंदगी में सबसे खास होता है। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी एक थी रीता से आप सुनेंगे, मैं किसे अपना कहूँ आज मेरा कोई नहीं, लता जी के साथ में, द मैन विद द गोल्डन वॉइस मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

मोफी एक थी रीता से अभी आप सुन रहे थे। मैं किसे अपना कहूँ, आज मेरा कोई नहीं। जब कोई इंसान अपना दर्द किसी से नहीं कह पाता है, जब कोई इंसान अपना दर्द किसी से नहीं कह पाता है, तो वो उस दर्द को अपने डीपी या स्टेटस लगाकर बताने की कोशिश करता है। बस ज़रूरत होती है तो उस इंसान की जो उसे समझे। अभिलाषा है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं वादियाँ मेरा दामन।

फ्रॉम द मूवी अभिलाषा से हमने पेश किए हैं वा दिया मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। लता जी आपको सुनाने वाले थे। मांगी थी मैंने दुआ रब से देना तो कुछ ऐसा दो जो हो अलग सबसे। रब ने मिला दिया हमको आपसे और कहाँ बस यही कार्टून डिफरेंट है सबसे। फ्रॉम द मूवी आया सावन झूम के इसी फिल्म से हम पेश करेंगे। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो। मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आया सावन, झूमके से अभी आप सुन रहे थे। सुनने वालों, शर्ली जी भी प्रोग्राम को सुन रही है और ये गीत खास करके हम पेश करते हैं शर्ली जी के वास्ते और सभी प्यारे प्यारे सुनने वालों के लिए। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे तो कभी बेगाना। फ्रॉम द मूवी आंसू बन गए फूल से आप सुनेंगे किशोर दा और आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं।

जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना। फ्रॉम द मूवी आंसू बन गए फूल से हमने पेश किए हैं, और ख़ास करके ये गीत हमने पेश किए हैं शिरली जी के वास्ते और सभी प्यारे प्यारे सुनने वालों के लिए। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, लता जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। फ्रॉम द मूवी आंखें से आप सुनेंगे।

0: रहते कभी कभी।
1: अभी आप सुन रहे थे मिलती है मोहब्बत यानी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आंखें से हमने पेश किए हैं। रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता, क्योंकि वक्त तो सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, मगर बीता हुआ वक्त कभी लाया नहीं जाता। मुझे ऐसा मिला मोती फ्रॉम द मूवी पिघलता आसमां से हम पेश करेंगे आप सभी के वास्ते। लता जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

आप सुन रहे थे मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई अंबर में ना होगा। लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी पिघलता आसमां से हमने पेश किए हैं। दुनिया को हकीकत मेरी पता कुछ भी नहीं, इल्जाम हजारों है और खता कुछ भी नहीं। मेरा दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे, सारे पन्ने भरे हैं और लिखा कुछ नहीं। चला भैया आजा रसिया, फ्रॉम द मूवी मन की आंखें से हम पेश करेंगे आप सभी के वास्ते। लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे चला भैया आजा रसिया फ्रॉम द मूवी मन की आंखें से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी और लता जी आपको सुनाने वाले थे। किसी के आने से जिंदगी नहीं चलती और किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस इंसान कभी कभी थक हार कर रुक जाता है, इसी का नाम जिंदगी है। और मैं आप सभी से भी यही कहना चाहूँगी कि वो ये है कि न कभी वक्त ठहरता है और न कभी जिंदगी ठहरती है, बस हम लोगों को आगे जानी चाहिए। हम दोनों मिलके कागज़ पे दिल के यानी कागज़ पे दिल दे चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा, ज़रूर आएगा अगर आप चिट्ठी लिखेंगे तो। तुम्हारी कसम है फिल्म का नाम, दमयंती मुकेश जी के साथ में आशा जी आपको सुनाने वाले हैं।

आकाश में की आवाज में भी आप सुन रहे थे किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। काश भी एक बार फिर से प्रोग्राम में आ रहे हैं, तुम अगर साथ देने का वादा करो।

काश बी की आवाज में भी आप सुन रहे थे, तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नखमे लुटाता रहूं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।

सुनने वालों, कसम वादे प्यार वफा सब बात है बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। वाह ई आए नीले गगन के तले, चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे नीले गगन के तले। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करेंगे आप सभी के वास्ते। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये गीत जो है वो सच्चाई की तरफ आपको ले जाएगी। और हम खास करके धन्यवाद देना चाहते हैं भाई सुरेन भगवान दीन जी को, जिन्होंने ये गीत मुझे भेजा और मैंने ये गीत को ढूंढ लिया और ढूंढते ढूंढते आज आपके सामने मैं ये सॉन्ग ला रही हूँ।

आप सुन रहे थे 50 साल पहले, क्या हकीकत है सुनने वालों। थैंक यू ईआई। ईचक दाना बीचक दाना।

अभी आप सुन रहे थे निशा भी और अविंदा सिंह जी की आवाज़ में ईटक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना। उषा उत्तर पा रहे हैं प्रोग्राम में। चलिए ये हो जाए आप सभी के नाम।

वाह क्या बात है। उषा उत्तप जी आपको सुना रहे थे लंबादा, बेन पराख और सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों। आ भी जा माहिया।

अभी आप सुन रहे थे सविता सिंह और बेन पराख की आवाज में रात भर मेरी पायल छनकती है। सुनने वालों, जब गर्मी होते हैं ना तो पंखा की ज़रूरत तो बहुत होती है। तो निशा जी यानी निशा बी जी आपको क्या सुनाने वाले हैं बताओ? क्या नहीं बताने वाली, खुद सुन लीजिएगा।

निशा बी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे पंखा तो लाई दियो ना सजन जी, पंखा तो लाई दियो ना, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी लगेगा ज़रूर। पृथ्वी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, श्याम सुंदर गगरी

0: వక్రతుండా మహాకాయ సూర్యకోటి సంప్రభా నిర్విధినం కురుమే దేవా సర్వకార్యషు సర్వదా. రుబ్రరు మిల్నే కా మౌకా నహీ పా రహా హూ అత శబ్దో సే అప్నో కో నమన్ కర్ లేతా హూ. ప్రత్యేక వ్యక్తి కిసీ నా కిసీ రూప్ మే శ్రేష్ఠ హోతా హై, ఇసిలియే ఆప్కీ శ్రేష్ఠతా కో హార్దిక్ సే నమస్కార్ కర్తా హూ. ఫౌన్ रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से नमन करते हुए एक बार फिर हम सब उपस्थित हो गए स्टूडियो में कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर. और हमारे साथ कोलेखा साथी, नाम क्या है आप खुद ही बता दीजिए.
1: साथ साथ मैं भी यहाँ से संजय जी स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरे नमस्कार ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में.
0: अभी शांता जी वही गीत चला देते हैं क्योंकि हमारा माइक तो ठीक ठाक चल रहा है, आप इधर उधर अपना माइक कर रहे हो.
1: अच्छा,
0: पर कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह जी अभी आने वाले हैं और अनुराधा जी भी भारत से जुड़ने वाले हैं, तो क्यों ना पहले चला देते वही गीत जो हर हफ्ता के तरह, कि तेरा राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डड़े.
1: ये भी साथ साथ जैसे आपने कहा तेरा राम जी करे बेड़ा पार, ये ज्योति का प्रकाश के एक जान से हैगा.
0: बिल्कुल बिल्कुल. हाँ। ज्योति का प्रकाश के एक जान से, क्योंकि जब शुरू हुआ था ना कहते कई साल पहले के हमने शुरू किए ये. हाँ। कार्यक्रम और हम सब बैठते थे एक साथ में और ये गीत हर बार, ये कुछ 7 मिनट के गीत है भी,
1: फिर भी लगता है
0: फिर भी ऐसे ही 2 मिनट के लगता है. पर बिल्कुल ये ज्योति का प्रकाश का जान को चला दीजिए
1: जी.

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तो शांता जी, क्या आपको पता है कि मौसम कैसे है आजकल?
1: मौसम एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। इसमें कुछ कहने के और बोलने के और कुछ तुलना करने के नहीं है।
0: क्योंकि देखिए, अभी देखा जाए कि 2019 में ऐसे ही गर्मी हुआ था हॉलैंड में, जो ये प्रोग्राम बन रहा है 2026 में,
1: हाँ।
0: और इसे चलाया जाएगा शायद 2028 में भी और 2030 में भी। पर फिर भी कहने के तात्पर्य यह है, 2019 में ऐसे ही गर्मी हुआ था और तब उस समय लोग पानी पी पी करके और बस कोई भी अपना काट लिया। पर अब यहाँ पर आज के न्यूज में बोल रहा है कि कल कितना प्रोफेंसी में कौदर रोत है।
1: ओ, और आया से रोत हो गया,
0: रोत हो गया।
1: हाँ, कल कन्या वोंस तक था, कन्या वोंस तक से शुरुआत हो गया रहा कौदर।
0: 40 खराद होलांग में होने लगा। तो अभी मैं इंडिया से बात हो रहा था मास्टर जी के साथ,
1: हाँ हाँ,
0: तो वो जो राजस्थान में थे और अभी फोन करने वाले है वो, क्योंकि वहाँ का गर्मी और यहाँ का गर्मी अब तो लग रहा है कि दोनों एक ही जैसा हो गया।
1: डिग्री जो है, खराद जो है, वो एक ही सा है, पर वातावरण जो है भारत का और हॉलैंड का फर्क है
0: वातावरण।
1: हाँ, कारण कि भारत में सभी सड़कों के किनारे में बहुत सा पौधा लगा है, पेड़ लगा है, तो पेड़ के अनुसार वो सड़क जो है उसको ठंडा रखता है, जो मैं नहीं पिघले, और वहाँ पे काफ़ी भी हरियाली है
0: ऐसा।
1: हाँ, और यहाँ पर हमारा नीदरलैंड में वही देखकर यहाँ पर भी बहुत सारा हरियाली लगाते हैं।
0: और देखा जाए कि कहीं नहीं कितना खरादर पे अस्फाल्ट भी गलने लगता है ना।
1: अस्फाल्ट सिर्फ नहीं, हमारा बैग जो है, हमारा चप्पल जूता, वो सब गलने लगता है,
0: गलने लगता है।
1: और पहिया जो गाड़ी का पहिया, वो सब भी गलने लगता है।
0: अभी हमें ये बात आपसे बात कर रहा हूँ तो ये ख्याल आता है कि 2019 में एक फोटो जो अखबार पे आया था, तो वो फोटो था एक सेबरा पात लगे, पर सेबरा पात गल के वो बिल्कुल सेबरा हो गया था, ऐसा सूरत हो गया था कि सेबरा पात के पर सब गल के एकदम सेबरा बन गया था।
1: तो सोचो
0: ऐसा है कि अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे कि पेड़ पौधे को लगाना और ताकि ये गर्मी से हम सब भी बच पाएंगे, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए छाया का
1: आवश्यकता बहुत आवश्यक है।
0: और छाया जब नहीं रहेगा तो हाँ, तो कम से कम एक चीज है, हॉलैंड एक देश भी है, दरहाग में
1: जी,
0: दरहाग जहाँ से ये कार्यक्रम बनाया जाता है, एक शहर एक हॉलैंड देश में, और जबकि ये कार्यक्रम 188 देशों तक सुना जा सकता है, पर जब देखा जाए कि खून दनहाख,
1: हाँ।
0: तो उन्होंने दनहाख में सिर्फ कई हजार पौधे लगाए हैं जो इस साल, और ऐसे भी अन्य प्रांतों में हॉलैंड में खूब पेड़ों यानी कि पौधे को लगाया जाता है,
1: हाँ।
0: ताकि हमारा जो कैसे बोले है, जो ओजोन ना,
1: हाँ।
0: गर्म तो रहे और हमारा वातावरण के वातावरण में ठंडाई भी पहुंचे।
1: हाँ, क्योंकि ओसोन लाख जो है, आप जो कहते हैं ना, वो अपने आप बिगड़े नहीं, संतुलन वो अपने आप नहीं बिगड़ा है, वो हमारे इंसान, हम ही सब ने उसको बिगाड़ दिए, तो इसी कारण हमको वो तकलीफ सहना पड़ता है।
0: क्योंकि पहले होते थे गाड़ी A93 चलाता था, हम लोगों ने A92 वाला गाड़ी होते थे,
1: हाँ।
0: और आज अब A92 तक ये चलते हैं गाड़ी, तो अब भी मैं हम कहते हैं कि हाँ सैनिक एकदम ना
1: ना, मैं गाड़ी छोड़ो, कितने से बदरइफ चल रहा ना, जो खेमी से इस्तीफ अस्तोत कर रहे, ना सिर्फ हॉलैंड में, पूरे संसार में, तो वो सब मिलकर जो है आकाश जो है उसको खराब कर देगा। तो रेक्सरेस जो सोनस्त्राल जो ना ठीक है प्रकृति खातिर, हम लोग खातिर, हम लोग तो प्रकृति के अंश है ली, तो असर देगा अपना। हाँ,
0: पर शारदा जी, मौसम के छोड़ो, होना तो एक छोटा सा देश है ना, छोटा सा देश है पर फिर भी दुनिया पे बड़ा बड़ा ऊंचा नाम से
1: जी,
0: दुनिया पे बड़ा ऊंचा नाम से। और कल मैं एक कार्यक्रम में थे जो कि अब देखो जो गुलामी किए हुए और जो कहते हैं जो अफ्सकाफिंग फ्रॉम द स्लाफन नाई केती कोती,
1: हाँ वो तो
0: वो भी एक, यहाँ पर कुछ
1: एक जुलाई के होता है ना,
0: नहीं
1: केती कोती हाँ,
0: तो उस पे भी होलैंड में कुछ उस पे भी कोई कहीं कहीं कार्यक्रम बनाया जाता है क्योंकि उसे हमें भूलना नहीं चाहिए
1: ना, वो इतिहास है।
0: पर उसी में कुछ बातें मैं सुना कि मुझे ऐसा लगा कि देखो होलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर जो कसेटा रिकॉर्डर होते थे ना,
1: हाँ,
0: जो ऐसे ड्राई करके उन पतलों से ड्राई करते थे, आपको पता वो कहाँ पर वो किसने उसे पाया, कैसे वो उत्पत्ति हुआ,
1: कसेट कहाँ से उत्पत्ति, मेरे ख्याल से फिलिप्स कंपनी
0: जी, और देखा जब जाए
1: हाँ, और कसेट उसका है कैसे बोल रहे उसके अंकंपक्त बहुसिंग में तन मखनेट बांध दी तुसन तुए क्लाइनेस पूछेस लोप, और बहुत सोचने वाली बात है कि दिमाग उसने कैसे धोराई कि एक बांती में स्त्रीकीय घट है उसमें दोनों तरफ गीत भरा होता है और वो मखने जो यो ना दिखाता है उसका असर ऐसे है।
0: अब ऐसा जब कहो तो हम लोग ज्योति का प्रकाश में भी कितने कार्यक्रम बनाए हैं। अब देखिए जाए जो इलेक्ट्रिक ऑटो से
1: दे,
0: अब तो इलेक्ट्रिक फ्लिक्ट है कभी है, और हम लोग कितने ओमेम से गहराई में जा करके कि अगस्त्य ऋषि के ये सब फाइंडिंग फन अगस्त्य ऋषि, और ये देखा जाए कि जो कसेटा रिकॉर्डर है नेकतिन द्रियन सेस्तक
1: सितंबर नेकतिन द्रियन सेस्तक में इसका मतलब पैदाइश
0: हो गया
1: हाँ हाँ,
0: तो कितने लोग का जन्म भी हो गया था उस समय पे जो हमारे रेडियो सुन रहे हैं, पर नेकतिन द्रियन सेस्तक में उसका पैदाइश हुआ और इंजीनियर लॉ ओटन्स ने इसको और यानी कि इनका अपना दिमाग से इसे सोच करके निकाले जो कि आल्स होफ प्रोडक्शन ऑन्ट्विकलर बाई फिलिप्स में काम करते थे,
1: बिल्कुल
0: ना
1: जी,
0: और इसी पे जब और गहराई में जाओ जाई तो देखो कि उकरे बाद में निकल कसेटा के बाद में निकल सेदे ही ना
1: सेदे हाँ,
0: तो सेदे दैट इज ओके नेदरलैंड्स ऑन्ट्विकलिंग, पर नेदरलैंड्स ऑन्ट्विकलिंग उस पे जब देखा जाए कि ओकरे बाद में सेदे के बाद में निकल जोन वाला पे फिल्म भी रख देते थे लोग देखने वाला दे फेदे
1: हाँ,
0: और फे सेदे ये सब चीजें सब जान लो कि दुनिया पे होलैंड ये सब कभी पे बड़ा तेज था और अभी तक तेजी है क्योंकि कितने देशों यहाँ से चिप आईडी वाला जो चीज है द्वार अलमाल नहीं दला तुम देखकर, तो ज्योति का प्रकाश भी तो दनाख से बनता है ना,
1: हाँ दनाख से तो बनता है, पूरा संसार सुन रहा है,
0: पूरा संसार सुन रहा है, तो क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते हैं क्योंकि अभी कार्यक्रम में अनुराधा जी जो हम सब के ज्वाइन करने वाले हैं और आज के उसका संदेश है गुरु दक्षिणा, पर पहले एक गीत की ओर बढ़ते हैं और फिर अनुराधा जी को हम सब लाने को कोशिश करेंगे जो भारत से हम लोग के साथ जुड़ने वाला है। सुनने वालों आप सुनते रहना कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो हम सब यहाँ मिल करके और आपके लिए रख रहे हैं।

0: सुनो वालों, हम सब जुड़ गए हैं हमारे मास्टर जी जो भारत से हम सबको साथ और अपना जिनके द्वारा ये कार्यक्रम को बनाया गया है ज्योति का प्रकाश, और मास्टर जी जो इस समय हम लोग के साथ जुड़ गए हैं। मास्टर जी, आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है।
1: साउंड रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसे कि सबको पता है कि वीरवार को हम कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, इस बार भी हम कुछ नया लेके आए हैं, जीवन की सच्चाई। और जीवन की सच्चाई में आज बहुत ही मनमोहक, बहुत ही मनमोहक चीज सबको सुनने को मिलेगा। और वो है कि जैसे हम बड़े होते जाते हैं और समझदार बनते हैं, हम धीरे धीरे एहसास होता है कि 300 और 3000 या 2000 लाख की कीमत की घड़ी सब एक साथ दर्शाती है। लोग सोचते हैं कि 300 की घड़ी का टाइम अलग है और 3000 की अलग है, 3 लाख की अलग है, लेकिन सबका एक ही टाइम है, केवल उसमें क्वालिटी का फर्क है। तो हमारे पास 100 का फर्क हो या 500 का, अंदर सब कुछ समान होता है। चाहे हम 5 लाख की कार चलाएं, चाहे 50 की, रास्ता और दूरी एक ही है और हम उसी मंजिल पर पहुंचते हैं। तो ये जीवन की आज सच्चाई है। हम जिस घर में रहते हैं, चाहे वो 300 वर्ग फुट का हो या 3000 वर्ग फुट का हो, अकेलापन हर जगह समान है। आपको एहसास होगा कि आपकी अंतरिक्ष जो आंतरिक खुशी है इस दुनिया की भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलती। आंतरिक मतलब अंदर की जो खुशियां हैं, ये जो दुनिया है वो भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलती। आप फर्स्ट क्लास या इकोनॉमी क्लास में उड़ान भरे, अगर विमान नीचे गिरता है तो आप भी उसके साथ नीचे ही जाते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको एहसास होगा, आपके पास दोस्त भाई और बहन है जिनके साथ आप बातें करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं, यही सच्ची खुशी है। जीवन की एक निर्विवाद सच्चाई है, अपने बच्चों को केवल अमीर बनने के लिए शिक्षित ना करें, उन्हें खुश रहना सिखाएं। जब कोई बड़े होंगे तो उन्हें चीजों की लागत नहीं मूल्य की जानकारी भी होगी। अब इसमें है एक प्रश्न है कि जीवन क्या है। जीवन को बेहतर समझने के लिए 3 स्थान है, अस्पताल है, जेल है और शमशान है। अगर आपने अपना जीवन बेहतर समझना है तो 3 स्थानों पर जाइए। कौन कौन 3 स्थान है? अस्पताल, हॉस्पिटल यानी सेकंड हाउस, जेल और शमशान घाट। अस्पताल में आप समझोगे कि स्वास्थ्य से अच्छा कुछ नहीं है। जेल में आप देखेंगे कि आजादी से कितना अमूल्य है, आजादी का जो मूल्य है वो कितनी ज्यादा है। और शमशान में आपको एहसास होगा कि जीवन कुछ भी नहीं है। आज हम जिस जमीन पर चल रहे हैं वह कल हमारी नहीं भी हो सकती। चलो अब से विनम्र निवेदन बने और हमें जो मिला है उसके लिए अपने माता पिता, और जो मिला अपने माता पिता और किसका आशीर्वाद हमें लेना चाहिए,
0: अब आप ही बता दो मास्टर जी।
1: रिश्तेदार और पड़ोसी, मित्र, मेरा समाज, मेरा देश, सभी से प्यार, ऐसा हम सोचते हैं। क्या आप इस संदेश को किसी और के साथ साझा करेंगे? तो जरूर करेंगे। चलो विनम्र निवेदन बने उसके लिए अपने माता पिता और परम पिता को धन्यवाद करें। ये हमारी शिक्षा है आज की। दूसरी चीज जो हमको जीवन, दवा रहित जीवन यानी विदाउट मेडिसिन लाइफ, हम जीवन जीते हैं लेकिन दवा के सहारे। तो क्या क्या हमें करना चाहिए जो हमें दवा ना लें, ये बहुत बड़ा संदेश है इस चीज में। और जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के श्रोता हैं, अगर वो सुन रहे हो तो कागज कलम निकाल के नोट कर ले, क्योंकि ये चीज एक बार सुनने को मिलेगा, याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले लिखें, जल्दी सोना और जल्दी उठना दवा, ये एक मेडिसिन है। अगर आप जल्दी शाम को सोचते हैं और जल्दी सुबह उठते हैं। दूसरा है ओम या राम का जाप दवा, जो हम जाप करते हैं वो भी एक दवा है। ये बात हमारे आ गई तीसरे नंबर पे, योग, प्राणायाम और व्यायाम, ये बहुत बड़ी दवा है। सुबह शाम टहलना भी दवा है। उपवास यानी फास्ट सभी बीमारियों की दवा है। सूर्य का प्रकाश भी दवा है। मटका पानी पीना भी दवा है। ताली बजाना भी दवा है। खूब चलना भी दवा है। भोजन की तरह चबा कर पानी पीना भी दवा है। आफ्टर मील वज्रासन में बैठना बहुत बड़ी दवा है, यानी उल्टे पांव बैठना, उसको वज्रासन बोलते हैं, सब लोग जानते हैं जो लोग योग करते हैं। खुश रहने का निर्णय भी दवा है। कभी कभी मौन भी दवा है। हंसी मजाक भी बहुत बड़ी दवा है, संतोष यानी जो कुछ हमको मिला है उसमें संतोष करना वो भी दवा है, मन और शरीर की शांति दवा है, ईमानदारी और सकारात्मकता दवा है, निस्वार्थ प्रेम भावना भी दवा है, सबका भला करना दवा है, ऐसा कुछ करना जिससे किसी की दुआ मिले यह दवा है, सबके साथ मिलजुल कर रहना दवा है, परिवार के साथ खाना पीना और घुलना मिलना भी दवा है, आपका हर सच्चा और हर अच्छा दोस्त भी बिना पैसे के पूरा मेडिकल स्टोर दवा है, मस्त रहे व्यस्त रहे स्वस्थ रहे और खुश मिजाज रहे यह भी दवा है, हर नए दिन का भरपूर आनंद लेना भी दवा है, और अंत में किसी को प्रसादी के रूप में या संदेश भेजकर काम करना सुख भी यही दवा है, प्रकृति की महानता को समझना यानी नेचर को समझना वो बहुत बड़ी दवा है, ये सब औषधियां बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है, जो भी ये सब दवा है इनका कोई पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क है, बस सवाल यह है ये सब जानने के बाद क्या आप भी दवाइयां लेना शुरू करेंगे या फिर वही पैरासिटामोल और टेरामाइसिन, क्या आप दवा लेंगे या नेचर की दवा लेंगे या पैरासिटामोल और टेरामाइसिन लेंगे, तो ये आपके ऊपर है। साउंड हिंदुस्तानी रेडियो के जो श्रोता है इस बात को सुनकर उनके मन में जरूर एक प्रसन्नता हुई होगी कि हमको पैरासिटामोल और टेरामाइसिन नहीं लेना है, बल्कि जो ये दवाई रेडियो साउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से बताई गई है ये जरूर लिया करें और बाद बाकी सब दवा छूट जाएगा। मैं आशा करता हूँ सब लोग इस प्रकार की जो बातें सुनते हैं पवन हिंदुस्तानी रेडियो के श्रोता वो इन दवाइयों का उपयोग करेंगे और जो सिकन हाउस वाली दवा है वो छोड़ के इस दवा पे आ जाएंगे तो उस दवा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों ना संजय जी हमें सुंदर सा नगमा सुने और आगे का कार्यक्रम आगे जारी रहेगा।
2: पर मास्टर जी मेरा हम सबका भी दिल करता है आपसे कुछ बात करने का, शांता जी भी मैं देख रहा हूँ कुछ कहने का इच्छा कर रहे हैं, पर ये कहने के तात्पर्य यह कि आप ये सुंदर सा संदेश रखे मास्टर जी और कहने के है ये भी कि योग तो योग जो 24 घंटा में कम से कम एक घंटा जो हमें लेना चाहिए अपने शरीर के लिए ना,
1: हाँ।
2: तो उस पे क्या कर सकते हैं लोग?
1: देखो सबके पास 24 घंटा सबके पास है, उसमें से हमने एक घंटा अपने लिए निकालना है यानी योग प्राणायाम और ध्यान। कितना मिनट? 20 मिनट योग 10 मिनट प्राणायाम और आधा घंटा ध्यान मेडिटेशन। तो इससे क्या होता है कि योग से हमारा शरीर ठीक रहता है, प्राणायाम से मन ठीक रहता है, प्राण वायु बढ़ती है और ध्यान से हमारा मन शांत हो जाता है। तो जो तीनों चीज है योग प्राणायाम और ध्यान जब तीनों मिल जाते हैं तो हमारा शरीर प्राण यानी हमारी आयु और मन तीनों शांत हो जाते हैं और हम विदाउट डिजीज यानी बीमारी नहीं रहता, मन प्रसन्न रहता है, आत्मा भी खुश रहती है, हम इस प्रकार जीते हैं। और ये सब सीखने के लिए गांधी सेंटर में सब लोग उपलब्ध हैं, जो लोग वहाँ ये सब सीखना चाहते हैं नीदरलैंड में फोन सानी रेडियो के श्रोता वहाँ जाके सब लाभ उठा सकते हैं। इस विषय में अगर और किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो हम चर्चा जारी रखेंगे अगले प्रोग्राम में। लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं कि योग कौन कौन सा करना चाहिए, प्राणायाम कौन कौन से करना चाहिए, ध्यान में क्या करना चाहिए, हम और डिटेल में इसको बताएंगे। लेकिन लोगों की पहले इच्छा जागरूक होनी चाहिए और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो में फ़ोन करना चाहिए कि हम जागरूक हैं और हमें ये सब चीज़ सोचने को मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो आप अपना प्रश्न जरूर रखिए, हम इसका उत्तर आपको घंटे भर तक देते रहेंगे तब भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि योग जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर पूरी ज़िंदगी भी लगे रहो तब भी कम ही कम है। तो आप जितना ज़्यादा इसको पूछना चाहें समझना चाहें हम लोग उपस्थित हैं, और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जो कार्यक्रम है वो इसीलिए रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं, नई नई चीज़ें सीखें, और जो ज्योति का प्रकाश है, ज्योति हमारे जो अंदर है शरीर के माइंड के उसको प्रकाश यानी उजाला हो जाता है इसको प्रोग्राम को सुनने से। तो हम इस प्रोग्राम को माध्यम से लोगों को और जागरूक करेंगे, यही हमारी एक उपलब्धता रहेगी। संजय जी इस प्रकार से हम कार्यक्रम कर सकते हैं
2: मास्टर जी। और एक सुंदर सा गीत शांता जी ने पिटारा से निकाल करके छोड़ने वाले हैं मास्टर जी।
1: छोड़ दो पिटारा से नगमा।
2: तो नगमा जगदीत सिंह का आवाज में हम सब सुनेंगे। और मास्टर जी कुछ और संदेश अभी देखना है, क्योंकि वज्र आसन आपने कहा है और जल्दी से सोना जल्दी से जागना, इस पे थोड़ा से कुछ और चर्चा कर देना। पर पहले क्यों ना पिटारा से निकाला हुआ शांता जी का और गीत हम सब प्लेयर पे रख चुके हैं जगदीत सिंह के आवाज में।
1: जी

0: ये सुंदर सा गीत जो जगदीत सिंह के जी के आवाज़ में हम सब सुने दोस्तों, और मास्टर जी जो हम सब के साथ जुड़े हुए हैं भारत से, और कुछ और संदेश हम लोग के लिए रखना है कि जल्दी सोना जल्दी जागना ये बड़ा सिंपल सा बात है, पर इसमें महत्वपूर्ण बात, इसमें गहराई क्या है मास्टर जी। और दूसरा है कि जो आपने आज कितने संदेश दिए उसमें से बस हम सब हम सिर्फ दो ही निकाले हैं कि वज्र आसन है क्या।
1: हाँ, जैसे हमने 26 प्रकार की आज बात बताई है, और इसमें से दो मेन चीज है वज्रासन। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हम लोग कुछ नहीं करते हैं, या तो चलो या तो बैठो, तो हम लोग लेटो नहीं बैठो नहीं, चलो चल सकते हो तो, जैसे शाम को भोजन करा तो क्या करें, हम क्या करते हैं कि उल्टा पांव, यानी उल्टा पांव बैठ जाना, उसमें 5 से 10 मिनट वज्रासन। तो इसका मतलब अगर हम 10 मिनट बैठते हैं तो 10 मिनट 5 किलोमीटर का वॉकिंग माना जाता है। तो हम जैसे बैठते हैं वैसे उल्टा पांव बैठ जाए तो वज्रासन उसको बोलते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा पूरा पैर मुड़ जाते हैं और सारा हमारा फोकस जो डाइजेशन सिस्टम है, यानी भोजन को पचाने में सारी ताकत पैरों के नीचे ना जाके डाइजेशन में चली जाती है, और जब डाइजेशन में चली जाती है तो हमारा शरीर एकदम भोजन को पचा देता है और जल्दी से बहुत हल्का हो जाता है शरीर, पेट ज्यादा नहीं फूलता। मैं देखता हूँ कि लोग खाना खाते और लेट जाते हैं, इससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ते बढ़ने के साथ साथ फैट बनता है, फैट पेट में फैट जमता है, और जब फैट जमता है तो बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है, किसी को डायबिटीज होता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल, और ये जो मेन प्रॉब्लम आजकल हार्ट अटैक, इसी का सब नतीजा है। तो हमें इसको ठीक करने के लिए वज्रासन करना है, योग करना है, योग प्राणायाम। योग कैसे करना है, योग हम लोग सुबह सुबह कर सकते हैं खाली पेट, या तो शाम को भी कर सकते हैं, और जो प्राणायाम है वो भी योग करने के बाद सेकेंड राउंड है, और जो मेडिटेशन है वो थर्ड राउंड है। जब योग प्राणायाम हो जाए इसके बाद ध्यान करना है। ध्यान हमें केवल बैठ के सांसों को देखना है, कैसे सांस आ रही है कैसे सांस जा रही है, और हफ्ते में थोड़ा सा एक दिन पहले 6 घंटा फिर 8 घंटा फिर 12 घंटा फिर 24 घंटा उपवास करना है। उपवास का मतलब फास्टिंग रखना है, थोड़ा सा हम पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, या एक फल खा सकते हैं, धीरे धीरे करके उसको कम करना। जब कम हो जाए तो उसको आनंद लेना, उसी में हमें अच्छा लगने लगेगा कि हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो और हमारा शरीर एक्टिव रहता है। क्योंकि जब हम लोग भोजन करने का एक नियम है संजय जी, हमको भूख है 4 रोटी की, हमने 5 खा ली तो इसी से सारा चीज बिगड़ता है। हमें अगर 4 रोटी की भूख है तो हमने 2 खानी है, 1 रोटी की जगह हमने एयर के लिए छोड़नी है और 1 रोटी की जगह हमने वाटर के लिए छोड़नी है। अगर हम भोजन आधा करते हैं जितनी भूख का, तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, और अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारे सारी ऊर्जा जो शरीर की है वो उसको पचाने में लग जाती है, तो फिर हमारा घाटा ही घाटा है। इस बात को हम केवल एक जीभ का स्वाद के लिए और एक पेट की आग के लिए नहीं समझ पाते हैं, लेकिन साहून हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से जो लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं वो सब समझ जाएंगे और इस चीज़ को फॉलो करेंगे। जब फॉलो करेंगे तो उसको बड़ा लाभ होगा, और फिर कॉल करके तार करके बताएंगे कि हमने क्या साहून हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से सीखा है। इस प्रकार का हम जो कार्यक्रम रख रहे हैं वो बहुत ही उपयोग में आने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि सब लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आएगा और आगे भी आता रहेगा। यही हमारा साहून हिंदुस्तानी रेडियो का उद्देश्य है कि हम इस प्रकार के कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और इसको मनन करेंगे, मनन करके कार्य करेंगे। जब कार्य करेंगे तो हमारा लाभ पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। क्यों ना संजय जी, आप सुंदर सा नगमा की ओर बढ़े।
2: हाँ राजेंद्र जी, जरूर हम बढ़ेंगे नगमा की ओर, पर उससे पहले जो आपने कहा वज्र आसन और सभी जो पॉइंट आपने बताए कि योग का और जीवन में क्या करना चाहिए ताकि हम तंदुरुस्त रहे, वाकई में जो हमारा दोस्तों जो है जो भाई बहन सुनते हैं हम सब ये फॉलो करें तो वाकई में कोई कोई कोई एक ऐसा बीमारी शरीर में नहीं आएगा।
0: अरे
1: हाँ,
0: मैं इस पे कुछ और रखना चाहता हूँ मास्टर जी। एक एक समस्या हुआ ना, किसी ने किसी को हाई प्रेशर हो गया तो बोलेंगे बीपी
1: अगर
0: तो
1: अगर किसी को
0: नहीं नहीं पर ये हुआ किसी को ना, तो वो गया डॉक्टर में तो डॉक्टर ने उसे दवा दे दिया तो दवा दे दिया तो फिर दो तो कुछ समय बाद मेरे ख्याल से चार हफ्ता बाद फिर डॉक्टर के पास गया तो फिर उसका प्रेशर की नापा बीपी तो घटा नहीं था, तो उससे कहा कि तू अब एक गोली के
2: बदले
0: दो गोली खा। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बस वही एक गोली खाया और थोड़ा योग का प्रयोग किया
1: जी।
0: तो योग का प्रयोग किया तो जो प्रेशर हाई प्रेशर था बीपी जो ऊंचा था वो धीरे धीरे निकलने लगा, नीचे आ गया। तो डॉक्टर ने के पास फिर कुछ मसला हुआ तो उसके पास गया तो कहने लगा कि डॉक्टर क्योंकि यो यहाँ कंप्यूटर में रख देते हैं तो सभी देख लेते हैं कि कौन कौन गोली खा रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा गोली खा रहे हैं ना दो दो, तो उन्होंने कहा नहीं मैं गोली एक ही खा रहा हूँ। पर डॉक्टर ने बोला कि एक ही खा रहा हूँ बैठो, और बैठा तो उसे नापने लगा तो जब नापा तो देखा कि प्रेशर कमती है और लाख हो गया, तो डॉक्टर घबरा गया और कहने लगा कि अरे ये तो माजरा कुछ और हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर तू रोज और दो हफ्ता लगातार ये अपना प्रेशर को यानी कि अपन ब्लड ग्रुप को नापते रहो और धीरे धीरे गोली आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद में उन्होंने जब जो यहाँ पर दवा लेना जाते लेने लेते हैं ना अपोतेक में, तो अपोतेक में गया क्योंकि माजरा कुछ और था, तो वहां अपोतेक वाला कह रहा कि अभी तो यहाँ दो गोली खाने का लिखा था कैसे अभी एक ही गोली हो गया। तो देखो योग का शक्ति क्या है ना
1: जी,
0: कि योग का शक्ति है कि अब यहाँ पर सब चाहते हैं कि गोली बढ़ाते जाओ।
1: हाँ
0: वो न सिर्फ डॉक्टर पर अपोतेक वाला भी घबरा जाता कि भाई मेरा आमदनी कम हो जाएगा।
2: वो तो बात सही है।
1: हाँ लेकिन अगर हम लोग योग प्राणायाम ध्यान करेंगे तो हमें गोली की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं,
0: बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं।
1: हाँ वो तो क्योंकि वो केमिकल है और जब केमिकल हमारी बॉडी में जाता है तो कुछ चीज जो ठीक करता है वो बहुत सारी चीजों को बिगाड़ता भी है।
2: बात
1: तो हम लोग जब नेचर की तरफ आते हैं, योग प्राणायाम ध्यान की तरफ आते हैं, तो ये सब धीरे धीरे छूट जाता है और हम लोग नेचुरली स्वस्थ हो जाते हैं, तो फिर हमें गोली की तरफ जाने की जरूरत, डॉक्टर की तरफ जाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए योग और प्राणायाम ये बहुत बड़ी शक्ति है और हमें सेकेंड हाउस न जाके हमें हैप्पीनेस हाउस जाने की जरूरत है। तो ये हम हैप्पीनेस हाउस योग प्राणायाम और ध्यान से ही जा सकते हैं। सेकंड हाउस मतलब आप समझ ही रहे हो, सेकंड हाउस और हैप्पीनेस हाउस। योग का सेंटर उसको हैप्पीनेस हाउस हमने नाम दिया है और सेकंड हाउस तो आप जानते हैं हॉस्पिटल जो है, तो हमें लोगों को खुद समझ आएगा कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं उसी तरफ जाएंगे।
2: हाँ आपने भी कहा कि खाना खाते समय तो ये भी ख्याल होना चाहिए कि थोड़ा से हमारा स्टमक जो है ना, माख जो है उसमें थोड़ा से हवा खात एयर खात जगह होना चाहिए और थोड़ा से पानी खात जगह होना चाहिए ताकि
1: 25% हाँ, स्वस्थ रहेंगे।
2: हाँ ताकि वो जो स्टमक के कैसे बोलते पता नहीं, स्टमक जो है माह जो है वो अपना काम भी अच्छा तरह से कर सके। मग जो भी आपने कहा वज्र आसन राजेंद्र जी, ऐसा हुआ मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि कभी कभी खाना इतना स्वादिष्ट बनता है ना कि थोड़े में संतुष्ट नहीं होता पर मन करता कि और खा ले, बस कि और खा लेते हैं ना तो एकदम से संतुलन बिगड़ जाते, सांस नहीं ले पाते ठीक से। तो हम कई दफ़ा ऐसे किया है ये वज्र आसन, अगर उसका आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो शुरुआत में बहुत दर्द देगा।
1: हाँ इसमें दो चीज़ें हैं, जब हम लोग स्वादिष्ट भोजन ज़्यादा कर लेते हैं तो अगली बार जो हम भोजन करें उसको छोड़ दें, सेकंड जो राउंड है भोजन का उसको छोड़ दें। दूसरी चीज़ वज्रासन अगर जब कम हम करते हैं तो हमें हाथ भी टच करना चाहिए ज़मीन पे।
2: हाँ।
1: और 50% वेट हमारे हाथों में जाए, 50% पैरों में जाए तो दर्द नहीं होगा।
2: हाँ।
1: धीरे धीरे हम उसको 60, 65, 70 ऐसे करके ट्रांसफ़र करते हैं ऐसा हमने 10 दिन में करना है, तो धीरे धीरे हमारा आदत बन जाएगा, नहीं होगा।
2: हाँ,
1: तीसरी तो चीज जो आप कह रहे हैं कि हम लोग भोजन करते हैं,
2: हाँ,
1: तो उसके जो नियम है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जब हाँ, हम प्रत्याहार की अवस्था में पहुंचते हैं, हमारे शरीर में यम नियम ऑलरेडी रहते हैं, यम और नियम, और जब हम आसन प्राणायाम करते हैं तो प्रत्याहार पांचवी स्थिति है योग की, अष्टांग योग की। उस अष्टांग योग की जो पांचवी स्थिति है, हमें स्वतः ज्ञान हो जाता है हमें कौन सा भोजन कितना करना चाहिए, कब, जब ये चार चीजें हमारे शरीर में पहले आ गई, इसके बाद हमें खुद ज्ञान हो जाएगा कि हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे डायबिटीज मरीज को शुगर नहीं खाना है, और लेकिन उसको शुगर पसंद है, लेकिन जब वो पांचवी स्थिति में पहुंच जाएगा योग प्राणायाम वाली, यम नियम आसन प्राणायाम वाली, तो खुद उसको स्वतः अनुभव हो जाएगा और उसको वो चीज पता चल जाएगी कि भाई ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो उसको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी,
2: नहीं लगेगा। बात सही है, बात सही है, हाँ, 100% 100% सही आपने कहा, ये मैं भी अनुभव कर रही हूँ।
1: हाँ, लेकिन जब हम इसको नहीं, वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि पता कब नहीं चलेगा, जब हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे योग प्राणायाम प्रत्याहार, योग प्राणायाम आसन प्राणायाम में, लेकिन जब हम केवल खाने में रहेंगे तो ये चीज हमारी ऐसी चलती रहेगी और स्वास्थ्य बिगड़ने का खतरा रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि अष्टांग योग जरूर करना चाहिए। जब हम अष्टांग योग में प्रत्याहार यानी भोजन के बारे में पता चल जाता है, तो फिर हमारा योग प्राणायाम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा आ जाती है, धारणा सबके प्रति एक जैसी होनी चाहिए, इसके बाद ध्यान आ जाता है, मेडिटेशन, और फिर समाधिस्थ हो जाते हैं, अपने आप में हम खुश रहना सीख जाते हैं, किसी की कोई जरूरत नहीं है। यही हमारा उद्देश्य है पावन हिंदुस्तानी रेडियो का, कि सब लोग सुखी रहें, समृद्ध बने और अपने आप में खुश रहे। मैंने देखा है कि नीदरलैंड में बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, अकेला महसूस करते हैं, लेकिन जब वो लोग इस स्थिति में आएंगे, योग प्राणायाम ध्यान धारणा में आ जाएंगे, तो उनको फील नहीं होगा कि हम अलोन हैं, हम ऐसा लगेगा कि हम कुछ, आपो दीपो भव, आप अपने दीपक स्वयं बनो, भगवान बुद्ध ने कहा है, लास्ट प्रवचन था उनका मरते समय, उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी अब आप जा रहे हो, आप लास्ट कुछ चीज बता के जाओ, तो उन्होंने बता के सब चीज मैंने बता दी, एक चीज रह गई, उन्होंने बोला बताओ, उन्होंने बताया तो बोला आपो दीपो भव, इसका मतलब आप अपने दीपक स्वयं बनो, बस यही यही हमारा उद्देश्य है, किसी की जरूरत नहीं किसी को, आप अपने दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक जलाओ, उसी उजाले से चलो।
2: गौतम बुद्ध का संदेश है ये,
1: गौतम बुद्ध का लास्ट संदेश।
2: हाँ जी, हाँ नहीं, बाकी में जो मैं कह रही थी ना, खाना खाते समय ये भारी सा फील होता है ना, तो वज्र आसन जो आप हम मैं करती थी, तो ऐसे कुछ 4-5 मिनट में जो भारी सा फीलिंग होता है वह सब गायब।
1: हाँ, वज्रासन का यही उद्देश्य है, क्यों, सिर्फ जब खाना खाते पेट भर जाता है तो ऊपर की तरफ गैस जाती है, वज्रासन में जब वज्रासन में बैठते हैं तो रिलीज हो जाती है डाइजेशन सिस्टम में, जो शरीर हमारा तेजाब बनाता है उसमें जाता है,
2: ये रेर के पीठी जो है वो एकदम रेक्ट हो जाता है, राइट,
1: हाँ, फिर उसको क्लिंजिंग पॉइंट में चले जाता है, पेट खाली हो जाता है और एकदम शरीर की जो गैस ऊपर ना जाके नीचे चली जाती है,
2: हाँ,
1: इसलिए हमको रिलैक्स फील होता है
2: जी। और जो आप, हाँ, जो आपने कहा कि योग करते समय और इसमें बढ़ते बढ़ते, तो जो खाना पीना जिसमें हम पहले से जिसके हम पसंद करते थे, तो और हम ये योग करेंगे तो ये खाना पीना जो है ये शरीर अपने आप कहेगा नहीं, ये नहीं चाहती हूँ, अपने आप,
1: जी, हाँ, जब हम हमारे अंदर ज्ञान अपना आप है, किसी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसको जागृत करना है, जो हमारा सेल्फ नॉलेज है,
2: हाँ,
1: उसको योग के माध्यम से जागृत करना है, तो फिर शरीर हमारा स्वयं बताएगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है।
2: बिल्कुल,
1: किसी डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ डाइटिशियन हो।
2: बिल्कुल सही है, हम सहमत है एकदम, बिल्कुल, क्योंकि ये भी मैं अनुभव की अपने जीवन में, इसलिए मैं जानती हूँ, तो आप जो बता रहे हैं ना, तो सेम याद आ जाता है, इसलिए कहती हूँ कि हाँ नहीं, ये कोई गपशप नहीं है या कोई आम से तोड़ कलाई नहीं, ये सही है, ये हकीकत है,
1: यही हकीकत है, यही हकीकत है।
2: अरे देखो ना, हमारे पूर्वज जो है, जो ऋषि मुनि में, ये सब तो सालों 100 साल सब जिए है बगैर खाना पीना से।
1: हाँ, ये जो हमारे ऋषि सतयुग में तो हजारों वर्ष रहते थे, त्रेता में थोड़ा कम हुए, सौ वर्ष रहने लग गए, द्वापर में और कम हुए। कलयुग में हमारी आयु 120 वर्ष की है, अगर हम खान पान अच्छे रखते हैं फिर भी हम लोग 120 वर्ष जी सकते हैं, लेकिन डिपेंड किसके ऊपर है, हमारे ऊपर स्वयं, खान पान का आसन प्राणायाम का नियंत्रण रखे तो हमारी बॉडी 120 आज भी अच्छे से रह सकती है, कलयुग की एज है।
0: मास्टर जी, आज आप संदेश काफी रख चुके हैं, जरूर हमें भी बहुत अच्छा लगा, संदेश कितना अच्छा लगा सुनत ना
2: जी।
0: पर शांता जी, वो मंत्र जो जो मास्टर जी ने अभी सुनाए कि अकेल अलोन रहने वाला मंत्र, अभी आपको मालूम है?
2: आपो दीपो भव,
0: आपो दीपो भव,
2: या लिखता है
0: तो आपो दीपो भव, ये सभी सुनने वालों इसको हम जानबूझ करके दोहरा रहे हैं कि आपो दीपो भव, जो अलोन जो अकेलवा रहते हैं, इंसान रहते हैं और अपने अंदर के ज्योत को जलाना है। तो दोस्तों सुनने वालों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, हमारे मास्टर जी हम लोग के साथ संदेश के ऊपर संदेश रख रहे हैं, और देखा जाए कि शांता जी भी इस समय कुछ कर रहे हैं कंप्यूटर से, मेरे ख्याल से कि अभी हम लोग को बढ़ना है कमर्शियल्स के ओर, पर शांता जी एक गीत भी रखने वाले थे आप।
2: हाँ हाँ, उसको
0: तो गीत को चला देते हैं। मास्टर जी आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद, और आशा यही है कि हम सबको इसी प्रकार से आपका कार्यक्रम है हम लोग चलाते रहे और आप हम सबको ऐसे ही सहयोग देते रहना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के श्रोताओं को, हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए अपना समय निकालते हैं और मनन करते हैं, फिर इसके बाद थर्ड में उनको फायदा होता है, तो अगली बार हम फिर अपना कार्यक्रम को लेके मिलेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार।
0: नमस्कार
2: राजेंद्र जी, आपको भी, आप भी अपना मूल्य वक्त निकाल कर और आकर सेवा करें, आप चाहे आप विदेश में हो भारत में हो, पर नहीं लगता कि आप यहाँ हैं,
0: हम लोग के साथ सहयोग देते हैं।
2: जी
1: जी जी, जी।
2: आप बहुत आभारी है,
0: बहुत बहुत आभारी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद
2: आप लोग के भी।

0: आपने सुना गुरु दक्षिणा, और कार्यक्रम में जो अभी अनुराधा जी अपना संदेश रखने वाले हैं गुरु दक्षिणा के अंतर्गत, तो अनुराधा जी मैं आपसे निवेदन करूंगा, हार्दिक से स्वागत करता हूं आपको, जो इस समय आप भारत से हम लोग के साथ जुड़ गए हैं, और हार्दिक से स्वागत करते हुए आपको, और मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना संदेश जो आज के आपने और जो गुरु दक्षिणा के अंतर्गत में सुनाने वाले हैं, तो हम सबके लिए जरूर रखे।
1: ज्योति के प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सब मंगलमय होंगे और अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर रहे होंगे। चलिए आज संजय जी, मैं सबको एक कहानी से शुरुआत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आएगी। इसका नाम है गुरु दक्षिणा। तो एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है, कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं, इनमें आप बताइए कौन सी सही है। गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्य पूर्वक उत्तर दिया और बोले, पुत्र जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट ना हुआ, गुरु जी को इसका आभास हो गया, उनको समझ में आ गया, उनको लगा कि ये उनका शिष्य मेरे जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। वे अपने शिष्य से कहने लगे, लो तुम्हें इसी संदर्भ में मैं एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। और वो कहानी सुनाने लगते हैं। संजय जी, मैं बताना चाहूंगी वो कहानी कि क्या गुरुजी ने कहानी सुनाई, पर क्यों ना एक गीत हो जाए और फिर आगे बढ़ते हैं।
0: जरूर जरूर जरूर जरूर अनुराधा जी, हम पहले गीत की ओर बढ़ेंगे, और ये सुंदर सा संदेश जो आप हम सब के लिए रख रहे हैं कि गुरु दक्षिणा, अभी क्या होने वाला है दोस्तों सुनने वालों, आप सुनते रहना। पर शांता जी ने एक गीत को चुन करके रखे, शांता जी क्यों ना वो गीत को आप चला देते हैं।
2: एकदम से सही।

0: ये सुंदर सा गीत जो आपने सुने, सुनने वालों, आज का संदेश जो अनुराधा जी रख रहे कि गुरु दक्षिणा, शांता जी इस पे आप क्या कहना चाहोगे?
1: गुरु का अर्थ जो है, जैसे मैं कथा पे सुनी हूँ, अगर आप भी कथा पे जाते हो, हमारा श्रोतागण जो है मंदिर में जाते हो तो उसका कहते कि गुरु जो है जो अंधकार दूर करने वाले हैं, प्रकाशित करे और जो बताते हैं सही रास्ता जो है, और अपना अनुभव के अनुसार जो हम सही रास्ते पे चले तो हमारा जीवन जो है, हमारा सड़क जो है चलने के लिए वो प्रकाशित रहेगा, और गुरु के सहारे हमारा जीवन में और सारे प्रकाशित हो जाए।
0: पर शांता जी इस पे मैं थोड़ा से मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सहमत नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर इस पे मैं थोड़ा से और प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल लोग सोचते हैं कि हम जीवन जीना सीख गए, कभी भी कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो अपने मनमानी करते हैं।
1: तो आपने ठीक कहा, सोचने में और जानने में फर्क है।
0: सोचने और बड़े, अरे वाह बड़ा बात कह गए।
1: नहीं नहीं सही बात है, सोचने में और जानने में ये फर्क है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ। देखो अभी अब किस तरफ आप हम संदेश को ले जाए, अभी अनुराधा जी ये पूरा संदेश हम सबको रखने वाले हैं, पर जब देखा जाए कि हम लोग के जो सभ्यता है, हमारे संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हो
1: जी,
0: ये तीनों में आजकल हम लोग कमती इस पे ध्यान देते हैं, और सभी चाहते हैं कि हम अपने मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करें। हम आजकल किसी को अब देखा जाए, लोग सोचते हैं कि भाई हाँ हमने तो सारा जीवन जी लिए, अब हमें क्या करना है, और कहते हैं कि भाई हम अपने बच्चों के लिए कोई परेशानी ना होए। अब देखा जाए जब मृत्यु का समय आ जाए ना
1: जी,
0: तो मृत्यु का समय ये तो हमारा है, होना है, आपका भी होना है, और सभी को होना है, एक ना एक दिन सभी को जाना है,
1: शरीर को छोड़ना है,
0: जाना है। तो हम लोग के संस्कृति और संस्कारों में कुछ भारत से लेकर के सूरीनाम को गए थे, सूरीनाम से लेकर के हॉलैंड में लेकर के आए हैं, अभी तक कोई कोई परिवार में, कोई कोई घरों में अभी तक उसी प्रकार से जो 150 साल पहले से लेकर के सूरीनाम को गए थे अभी तक चल रहे हैं, मगर कोई कोई है जो बिल्कुल बदल गया। हाँ, बोले कि आलस एन न्यूयाश एक हफ्तर खेन तैत फोर एन मकेंद्र मुतहफदार खेन, बोले कोई प्रकार से परशरम ना हो हमारे लड़कन के, पर हमारे जो ग्रंथों है, हमारे जो सुंदर सुंदर संस्कारों है, क्या उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
1: देखो आप बहुत अच्छे से कहा ना कि हम नहीं करते हैं कि जो हमारे पूर्वजों भारत से सूरीनाम गए, सूरीनाम से यहाँ आए और यहाँ पर आकर उसमें बदलाव लाते हैं, तो उसमें हमारा जो है सरनामी या
0: इंडियन, शांता जी एफतर कोरेक्सी, क्योंकि ये कार्यक्रम 188 देशों तक सुना
1: अच्छा,
0: जाता है, और हाँ, बदलाव सभी कोई नहीं करते, क्योंकि कितने हैं द आल्टाइट नोस्टम फस्तक द सेल ऑफ द परंपरा आल्टाइट, जो जैसे कि जो लेकर के भारत से सूरीनाम गए थे
1: हाँ,
0: अभी तक कोई कोई उससे भी ज्यादा करते हैं
1: हाँ, और तब वो सिर्फ ना ही सिर्फ हमें में, पर अन्य जात जो है वो भी उसको ले कर चलता है, वो अपना बना लिए, क्योंकि हमारा जो है सभ्यता उनको भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कुछ रस है, कुछ जैसा हमारा राजेंद्र जी बताए ना योग के बारे में, योग हमारे अन्य जात जो है वो जाकर सीख कर आकर उसे यहाँ पर हम सबको सिखाते हैं, और जो संस्कार जो हमारे गुरु जी बड़े बड़े गुरु जो सो बनाई है, किताबें लिखे, पुस्तक लिखे, उसमें से ग्रंथ जो ली, उसमें से पढ़ पढ़ के वो संस्कृत जो नहीं जानते उसको सीखते हैं, पढ़ते हैं और उसे अपने जीवन में अनुभव उतारते हैं, जीते हैं, और हम कहते हैं कि कितने लोग ऐसे कहते हैं नहीं वो तो पुराना हो गया न्यू यश, जैसे संगीत भी बना देते ना जो लता जी रफी जैसे गाए थे उसको भी न्यू यश में कर, अच्छा लगता सुनने के लिए पर
0: अच्छा लगता पर धुन तो नहीं, वही धुन चलाते हैं पर आवाज दूसरा हो जाता है।
1: हाँ
0: जरूर मनोरंजन के लिए भी होना चाहिए,
1: रूट्स जो है वो रहेगा हमेशा,
0: रूट्स है जो रहेगा।
1: जड़
0: की गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने दे दियो गोविंद दिखाई।
1: बहुत अच्छा,
0: इस पे भी थोड़ा से कुछ
1: बताओ।
0: पहले अनुराधा जी आप अपना संदेश
1: अच्छा,
0: रख दीजिए।
1: हाँ, अनुराधा जी,
0: अनुराधा जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत से, तो अनुराधा जी कुछ अपना संदेश जो गुरु दक्षिणा के अंतर्गत सुनाइए।
2: ने क्या कौन सी कहानी अपने शिष्य को बताई, उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में तीन शिष्यों में अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से वह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेह पूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे। वे तीनों जो शिष्य थे वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरु जी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। उनको लगा ये कौन सी बड़ी बात है, ये पत्ती तो हम ढूंढ के ले आएंगे, सूखी पत्तियां तो जंगल में बहुत ज़्यादा बिखरी रहती हैं, तो उनको लगा ये तो बहुत ही आसान सा कार्य है, वो आराम से कर लेंगे। वो तीनों बड़े उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीप पास में एक जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर भी ही थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि जंगल है वहां तो बहुत सारी सूखी पत्तियां बिखरी होंगी तो यह बहुत ही आसानी से उठा लेंगे, पर जब देखा तो वहां तो खाली एक मुट्ठी भर ही जितनी पत्तियां बिखरी हुई थी। अब वे बड़े आश्चर्य रह गए कि क्या करें, वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। उन्होंने सोचा ऐसा कैसा हो गया कि ये जंगल में एक भी सूखी पत्तियां नहीं है। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब ये समझ लीजिए कि जब जरूरत पड़ती है, जंगल में तो हर पेड़ से सूखी पत्तियां गिरी रहती हैं, पर जब ना पाने पर वो उनको वो तीनों शिष्य घबरा गए कि भाई यहाँ तो पत्तियां नहीं है, अब उनको तो गुरुजी की आज्ञा का पालन करना है और थैला भर पत्तियां लानी है। तो उनको जब वो किसान मिला तो उन्होंने उससे कहा कि भैया थोड़ा सा कहीं से हमें पत्तियां दिलवा दो। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा, उन्हें ये बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। तो उसने बताया कि जो जितनी सूखी पत्तियां थी उसने उनका उनको इकट्ठा करके ईंधन यानी कि उनको इस्तेमाल कर लिया, एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर लिया, और उनको जलाकर सूखी पत्तियों से जलाकर अपना इस्तेमाल कर लिया। तो अब वो उसने तो मना कर दिया कि मैं तो आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब आप सब उत्सुक होंगे जानने के लिए कि क्या होगा, और मैं भी जानना चाहूंगी कि आगे क्या होगा। पर आगे जाने से पहले संजय जी, क्यों ना एक गीत हो जाए और फिर हम कहानी में आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल अनुराधा जी, गीत तो हम लोग तैयार करके रख चुके हैं। शांता जी जो पनेल के पीछे बैठे हुए, शांता जी कौन सा गीत चलाने वाले हैं आप?
1: गुरु जी के बारे में, मेरे सतगुरु जी के तुझसी मेहर करो, सिद्धार्थ मोहन की आवाज में।
0: सिद्धार्थ मोहन की आवाज में हम सब एक सुंदर सा गीत के ओर बढ़ेंगे, फिर और संदेश अनुराधा जी हम लोग के लिए रखने वाले हैं।

0: ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ। और किसके आवाज में फिर ये गीत जो आपने रखे शांता जी?
1: सिद्धार्थ मोहन जी की आवाज में।
0: सिद्धार्थ मोहन जी की आवाज में ये सुंदर सा गीत हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। हमारे साथ जुड़े हैं भारत से अनुराधा जी। और अनुराधा जी, आज का विषय जो है कि गुरु का दक्षिणा, तो गुरु का दक्षिणा कैसे और किस प्रकार से है, आप सुनते रहना, क्योंकि अनुराधा जी खूब जोर तोर से हम सबको इसके बारे में सुनाने वाले हैं।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि आगे क्या हुआ। जो कहानी जो गुरुजी सुना रहे थे वो खत्म हुई। तो जब कहानी खत्म हुई, वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है ना कि जब सर्वत्र सुलभ सुखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे यथा योग मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निविशेष स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग ले और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का प्रयास करें। तो गुरुजी ने जब बोला कि हमें किसी को भी नीचा नहीं समझना चाहिए, हमें किसी को कम नहीं, जीवन में अपने से कम नहीं समझना चाहिए, ना कि उनका अनादर करना चाहिए और दूसरे को हीन भावना से उनको छोटा नहीं कभी समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, योग्यता होती है। तो जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि हर इंसान, चाहे वो बाहरी रूप से कैसा भी हो, वो हर उसमें एक योग्यता है और वो कुछ हर इंसान अपने में अच्छा है, और हम जिस दिन उस इंसान की, दूसरे लोगों की इज्जत करना सीख लेंगे और उसी दिन हमारा जीवन एक उत्सव के तरह बन जाएगा और हम सब एक दूसरे से खुशी खुशी जीवन अपना व्यतीत करने लगेंगे। तो ये जो बात सुनकर अब शिष्य जो था वो पूरी तरह से संतुष्ट था। तो अंततः मैं यही कहना चाहती हूँ, यदि हम मन, वचन और कर्म, इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों, यानी जो हम बोलते हैं, जो हम वचन हमारे बोलते हैं, से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा, उसकी यही एनर्जी उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। और वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव। तो पुरुषार्थ ही होता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो हम इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि जो गुरु ने अपने शिष्यों को कहानी सुनाकर उनको बताया कि हम भी उसी तरह अपने जीवन में हम सब भी यही सीखें कि हमारे हम हर इंसान को, हर व्यक्ति को हम उनको इज्जत दें, उनको कभी हीन भावना से छोटा ना सोचें कि हमारे सामने वाला हमसे छोटा है। और जो हमारे गुरुओं ने हमें, गुरु ने हमें शिक्षा दी है, हमारे बड़े हमें शिक्षा देते हैं, उनको जिस दिन हम वो समझ लेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, हमें जो हमें सिखाया गया है कि हम दूसरों की इज्जत करें, दूसरों को हमेशा अपने कभी किसी को नीचा ना समझें, सबकी इज्जत करें और मिलजुल कर रहें, तो जिस दिन हम ये सीख लेंगे हमारा जीवन भी उस दिन एक उत्सव के समान हम व्यतीत कर सकते हैं और खुशी खुशी मिलकर एक दूसरे के साथ इस संसार में हम अपना जीवन मंगलमय होकर व्यतीत कर सकते हैं। आशा है ये आपको कहानी पसंद आई होगी। तो चले संजय जी आगे एक सुंदर सा गीत हो जाए।
0: अनुराधा जी बिल्कुल, आशा तो ये बात तो शायद आशा के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत अच्छा संदेश आपने रखे आज कि गुरु बिना, कबीरदा ने जो सुंदर संदेश रखे शांता जी
2: सुनाओ जी,
0: कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो दियो गोविंद दिखाई। बस यही बात पे अनुराधा जी भी अपना संदेश को रखे, और बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि आशा रखता हूँ, पर ये आशा रखने के बाद बिल्कुल है ही नहीं, बेगर गुरु के कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा है कि नहीं शांता जी? थोड़ा से नीदलांस में उसे आप निचोड़ दो
2: जी। संजय जी ऐसा ही गुरु जी, आपका गुरु जी का मतलब आपने पूछे थे तो यहाँ से मैं थोड़ा से सर्च की है, खोज कर लाई हूँ। तो गुरु है वर्ड, गुरु इज अफकलाइट ट्वे वर्ड इन संस्कृत, द गु एंड द रू। द गु बतेकन दस्टरनेस एंड द रू बतेकन फर्नीतर। एंड गुरु स्टार्ट दिस फॉर दगेने die de duisternis vernietig en verlichting kan geven. Oftewel, een spirituele gids wiens wie zijn leerlingen verlicht met zijn kennis en leringen. Dat is dat woord guru wat het betekent. En guru zelf die doen dat, zijn verlichte mensen, spirituele leraars of gids.
0: शांता जी ने अति सुंदर रूप से ये संदेश को भी नीदरलैंड्स में थोड़ा से ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि पूरा वृतांत तो हम सब नीदरलैंड्स में नहीं ट्रांसलेट कर पाएंगे, पर क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते हैं शांता जी, तो कुछ और आप उसे कोशिश करना नीदरलैंड्स में रखने को।
2: जी संजय जी, मैं एक सवाल करती हूँ कि जो हमारा लेरार, जहाँ पे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो लेरार को हम भी गुरु कह सकते हैं ना?
0: क्यों ना?
2: हाँ तो वो भी हमारा,
0: पहले कहते हैं कि मातृ भव पितृ भव, माता हाँ। पिता गुरु, फिर उसके बाद में शिक्षा गुरु, ऐसे इस प्रकार से कितना गुरु हमारे जीवन में
2: आते हैं जो हमको राह दिखाते हैं,
0: राह को दिखाने वाले।
2: हाँ।
0: अब आपने छेड़ ही दिया तो मैं एक वृतांत और रखना चाहता हूँ, अगर आप मुझे मौका देंगे
2: बिल्कुल,
0: तो
2: बिल्कुल,
0: क्योंकि पनील के पीछे तो आप बैठे हुए ना और बटम घीत लिया तो बोल नहीं पाएंगे।
2: नहीं नहीं बटम नहीं कर, हमको यहाँ बात करना है, लोगों को जानना चाहिए कि गुरु क्या है, उसका और महत्व क्या है, और उसमें गहराई क्या, और अनुभव जो है उससे हम भी कैसे कहते हैं विश्वास दिला सकते हैं।
0: जरूर। तो दोस्तों एक अवसर जब मिल गया तो जरूर हम कुछ रखने को कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ एक आश्रम में एक शिक्षक एक चेला ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी मुझे आपके सब बात अच्छा लग रहा है, और आप कहते हैं कि सब कोई के लिए सब जीव के लिए कोई ना कोई अच्छा संदेश है
2: ये।
0: पर वो चेला ने कहा पर गुरुजी मुझे एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ, जो गटड़ में होते हैं जानवर जिसे हम जानते हैं जोक।
2: हाँ?
0: तो पहले जो ये रेडियो सुन रहे हैं, पहले जो धान लगाए हैं,
2: हाँ?
0: घास लगाए हैं गोत्रों में घुस करके और घास को काटे हैं गाय के लिए,
2: हाँ?
0: बकरी के लिए, तो सबको ये बात को पता है कि जोक क्या चीज है।
2: हाँ?
0: क्योंकि वो गटर में रहने वाले जानवर है।
2: हाँ?
0: और एक बार गोड़ में पकड़ लेवत रहा तो छोड़त ना रहा।
2: हाँ?
0: बड़ा मेहनत से छूटता। तो चेला ने कहा कि गुरुजी ये जोक जो है ये कोई काम का चीज नहीं है। तो गुरुजी ने उसे उसी समय कोई और यानी कि ओके अंतोर्त ना देश उसे कोई संदेश नहीं रखा, और कहा कि समय आने पे मैं जरूर इस पर ध्यान देंगे। और ऐसा होते हैं कुछ दिन विपरीत होते हैं और एक प्राणी अपने पति के साथ और वहाँ गुरुजी के आश्रम में आकर के पहुँचे।
2: हाँ।
0: और बहुत सा बीमारी था उसे उसके शरीर में से, और वो मत यानी कि जो बोलते ना पीप।
2: हाँ,
0: जो निकल रहा था।
2: हाँ, दो
0: वेतब्लुत्सेल। तो निकल रहा था तो वो अपने और डॉक्टर से कोई तरक्की नहीं हुआ था, तो वो आ करके आश्रम में गुरुजी के पास और संत के पास पहुंचते हैं।
2: हाँ।
0: तो गुरुजी जो कहते हैं वही शिक्षक यानी कि वो चेला को बुलाते हैं और कहते कि जाओ गटर से कुछ जोक को पकड़ के लेकर आओ।
2: हाँ।
0: तो वो जो शिक्षक है चेला है जो जा करके गटर में से और कुछ जोक को पकड़ के लेकर आते हैं, और गुरुजी वो जो घाव था वो व्यक्ति का।
2: हाँ?
0: वो घाव पे छोड़ देते हैं और वही जोक जो पकड़ करके वो घाव को चूस करके और बिल्कुल सुखा देते हैं।
2: हाँ?
0: तभी गुरुजी क्या कहते हैं अपने शिक्षक को बुला करके अपने चेला को बुला करके कहते कि देखो आपने कहा कि ये जीव जो जोक के नाम से है उसमें कोई महत्व नहीं है, और देखिए आज इसका जो इतना बीमार व्यक्ति है इसका जो दर्द था उन्होंने चूस करके और निकाल लिया वो बीमारी को, तो देखो कि सब चीज में कुछ ना कुछ गुण होता है।
2: हाँ।
0: तो वहाँ पर जाकर के चेला ने गुरुजी का प्रणाम करके नमन करते कहे कि गुरुजी गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी दोनों आपने गुरु आपने दियो गोविंद को दिखाए। कहने के तात्पर्य है गुरु बिना तो गोविंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मुमकिन है ही नहीं।
2: हाँ, जोक जो है वो स्लग कहते हैं उसे।
0: स्लग कहते
2: हैं?
0: नहीं, स्लग कहते हैं मेथन हेल्सल है, और जोक के हेल्सल नहीं होते हैं।
2: हाँ, उसे भी स्लग कहते हैं।
0: बड़ा कटियड़ा है।
2: हाँ, हाँ।
0: शांता तू आप शहर में रह ले, हम लोग गांव में रहते ही।
2: नहीं, मैं भी गांव में, मैं भी गांव की हूँ।
0: और आपको जोक काटा कभी?
2: नहीं, हाँ काटा नहीं है। हम गए थे पहुँचने के लिए नई नई गोत्रों को दे रहा ना, तो उसमें गांव के ऐसे कोई साथी सहेली गए थे तो मैं भी गई। हाँ, उसके बाद जो मैं घर आई और नहाने लगी तो देखे मेरे पाँव में को ऐसे चपका था, माय गॉड।
0: तो दोस्तों आप भी, आपको भी ख्याल हो गया होगा घास काटते समय,
2: हाँ।
0: और पहले सबके पास लाट्स भी नहीं होता था ना।
2: वही तो, और जो ये आप कहते हैं ना संजय जी, एक ये डॉक्टर का अनुभव में भी देखा है कि एक व्यक्ति का हाथ कट गया, अंगुली ऐसे कट गया था, तो उसके जोड़ने के लिए खून बहाने के लिए वो भी एक जोंक का इस्तेमाल की,
0: ऐसा
2: हाँ काट के ऐसे लगा दीस ना, खोल के ऐसे चमड़ा जो है उसको खोल के बस उसमें लगा दीस जोंक के और बांध दिए इसे, तो जोंक तब खून लेगा ना अपने आप में, तो सर्कुलेशन से ऐसे होते हुए वो उसका उंगली जो कट के निकल गया था ना वो जुड़ गया। तो सभी का जैसा आपने कहा, सभी में एक गुण है, सब चीज में, सब जीव में एक गुण है,
0: सब जीव में एक गुण है, तो क्यों ना आज पिटारा से निकाले हुए गुरु का गीत सुना दो।
2: सुना देती हूँ।

0: सुनने वालों, आज का विषय जो अनुराधा जी ने रखे कि गुरु दक्षिणा के अंतर्गत में हम सब भी कुछ बातचीत हुआ,
1: बहुत सुंदर सा है, वो भी गुरु जी के बारे में। और पता है कि लोग सुनते हैं और फीडबैक देते हैं, जो हमको भी मिलते हैं और फ़ोन करके भी देते हैं कि ये प्रोग्राम उनको बहुत अच्छा लगता सुनने के लिए। तो यहाँ से हम सब भी ज्योति का प्रकाश जो हम बनाते हैं, हमारे सभी साथी की ओर से आप सभी की भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सुनते हैं और जो सुनकर अपना जीवन में प्रयोग लाते हैं, उससे हम भी और खुशी होते, हमारे सभी साथी।
0: तो एक गीत जो शांता जी, मेरे साथ है गुरु जी।

0: अवश्य सिद्धार्थ मोहन की आवाज में हम सुने कि तू मेरे साथ है। ये सुंदर सा गुरु के प्रति अपना प्रेम और प्यार संगीत के रूप में हमको सुना दी है,
1: और वही गीत की ओर हम सब बढ़ने वाले हैं दोस्तों, सुनने वालों। जो हमारे प्रोग्राम के आखिरी सीमा जो हम लोग पहुंच जाते हैं, तो वही गीत हम लोग हर सप्ताह चलाते हैं कि लागी छूटे ना
0: अब तो सनम।

और शब्द ही लोगों को। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। इन्हीं विचारों के साथ सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार।

जी मेरे प्यारे सुनने वालों, ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है और यहाँ से स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार।

0: सनम।
1: दोस्तों, जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी यानी जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने ये भी कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। हम सभी मिलकर के कार्यक्रम को आपके साथ और जुड़े रहे। आज के कार्यक्रम में सहयोग दिए अनुराधा चंदर जी जो भारत दिल्ली से, राजेंद्र सिंह जी जो हमारे मास्टर जी जो राजस्थान से, हम सबको सहयोग दिए। हमारे साथ स्टूडियो में पनेल के पीछे शांता खेमई जी और मैं हूँ आपका सेवक संजय। यही आशा रखकर कि कुछ न कुछ संदेश आप तक जरूर पहुंचे होंगे। सभी के शुभ दिवस, नमस्कार।

सुनने वालों नमस्कार, ये है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और हमारे आज कार्यक्रम में सहयोग दे रहे श्रीमती खैर लिंदा जी और अनस्तासिया जी। एक कार्यक्रम जो हॉलैंड में होने वाले हैं, जिसमें स्पिरिचुअल के अंतर्गत में सुनाया जाएगा, बताया जाएगा, और सद्गुरु जी जो फ्रेंच यानी कि फ्रांकराइक से यहाँ आने वाले हैं, तो हमारे कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं अनस्तासिया जी। अनस्तासिया जी, आप जो कहते हैं हम सबको कि हम गोरे लोग, और कैसे आप हिंदी कितना अच्छे

0: बात कर लेते हैं और उसमें मराठी भी बात कर लेते हैं। तो अनस्तासिया जी, पहले अपने बारे में हम सबको सुनाइए कुछ।
1: हाँ, तो मैं जब 4 वर्ष की थी तो मेरे पिताजी और माताजी एक आश्रम में, गोवा में स्थित एक आश्रम में रहने के लिए गए थे। और मैं 4 वर्ष की थी तो तब से वहाँ 15 साल रहती थी आश्रम में, गोवा में। मैं स्कूल में जाती थी वहाँ गोवा में, और वहाँ से मैंने मराठी हिंदी दोनों सीखा। मुझे भी गोवन लैंग्वेज कोंकणी भी थोड़ी आती है। मैं जन्म से साधना में साधना कर रही हूँ। मेरे पिताजी माताजी मेरे जन्मे के पहले साधना करने का शुरुआत किया था, और मैं साधना में बड़ी हो गई। और मैं छोटीपन से भगवान पर बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण बहुत बहुत प्यारा है, और मैं उनके साथ बहुत बात करती हूँ। तो ये मेरे बदल थोड़ा थोड़ा है।
0: अनस्तासिया जी, आपने अति सुंदर रूप से ये संदेश को रखे कि भगवान से प्रेम करना कैसे होता है, और इसी अंतर्गत में और जो जाकर के सद्गुरु जी हमारे देश हॉलैंड में आने वाले हैं, कार्यक्रम जो होने वाला है सेवाधाम में मंदिर में, हम सब अभी सुनने वालों जरूर उसके बारे में बात करेंगे कि कई बजे और कब और कहां पर कार्यक्रम को रखा जाएगा। पर अनस्तासिया जी, हमें थोड़ा से संदेश दीजिए कि सद्गुरु जी जो अपने बचपन जो फ्रेंच में जिनका जन्म हुआ नेहतीन एनसोईफंतख में, और उन्होंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, उनके जब बायोग्राफी जब देखा जाए कि बचपन से उन्हें कुछ था भगवान के रुचि, थोड़ा से उसका और संदेश हम सबको लिए रख दीजिए।
1: हाँ, तो बचपन से मेरे पिताजी को भगवान में बहुत विश्वास था। लेकिन हमारे माता पिता, उनके माता पिता भगवान में बहुत विश्वास नहीं करते थे। लेकिन मेरे मेरे पिता के माता वो जीसस पर बहुत प्रेम करते थे, और वे पिताजी को भगवान के बारे में बहुत सुनाई देते थे। फिर पिताजी बड़े होते होते एक सुपर मॉडल बन गए, और सुपर मॉडल में वो काम करते थे। और फिर जापान में गए, जाकर उनको मेरे माताजी से मिलना हुआ। मेरे माताजी तब साधना में शुरू उन्होंने किया था, और फिर माताजी ने बाबा को, सद्गुरु को साधना में उनके बारे में सब बताया। और फिर तब से पिताजी को ऐसे लगा कि अब मेरा जो सर्च था, क्या उनको बहुत ऐसे लगता था छोटेपन में कि मुझे कुछ तो चाहिए। और फिर बाद में उनको लगा कि अब मैंने ढूंढा जो मुझे चाहिए था। और फिर वे साधना करते करते, जैसे मैंने बताया, जब मैं 4 वर्ष की थी तो हम आश्रम में गए थे। अभी मैं 22 इयर्स की हूँ। वहाँ साधना करते करते वे ऐसे सारेफ नाम का एक, जैसे गोवा में सनातन संस्था ऐसे नाम का ये है, ऐसे सारेफ एक ब्रांच है उससे। तो मेरे पिताजी इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया उनने एसएसआरएफ को सब संभालने का। और एसएसआरएफ क्या है, वो सनातन साधना के तरह, लेकिन

0: सब बाहर के लोगों के लिए, लाइक इंडिया से, इंडिया में भी साधक आ सकते हैं ऐसे सारे में, लेकिन अब्रॉड ऐसे सब विदेशी लोग ऐसे जो साधना कर सकते हैं, क्योंकि विदेशी में थोड़ा अलग है इंडिया के तरफ। तो पिताजी ने ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उनको सबको साधना कैसे अच्छे से कर सकते हैं ऐसे सब सिखा रहे थे। नाम जप कैसे करना, भगवान को कैसे बुलाना, हमारे जो दोष है वो, हमारे जो बेस जेलसी ऐसे सब सब जो दोष है हमारे में, तो वो कैसे निकाल कर गुणों को अंदर लाने के लिए ऐसे सब कैसे, तो फिर दूसरों लोगों को भी साधने बारे में कैसे बुलाना, कैसे बताना, कैसे उनको वो जो माया है उससे बाहर निकालने का, उनको उनको चैतन्य पॉजिटिविटी ऐसे सब लाने के लिए कैसे साधना करें कर सकते हैं। नाम जप, दोष निर्मूलन ऐसे सब छोटे छोटे जो है वो कैसे सब अच्छे से करने का, और भगवान के चरणों में कैसे जा सकते हैं ऐसे सब, वो सब विदेशी साधकों को, सब साधु सब लोगों को सिखा रहे थे। और वो करते करते हमारे जो गुरु है इंडिया में, उनके गाइडेंस और उनके मार्ग से मेरे पिताजी 2018 में सदगुरु तक पर पहुंचे। और अभी हम एक जर्मनी आश्रम कर रहे हैं, तो 2022 में, नो 21 में, सॉरी, हमारे गुरु ने बोला कि जर्मनी में हम आश्रम बनाएंगे। तो पिताजी को पूरे जर्मनी को फिर कर उनको बोला कि आप एक आश्रम ढूंढो। तो 2 वर्ष मेरे पिताजी पूरे जर्मनी आश्रम ढूंढने के लिए उनने प्रवास किया, और फिर 2022 में हमको आश्रम मिला, एक जर्मनी आश्रम अलरोडे में। तो अभी मेरे पिताजी उनके रेनोवेशंस और साधकों को साधने के लिए कैसे बढ़ा सकते हैं आश्रम में, ये सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी यहाँ ले रहे हैं। तो ये थोड़ा मेरे पिताजी के बारे में है।
1: बहुत अच्छा रूप से आपने ये संदेश को रखे कि देखा जाए कि आपका यानी कि सद्गुरु जी जो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने सिर से लेकर के हम सब के लिए, क्योंकि हम सोचते हैं हमने जीना सीख लिया, पर जीना असलियत में जहाँ पर आनंद को प्राप्त कर सके तो साधना, और कैसे साधना होगा इस अंतर्गत में सद्गुरु जी जो हॉलैंड देश सेवाधाम में आने वाले हैं। अनस्तासिया जी, मैं आपसे ये प्रश्न रखना चाहता हूँ कि सेवाधाम में जैसे कि हमने सुने हैं कि 17 को आप लोगन फ्रेंच से छूटने वाले हैं और 18 को आप लोग नेदरलैंड्स यानी कि डेनहाग में पहुंच जाएंगे, तो कई बजे और कहां पर यह कार्यक्रम रखा जा रहा है?
0: तो 19 सितंबर को हिंदू सेंटर सेवा धाम इस जगह एक प्रोग्राम चलेगा।
1: सेवाधाम जो देनहाग शहर में है अल्बर्टाइन प्लेन पे, और वहां पर यह कार्यक्रम चलेगा 19 सितंबर को।
0: हाँ, वो एक दिन, और दूसरा दिन भी 20 सितंबर, 2 दिनों में वो प्रोग्राम होगा।
1: और अनस्तासिया जी, जब देखा जाए कि 19 सितंबर शनिवार होता है, तो कितने बजे से कितने बजे तक कई सेशंस रखा जाएगा, इसके बारे में हम सबको जरूर बताइए।
0: हाँ, तो पहला सेशन 10 o'clock इस बजे होगा,
1: 10 बजे सुबह में।
0: हाँ, 10 बजे सुबह में शुरू होगा। मैं मेरे पिताजी को हिंदी में इंट्रोड्यूस करूंगी और फिर गणेश श्लोक बताऊंगी, और फिर बाद में पिताजी श्री राम नाम जप का एक मेडिटेशन सेशन लेंगे। उसके बाद हम मेरे पिताजी एक्सप्लेन करेंगे कि नाम जप कैसे चलता है और कैसे हमको लाभ मिलता है नाम जप करते। और किसी को भी प्रश्न या ऐसे कुछ पूछना है तो इस टाइम में भी पूछे सकते हैं।
1: और देखा जाए ट्रांसलेट करने वाला है, यानी कि अनस्तासिया जी जो रहेगा, और हर रविवार को वहाँ हम लोग सेवाधाम में मंदिर भी लगाते हैं, जो कि दिन में 2 बजे से शुरू होता है 6 बजे तक। और इसमें कार्यक्रम रविवार का कार्यक्रम कितने बजे से कितने बजे तक है?
0: रविवार का कार्यक्रम 10 से 12 बजे
1: तक। तो दोस्तों सुनने वालों, आपने सुने हैं कि हमारे देश में और हम सब को और संदेश देने के लिए सद्गुरु जी, जिन्होंने बहुत से तपस्या किया है, बहुत सा और फ्रंट वार्डिंग भी पाए हैं, और जा करके हमारे साधना के लिए, स्पिरिचुअल के लिए कैसे किस प्रकार से हम सब उस पे और ध्यान दे सकते हैं, और इस प्रकार से जो यहाँ दनाख में कार्यक्रम होने वाला है। और अनस्तासिया जी, हम सब के जो अभी और भी संदेश सुनाने वाले हैं, कहने के तात्पर्य यह है कि हम अपने पितरों के बारे में क्या कर सकते हैं। अनस्तासिया जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और सदगुरु जी हम सबको क्या संदेश सुनाने वाले, क्या हम सबको अभी से कुछ आप सुना सकते हो?
0: हाँ, तो अब थोड़े दिनों में पितृपक्ष आने वाला है। तो पितृपक्ष क्या होता है? जब पितृदोष हमारे ऐसे बहुत लेवल्स होते हैं, तो पाताल होता है, फिर भूमि, फिर भूमि तत्व, फिर ऐसे दूसरे दूसरे लेवल्स होते हैं भगवान तक। तो ये पितृपक्ष क्या होता है? जब पितृदोष हमारे तो रीजन होता है, वहां वे नीचे ऊपर से नीचे आते हैं और उनका हमारे हमारे पर इफेक्ट और होता है। तो उन दिनों में हम कैसे पितृदोषों को के जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं उनसे कैसे हम सेफ रख सकते हैं? तो हम कैसे सेफ रख सकते हैं हमको? तो एक होता है नाम जप करने का, श्री दत्तात्रेय का। तो दत्त, श्री दत्त जी पितृदोषों को यहाँ से भगवान तक कैसे पहुँचा सकते हैं, इनका वो भगवान होता है। तो उन पितृपक्ष के समय रोज दत्ताजी का नाम जप कर किया तो हमको पितृदोषों से कुछ होता नहीं।
1: बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं अनस्तासिया जी, हम सब यहाँ पर कभी कभी लोग अपने मुसीबतों को लेकर के और हम कहीं मंदिर में या कहीं मुसीबत के जहाँ पर पहुँच जाते हैं, कोई हल नहीं मिलता है, और हल नहीं मिलता है, और जबकि हमारे अपने हमारे पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, इस पे जो हम ध्यान दे तो हम उससे कितना बच सकते हैं ना। हम देख रहे हैं हमारे सद्गुरु जी भी कुछ शायद हम लोग के साथ और बातने वाले हैं, तो हो सके तो सदगुरु जी से और हो पाए तो हम सबको सुना दे। सदगुरु जी को भी नमन करते हुए अगर हो सके तो आप थोड़ा से कुछ संदेश सदगुरु जी से हम सबके लिए यहाँ के रेडियो के वास्ते कुछ सुना सकते हैं।
0: हाँ, तो ये मेरे पिताजी हैं सदगुरु सीरियाक्वाले। वे अभी हॉलैंड में आएंगे प्रसार करने के लिए। उन हम सबको नाम जप और साधना के बारे में बताने के लिए अभी पिताजी थोड़ा एक छोटा मैसेज बताएंगे साधने के बारे में।
2: Namaskar, Sanjay. I live in India for almost 12 years. Come to India for more than 25 years now, since 1999, and live in ashram to practice the beauty and knowledge of Sanatan Dharma and India. And this for us is not making this knowledge available for people in the West. Because the importance of sadhana, spiritual practice. Because even many Hindus who live abroad, even though they have learned the, all this sanskar of shastra, of the science of spirituality, they actually are not practicing it, or they don't know all the knowledge also. So I think this is also why we are traveling in caravan, speaking in temples to share the knowledge. Because people from India or who have born in India or grow up or born also outside India, they have that understanding, that knowledge, but they don't know sometimes the why and how to put it into practice. So this is in a way the, what we will be sharing also in the temple. And this is a different lecture also. I'm traveling across the world and as well doing lecture in different temple also. And they understand immediately the knowledge. Like we will be speaking about Pitru Dosh, about this concept of departed ancestor. By God's grace, we all know this knowledge. And the West people, we have to start from scratch, from zero, because they have no concept of the concept of Pitru Dosh. And sometimes the solution is very simple, but we have to do it into practice. It's not only rituals, of course there is rituals, but it's chanting also, chanting like what we call Namjap or Namasmaran of Sri Guru Dev Datta. Myself, that was my biggest anubhuti, spiritual experience, before I went to India, because whatever I was experiencing, didn't know, and I was smoking. I was in 3 days when I started chanting Sri Guru Dev Datta. I stopped smoking within 3 days.
1: So there is a lot of things. So you can by chanting, you can progress in your life.
2: Of course, you not only you make progress, but you also give momentum to your departed ancestors. That's what people don't know. You free also your ancestor, who are in a way in Vuva Lok or different Lok, to be able to move on and get reborn. So not only your problem can be alleviated, and at the same time you give them that momentum. So that's why also there is this ritual, puja or ritual that can be done. But puja or ritual has limitation. There are few places in India where this special ritual is done for ancestor. But the chanting, namja, it is in our hand. And it is something we can do. And that is the power of Sri Guru Dev Datta. We have even published on our website. That's why we have a website called ssrf.org. And we have published more than 900 articles of all the knowledge from actually based on Hinduism and of course the science of spirituality. And we explained a lot about this concept of Pitru Dosh, and so many testimony we have from people across the world and religion. They were able to overcome many problems, addictions, depression, insomnia, the different type, because the root cause in today's time, often the problem that people see is that it is addressed at the physical level or psychological level. But sometimes the root cause may be actually spiritual in nature, and people don't know. All the modern science is not taking that into consideration, except, of course, in India, where that knowledge of Prithvi Dosh is known, but not all known in all India.
1: We are very happy that Sadhguruji is visiting Holland at Den Haag, Sevadham. So I'm very glad to meet Sadhguru, and so I think also everyone that are tuned now at Fahon Hindustani Radio shall be at Sevadham at 19 September. There are sessions 19 September and also sessions Sunday 20 September. So I cannot wait to see you, Sadhguruji. Namaskar.
2: Namaskar, and see you in a few days.
1: नमस्कार अनस्ताशिया जी, आपको भी नमस्कार कर कहते हूँ, और ये कहना चाहूंगा कि आप मराठी में नमस्कार कर देना प्लीज.
0: हाँ ठीक है. नमस्कार, माझे नाव अनस्ताशिया. मी सगळ्यांना माझा भावपूर्ण नमस्कार सांगते, आणि आम्ही तुम्हाला हॉलंड मध्ये भेटू. नमस्कार.
1: धन्यवाद. सुनने वालों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और ये संदेश जरूर आप सुन करके इस पे ध्यान देना, क्योंकि ये कार्यक्रम एक भी सुंदर कार्यक्रम होते होने वाला है, जो स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत में सेवाधाम मंदिर से और रखा जा रहा है. सातरदाख 19 सितंबर को 10 बजे सुबह से कार्यक्रम होने वाले हैं, और उसके बाद में रविवार को जो 10 बजे सुबह से भी कार्यक्रम सेवाधाम मंदिर में होने वाला है. नमस्कार आप सभी.

0: नालो मुझे बलमा, और ये सुंदर सा आवाज आप सुने सत्या त्रिवेणी चैतू के आवाज़ में। हम एक दूसरा सॉन्ग जो सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, क्योंकि अभी तो बस चैतू लिखा था, तो यहाँ हमारे सम्राट, म्यूजिक सम्राट जो कहा जाता है सूरीनाम का, श्री रामदेव चैतू जी के आवाज़ में हम एक गीत को चलाने का ये आशा रखता हूँ।
1: रही हैं सुरनाम का सभी मशहूर टॉपर्स, और ये खास टॉपर का प्रोग्राम जो मैंने कहा शुरू है एक खास मशहूर गाने वाले से। ये शख्स माइक्रोफोन आने से पहले ये भी कहना मैं मुनाफी समझता हूं कि यहां देखो वहां देखो या रात की सपना देखो, यहां सुनो या वहां सुनो, हर एक महफिल में रौनक ही रौनक है। ट्रिनिडैड, हॉलैंड और सुरनाम में गूंजता है वही मशहूर टॉपर जिसका नाम है उस्ताद रामदेव चैतू।
0: रशीद पीर खान रापर का।
2: रोज देखिला तो है सपना।

सुनो वालों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और कार्यक्रम जो यहाँ 2400 घंटा आपके घर तक, आप कहाँ भी हो, इंटरनेट द्वारा 188 देशों तक सुना जा सकता है। और अभी हम अपने मित्र श्रीमान जो लोंडवा का नाच करते रहते हैं, एक जो हमारे परंपरा से जब से हम लोग 150 साल पहले से सूरीनाम को गए, वहाँ पर जो हमारा विवाह संस्कार में और दुल्हा के नाच लेकर जाते थे और जा रहे हैं और आगे में भी जाते रहेंगे, उसके बारे में भाई राधे जी जो दुल्हा के नाच का और एक मशहूर कलाकार है, उससे अभी हम बात करने वाले हैं। पहले हम एक और गीत चलाते हैं श्रीमती सत्या त्रिवेणी चैतू के आवाज़ में।

0: सत्यावती, जो सत्या कहते हैं कि चैतु सत्या जी अपने आवाज़ से और ये सुंदर सा गीत को हम सबको चुला सुनाए। दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं भाई राधे जी से और संपर्क करने को, और राधे भाई को देखते हैं कि उनसे कैसे टेलीफोन द्वारा हम अर्थ सेंडिंग में ला सकते हैं। भाई राधे जी, नमस्कार।
1: नमस्कार हो, नमस्कार, कैसे हो आप?
0: बस कहते हैं कि दाल चावल चल रहा है, मौसम ठीक ठाक है, और सबसे उम्दा बात यह है कि स्वस्थ अभी साथ दे रहा है, तो चल रहा है, कैसे कहूंगे।
1: हाँ भाई, जब तलक सांस है ना, तब तलक तुम्हारे पास बहुत मोहलक है थे अपने जीवन के परिवर्तन में लावे खातिर,
0: और जब
1: आखिरी सांस तलक तुमको है राम नाम जपने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हो भाई राधे जी। और एक, क्योंकि आप सुंदर सुंदर गीतों के साथ हम सबके साथ हरदम पठाते रहते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना अभी एक सुंदर सा गीत जो आपसे हरदम हम लोग पाते रहते हैं अभी चलाया जाए। पर ये बताइए कि आजकल अब सीजन शादी के हो निकला है, भीड़ भाड़ कैसे है?
1: बहुत भीड़ भाड़ है भैया, जवानी के नशा सब पर चढ़ल है, और फुल टाइम ब्याह हुआ थे, चाहे गरम चाहे नरम, चाहे बरसात चाहे फैफन दर तक खरादा बकी उतने फैन विवाह संस्कार हो रहा है।
0: ये तो बहुत उम्दा बात है कि हमारे अभी हद तक हम लोग जिस प्रकार से हम लोग के विवाह संस्कार होत रहा सन्नाम में, अभी तक उनके और ले करके हमारे संस्कृति सभ्यता और समाज लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और जरूर कुछ छोटा मोटा चीज तो फरांदर करे पड़ गया है, पर इसमें देखा जाए कि जो सबसे मूल ये बात है ना, दुल्हा के नाच वाला, कोई विवाह अपना तय करे तब सबसे पहले वो भी तैयार करना पड़ता है ना भाई।
1: सही बात है भैया, देखो मनोरंजन चाहिए। अब कहा है कि विवाह संस्कार 16 संस्कार में एक संस्कार भी है विवाह संस्कार ना, और जो दुल्हा है दुल्हन है धरले दसोंस खेंत बखेंत स्खेन उब्दी दख फुरहन, कारण कि अब वो दोनों गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं ना, और गृहस्थ आश्रम में जो दोनों बहुत शांति और आनंद में रहे तो स्वर्ग समान है, और जहाँ तू तू मैं मैं कर ले तो नरक हो जाए। तो बहुत समाज के ये दुल्हा दुल्हन अपने के या वोट देवे है आजकल, तो इसे भी चाहिए निभावे के, और फिर लोग बहुत उम्मीद और आशा से ये विवाह संस्कार कर रहे हैं, और माए बाप कितना दिन से पैसा भी टोड़त है। आप सब लोग जानत है कि 5,000-10,000 में विवाह संस्कार ना हुए है, सब मिलाए जुलाई के 5 तक 6 तक दयुसंत रो हम सुनीला हो जा है दोनों कहती के ना, तो बेटा बेटी जोन है सबके वही इसने चाहिए अपन घर गृहस्थी चलावे के, मत मैया बप्पा तोर बहुत परिश्रम करके तुहार विवाह संस्कार करिल है, और हम लोग के बलायल है मनोरंजन के वास्ते रिचुअल के खातिर, और जितना अनेक प्रकार के चीज होवे है सब भैल है। अब जैसा आप बोल लो है कि तनी मनी परिवर्तन है, हाँ भैया समय के धारा है, गंगा नदी हर में बहता रहता है, तो कुछ न कुछ देश अनुसार जरूर न जरूर कुछ परिवर्तन हो रहा है, और आगे में भी होगा। जैसे 50 बरिस खलीद हुआ था, जैसे सेना में पहले हुआ था, ऐसे ना है। अब जैसे देखियो फिजी में, साउथ अफ्रीका में, त्रिनिदाद में, ग्वादलूप में सभी विवाह संस्कार करत है, मंत्र वही है, लेकिन खबरकर आवे सिंह जोन है मुताबिक अलग अलग है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि हम अपने राम सीता के फोर बेल्स लेके हम लोग विवाह संस्कार करत है। जितना गाना बजाना होवे है राम के विवाह या शिव विवाह गाथा के हम लोग उनका नाच करत है और इनमें बहुत मनोरंजन है। और एक छोटो भी है ना, एक छोटो एक कथा है कि हम लोग संगीत के माध्यम में पब्लिक के हम लोग सुनायला।
0: राधे भाई बात भी बड़ा इतना सुंदर बात आपने भी कहा, एक शब्द जिस जो मुझे छू गया कि राम और सीता के तरह विवाह, क्योंकि सब माता पिता यही चाहते हैं ना कि हमारा बेटी और बेटा का विवाह राम और सीता के तरह हो, है ना?
1: सही बात है।
0: और यही
1: दुल्हा दुल्हा जो सपरत है ना, आजकल तो शेरवानी भी चले लगल है, बाकी घर के आगे जो न है दंतरा दि चुनेल है, मोर जोड़ा जामा कन्हावर ना, ये सब हमारे उस सजावट में हम लोग कैसे सजायला ना कि अनपीत क्लास है, बाकी प्रभु राम के मूर्त में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये अब स्टूडियो में अभी तो कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश भी आने वाले हैं और शांता जी भी उपस्थित हो गए हैं, पर कहने के तात्पर्य ये बिल्कुल विष्णु जैसा और तैयारियां करना चाहिए। और शायद लगता है कि भाई हाँ चलो वो जोड़ा जामा यानी कि कैसे बोले है आजकल के सलवार कमीज ले लेते हैं, पर वो चीज़ उसमें नहीं है जो जो सन्नाम में बनवाया जाता था, कैसे कहते हैं मोर और जोड़ा जामा, शांता जी कहते हैं जोड़ा जामा है, इसमें कुछ और मजा,
1: जोड़ा जामा पगड़ी
0: और जो बहाना जाता था क्रॉस के तरह ना
1: जी,
0: तो बड़ा ये बात मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक हॉलैंड में हुए है ऐसा और सूरीनाम में।
1: सही बात है,
0: पर कोई कोई लोग है शायद उस पे ध्यान नहीं देता होगा तो कहाँ, तो बस विवाह ही हो गया लक्ष्मण क्या कहते हैं राम और सीता के तरह, जैसे सच धज के और सीता का, और जो क्योंकि शादी से पहले लाल नहीं पहनते ना, शादी के रोज ही लाल पहनते लक्ष्मी के तरह।
1: सही बात।
0: और जो अब आजकल तो कोई देखिए ब्लाउ पहन ले से, कोई देखिए ख्राइस पहन ले इस बोले, या दिस इज मेन वेंस, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है?
1: आप दत्त सन ही लफाल का फराख दी स्टाफ ओकर वेन से, लेकिन तो का चाहे तनी बोध रहे के ना कि तो का पहिनले है वंत एल्क क्लोर है तो पाल द फिबरासी।

सुन वालों के सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है www.faunfm.nl पर और वेब रेडियो पर। घड़ी पर देखूं तो एक मिनट व्यतीत हो चला है 5:01 और ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है देन हाग शहर से। अगर 5 बजे है तो जाहिर है कि मैं अपना कार्यक्रम पेश करने वाला हूँ और फरमाइश कार्यक्रम लेकर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। परिवार सूरज बली का जाना पहचाना नाम है, अभी आप और आगे जान जाएंगे।

वाह क्या बात है, आपने सुने, देनहांग शहर के रहने वाली श्रीमती मरैक सूरजबली छोटू की आज नहीं लेकिन सोंदाक 20 सितंबर को जन्म दिवस है। फाहंग हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद बधाइयां पेश है और श्रीमती मरैक सूरजबली जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर जो सोंदाक 20 सितंबर के है अपने आप के लिए एक भजन मांग रही है। तो मरैक जी आपके भजन हमने रख दिए हैं और मरैक जी परमात्मा से यही प्रार्थना कर रही है कि इनके प्रेम प्यार मोहब्बत स्नेह नम्रता इसी तरह बनी रहे, लाड प्यार परमात्मा से मिलती रहे, दिल की गहराइयों से आशीर्वाद परमात्मा की तरफ से कि इनकी तंदुरुस्ती दृष्टि बनी रहे, लंबी उम्र की आयु प्रार्थना। शास्त्रों में कहा गया है जीवेन शरद शतम, यानी कम से कम तो 100 साल की उम्र अवश्य होनी चाहिए। तो लीजिए मरैक जी आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ ये भजन, वही भजन जो आपने मांग की है, इस तरह से आ रहा है।

घर में पधारो गजानंद जी, घर में पधारो। ये गीत पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फरमाइश कार्यक्रम में, जबकि आज फ्राइडे 3 सितंबर है, तो जाहिर है कि दनहा के रहने वाली श्रीमती मराई के सूरज बली की आज जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर मराई के सूरज बली जी ने अपने आप के लिए ये भजन मांगे हैं, परमात्मा से ही प्रार्थना करते हुए कि इनकी तंदुरुस्ती दृष्टि बनी रहे। चलिए फरमाइश कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। आज फ्राइडा 3 सितंबर है, तो जाहिर है कि दनहा के रहने वाली श्रीमती मराई के सूरज बली छोटू की आज जन्मदिवस है, तो इस शुभ अवसर पर उनका प्यारा पति देव, जी हाँ प्यारा पति देव श्रीमान जॉनी नंबर वन रॉय जी, मान जॉनी नंबर वन, आपको तो पता है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यकर्ता धरता है, अपनी प्यारी धर्म पत्नी को श्रीमती मराई के सूरज बली छोटू को हार्दिक बधाई शुभकामना दिल के गहराइयों से, और पेश करवा रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, चलिए ये गीत।

हुआ, क्या बात है, ये भजन पेश हुआ जबकि दनहा के रहने वाली आज फ्रेदा खाकती सितंबर श्रीमती मराई के सूरज बली छोटू का आज जन्म दिवस है। इस शुभ अवसर पर उनके प्यारा पतिदेव श्रीमान जॉनी रम्मर वन रॉय सूरज बली अपनी प्यारी धर्म पत्नी को हार्दिक बधाई शुभकामना प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ ये भजन पेश की। फरमाइश जारी है, आगे चलते हैं। स्पाइकरनेस के रहने वाले जो हैं बड़ी बहन श्यामा सूरज बली सुखराम अपनी माँ के लिए, और बड़ी बेटी अपनी माँ के लिए, दामाद सतीश सुखराम सासू माँ के लिए, दो नाती आरुष अंश सुखराम अपने नानी के लिए, मराई का सूरज बली छोटू के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई शुभकामना के साथ चलो सुनते हैं ये गीत।

तेरा आज जन्मदिन बहुत बहुत मुबारकबाद पेश किया गया। देखते हैं स्पेस कनिष्क के रहने वाली बड़ी बेटी, जी हाँ स्पेस कनिष्क के रहने वाली बड़ी बेटी श्यामा सूरजबली सुखराम अपने माँ के लिए और दामाद सतीश सुखराम अपने सास माँ के लिए और दो नाती आरुष और अंश सुखराम अपने प्यारी प्यारी नानी के लिए हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं तो पेश करते हैं रोतरदाम में, जी हाँ रोतरदाम के रहने वाले हैं बेटी संतुषा सूरजबली अपनी माँ को लाड प्यार के साथ बहुत प्रेम पूर्वक हार्दिक बधाई शुभकामना देते हुए चलो सुनते हैं ये गीत इस तरह से आ रहा है।

तेरी ममता कितनी प्यारी प्यारा गीत पेश हुआ, जबकि आज फ्राइडा 18 सितंबर है तो जाहिर है कि दनाह के रहने वाली श्रीमती मराई के सूरज बली छोटू की आज जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर रोतरदाम के रहने वाली बेटी संतुषा सूरज बली अपनी प्यारी प्यारी माँ को हार्दिक बधाई और शुभकामना पेश कर रही थी। बढ़ते हैं आगे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, मरेका जी आपके जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। आज जबकि फ्राइडे 18 सितंबर है तो दनाह के रहने वाली श्रीमती मरेका सूरज बली छोटू की आज जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर दनाह के रहने वाले फ्राउन क्लब जो है उनका मेंबर जो है सभी सहेली यानी सदस्य जो है अपनी सहेली को मराइका सूरज बली छोटू को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहे हैं, जितनी सहेली जो है फ्राउन ग्रुप का इस तरह से।

दनहा के रहने वाले जितने फ्राउन क्लब के सहेली हैं यानी सदस्य हैं मेंबर हैं उन सब के तरफ से हार्दिक बधाई शुभकामना पेश किया जा रहा है। जबकि आज फ्राइडा 31 सितंबर है तो जाहिर है कि दनहा के रहने वाली मरई के सूरज बली छोटू की जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर सभी फ्राउन क्लब के मिलकर ये गीत दिए हैं। मरई का जी उम्मीद है कि गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ जो फ्राउन क्लब वाले सुने होंगे तो उम्मीद है उन लोगों को भी अवश्य अच्छा लगा होगा। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से आपकी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। चलो आगे बढ़ते हैं। सुरीनाम पहुंचते हैं लफिनिया वेख के रहने वाली माँ, प्यारी माँ सूरज वाली इसरी अपनी प्यारी प्यारी बेटी को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रही है और परमात्मा से ही प्रार्थना कर रही है माँ जी लफिनिया वक्सूरी नाम से कि आपकी ज़िंदगी में कोई आपत्ति ना आए, आपकी उम्र चांद सितारों से और लंबी हो। और यही आशीर्वाद के साथ चलो ये गीत माँ लफिनिया वक्सूरी नाम से मांग रही है इस तरह से।

बिन मैया का लाल कहाँ जाए रे। सूरीनाम चलते हैं, हॉलैंड से सूरीनाम पहुँचते हैं। लाफिनिया बह के रहने वाली प्यारी माँ सूरज बली इसरी अपने प्यारे प्यारे बेटी जो दनहाग शहर में है, आज फ्राइडा 8 सितंबर है, उनके जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रही थी सूरीनाम से, और साथ ही साथ परमात्मा से ये प्रार्थना कर रही है माँ जी वहाँ से कि आपकी ज़िंदगी में कोई आपत्ति ना आए, जो भी काम आप करें आपको सफलता मिले, आप कामयाबी हासिल करें और खुशियाँ आपके कदम चूमे। यही आशीर्वाद माँ सूरीनाम से लाफिनिया वैक्सी दी है, जबकि आज मरेग सूरज बली छोटू उनकी बेटी का जन्मदिवस है। माँ जी आपको भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से सूरीनाम में बहुत बहुत बधाई हो, और सारी परिवार जो इस समय सुन रहे होंगे सबके। कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, फरमाइश कार्यक्रम है आज फ्राइडा 8 सितंबर जबकि है, तो दनहा के रहने वाली श्रीमती मरेक सूरज बली छोटू की आज जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर देखा जाए तो सूत्रमेर, सूरीनाम से लौटते हैं सूत्रमेर, सूत्रमेर के रहने वाले बेटी शांति सूरज बली सुखा अपनी प्यारी प्यारी माँ को, दामाद अश्विन सुखा अपने सासू माँ को, और नाती शिवंश अपने नानी को, अपने प्यारी प्यारी नानी को हार्दिक बधाई शुभकामना के साथ पेश करवा रहे हैं ये गीत।

आओ झूमे गाएं, सूतरमेर के रहने वाले हैं। बेटी शांति सूरज बलि सुखा अपनी प्यार प्यारी माँ को, और दामाद अश्विन सुखा अपने सासू माँ को, और नाती शिवंश अपनी प्यारी प्यारी नानी को दना के रहने वाली श्रीमती मराई के सूरज बलि की आज फ्रेदा 8 सितंबर है, जन्मदिवस है। सब मिलकर सुधरमेयर से हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहे थे माँ जी को, सासू माँ जी को और नानी को। फरमाइश कार्यक्रम जारी है तो पेश है, देखते हैं सूरीनाम बोक्सल। हॉलैंड से पहुँचते हैं बोक्सल, बोक्सल के रहने वाले हैं। बड़ी बहन मीला माता दीन छोटू अपनी बहन के लिए, और सभी लड़के अपनी मौसी के लिए और शुभकामना पेश कर रहे हैं। जबकि आज दनहा के रहने वाली श्रीमती मराई के सूरज बलि की आज जन्मदिवस है, हार्दिक बधाई शुभकामना पेश किया जा रहा है बोक्सल से।

जब आज फ्रेडा 18 सितंबर है तो देनहा के रहने वाली श्रीमती मरई के सूरज बली छोटू की आज जन्मदिवस है। हार्दिक बधाई पेश किया जा रहा है सूरीनाम बोक्सल से बड़ी बहन मीला माता दीन छोटू अपनी प्यारी प्यारी बहन को और सभी लड़के मिलके अपनी मौसी को अपनी प्यारी मौसी को जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहे थे। चलो बोक्सल से वापस आते हैं सूरीनाम। जी हाँ जी नहीं अभी वहीं रहेंगे, अभी सूरीनाम में ही रहेंगे। सूरीनाम के रहने वाली लफिनिया वेख बहन माला अपनी प्यारी प्यारी बहन को और देखा जाए सभी लड़के अपनी प्यारी प्यारी मौसी को देनहाग नीदरलैंड के रहने वाली श्रीमती मरई के सूरज बली को जबकि आज फ्रेडा 18 सितंबर है जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई शुभकामना के साथ ये शानदार गीत इस तरह से आ रहा है।

फरमाइश कार्यक्रम जारी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं सूरीनाम। सूरीनाम के रहने वाला भाई सुरेश इसरी अपनी बहन के लिए और भौजी फनेसा इसरी अपने ननद के लिए और लड़के हैं, जी हाँ सभी लड़के हैं, इस तरह से अपनी फुआ को जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहे हैं, जो सूरीनाम के रहने वाली है, जी नहीं हॉलैंड के रहने वाली है, श्रीमती मराई के सूरजबली छोटू, जी हाँ बहन ननद और फुआ श्रीमती मराई के सूरजबली छोटू, देन हाँ नीदरलैंड के रहने वाली है और आज फ्रेदा 8 सितंबर के इनका जन्मदिवस है। तो सूरीनाम से पेश हो रहा है ये शानदार गीत, हम पेश करें इस तरह से।

वह शाबाश, क्या बात है। अटरिया पे लागल चोर, ननद जरा भाग जाग जाना। जी नहीं, भाग नहीं, जाग जाना। जी हाँ, सूरीनाम, सूरीनाम के रहने वाला भाई सुरेश इसरी अपनी प्यारी प्यारी बहन को, और सूरीनाम से भी भौजी फनसा इसरी अपनी ननद को, और लड़के ने अपनी फुआ को, सभी लड़कन मिल के देनहा के रहने वाली श्रीमती मरई के सूरजबली छोटू, जिनका आज फ्रैदा आखिरी सितंबर जब है जन्मदिवस है, तो बहन को, ननद को और फुआ को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहे थे सूरीनाम से। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और वो है सूरीनाम लंगाडाम ऐत कैक। जी हाँ, सूरीनाम लंगाडाम ऐत कैक। जी नहीं, उससे पहले चलो ये गीत पेश करते हैं। जी हाँ, सूरीनाम लंगाडाम ऐत कैक से छोटी बहन बीवी बहन के लिए, छोटी बहन बीवी बहन के लिए, और छोटकू राजेश किशुन बड़की के लिए, और सभी लड़के मौसी को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहे हैं, जबकि आज दनहाक शहर में श्रीमती मरई के सूरजबली छोटू, जिनका जन्मदिवस है, शुभकामना के साथ चलो ये गीत पेश है।

बहन, बड़की और मौसी तो माँ के समान होता है ना। तो सूरीनाम के रहने वाली श्रीमती मराई के सूरजवली छोटू, जिनकी आज फ्राइडे 8 सितंबर को जन्मदिवस है, हार्दिक बधाई पेश किया जा रहा था सूरीनाम और लंगाडाम एक से छोटी बहन बीबी अपनी बहन के लिए और छोटकू राजेश किशुन अपने बड़के के लिए और साथ ही साथ लड़के अपनी मौसी के लिए। मराई के सूरज बली छोटू की आज जन्मदिवस है, हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहे थे। अभी सूरीनाम में टिके रहेंगे तो सूरीनाम से अश्वन इसरी, जी हाँ अश्वन इसरी अपने लिफ लिफ फुआ को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहे हैं, जो कि आज दनाक शहर में जब फ्राइडे 8 सितंबर है श्रीमती मराई के सूरज बली छोटू की जन्मदिवस है, तो फुआ को शुभकामना के साथ ये शानदार गीत।

अपने लिफ लिफ फुआ को बगिया तुम्हारी महकती रहे। दनाके रहने वाले श्रीमती मराय के सूरज वाली छोटू की आज फ्राइडा 8 सितंबर के जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर सूरीनाम से अश्वन इसरी अपने लिफ लिफ फुआ को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहा था। आगे बढ़ते हैं फरमाइश लेकर। दनाख के रहने वाली जी नहीं, दनाख के रहने वाले बड़ा भैया, जी हाँ बड़ा भैया मुन्ना छोटू अपनी छोटी बहन को और लड़के अपने फुआ को जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई पेश कर रहे हैं। जबकि आज फरहेदा 8 सितंबर है तो जाहिर है कि दनाके रहने वाली श्रीमती मरेक सूरज वाली छोटू की आज जन्मदिवस है। शुभकामना के साथ पेश करवाते हैं ये शानदार गीत।

मत भूल कि तू एक माँ है। देखते हैं देना के रहने वाला बड़ा भाई। जी हाँ, देना के रहने वाला बड़ा भाई मुन्ना छोटू अपनी छोटी बहन को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रही है। जबकि आज फ्राइडा 8 सितंबर है, तो जाहिर है कि दनहा के रहने वाली श्रीमती मराई के सूरज बली की आज जन्मदिवस है। हार्दिक बधाई शुभकामना पेश किया गया उनका बड़ा भाई मुन्ना छोटू की तरफ से है। एक आखिरी गीत और बचा है, आखिरी फरमाइश हम पेश करने वाले हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से श्रीमती मराई को बहुत बहुत बधाई शुभकामना पेश किया जा रहा है। यहाँ से पहुँचते हैं, फिर जाते हैं सूरीनाम। सूरीनाम में रहती है यारिकावा में, यारिकावा के रहने वाली बहन चमेली। बहन चमेली अपने छोटी दी नहीं चमेली छोटू, चमेली छोटू रामशरण अपनी बहन को देना के रहने वाली श्रीमती मराइका जी को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रही है यारिकावा से। और साथ ही साथ लड़के जो है अपनी मौसी को, अपनी मौसी को प्रेम पूर्वक ये शानदार पेश कर रहे हैं।

दिन के सहारे आजा प्यार करे। और ये गीत पेश किया गया, देखते हैं यारी काबा, यारी काबा के रहने वाला बड़ा भाई, जी हाँ भाई जी नहीं, बहन, बहन क्षमा करना, बहन, बहन चमेली छोटू रामशरण अपनी बहन को और लड़के अपनी मौसी को सूरीनाम से भेज रहे हैं ये आशीर्वाद, जबकि देनहाग शहर में आज फ्रेडा 8 सितंबर है, तो जाहिर है कि देनहाग शहर में मराइक सूरज बली छोटू की जन्मदिवस है। हार्दिक बधाई शुभकामना पेश किया गया फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए। आप लोग तैयार हो जाइए सूरीनाम में और हॉलैंड में। तो एक आखिरी गीत हम पेश कर रहे हैं सभी सुनने वाले श्रोताओं की तरफ से और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के फाहुन ग्रुप की तरफ से और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के कराओके ग्रुप की तरफ से और ज्योति भजन समाज के तरफ से। सूरीनाम और नीदरलैंड जितनी परिवार, परिवार इसरी, परिवार छोटू, परिवार रामशरण, परिवार किसुन, परिवार सूरजबली और परिवार माता दिन और सभी परिवार को हार्दिक बधाई पेश किया जा रहा है। अब ये लोग मिलके पेश कर रहे हैं, जबकि आज फ्रेडा 8 सितंबर है, तो देनहाग के रहने वाली मराइक सूरजबली छोटू की आज जन्मदिवस है। जन्मदिवस के उपलक्ष पर बस तैयार हो जाइए, अपने झलवे में से निकलिए सूरीनाम में, कुर्सी पर से उठ के बैठ जाइए, खड़े हो जाइए और सुनिए ये गीत।

द लायन ऑफ बैठक गाना देवेंद्र सिंह नाथ आपको सुनाई, ये शानदार गीत हमने पेश की। जबकि आज फ्राइडा 8 सितंबर है तो दना के रहने वाली श्रीमती मराइक सुरजवाली की छोटू की आज जन्मदिवस है। हार्दिक बधाई शुभकामना पेश किया गया। फैमिली जितना है परिवार जितना है, परिवार इसरी सुरीनाम से लेकर होलोंग तक, परिवार इसरी, परिवार छोटू, परिवार रामशरण, परिवार किसुन, परिवार सुरजवाली और परिवार माता दीन और साथ ही साथ फाउन ग्रुप के सभी मेंबर की तरफ से और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कराओके ग्रुप के सभी मेंबर की तरफ से और ज्योति भजन ग्रुप की तरफ से श्रीमती मराइका सुरजवाली को हार्दिक बधाई शुभकामना, प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ दिल की गहराइयों से ये कार्यक्रम पेश किया गया और फरमाइश पेश किया गया। और स्टूडियो में इस वक्त बैठे हैं कारला जी की तरफ से भी सब परिवार को शुभकामना भेजा जा रहा है और अमृतसर देखते हैं नाम भुलाई गए लिए हम तेरे जाने आशा भोसले गनवा तेरा नाम भूल गए शांता खेमई शांता याद रहने की खेमई भूल गए थे शांता खेमई की तरफ से हार्दिक बधाई शुभकामना पेश किया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से। आप लोगों को भी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फरमाइश देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जान, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद दे। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी राम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश विदेश का समाचार सुनाना है एक हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

और तू शायर के बाद तुम जानते हैं जोनी के आवाज आ जाते हैं और यह हमारा प्रोग्राम चलते हैं तो आपको पता है सारी दुनिया के शायर हम कराएंगे और करा करे और फिर वापस ले जाए ले आएंगे रेडियो फाउन जो द बेस्ट रेडियो फन हॉलैंड इज दोस्तों। तो हम तुरंत चलते हैं समाचार की ओर। वो है सूरीनाम में भैया एक 15 बरिस के लड़का बोली भैया लड़की बोली एक नाम है आना पौला फेराई पालवम। हाँ सुनो नाम भैया हमारा लंबा नाम है और बताइए आना पौला फेरा पालफोन। तो बताया गया है कि 15 साल की लड़की 13 सितंबर के

vertellen dat iedere telefoontje spanning oproept, omdat het nieuws over hun kinderen zijn kunnen brengen. Ik kan niet werken, ik kan niet slapen natuurlijk. Maar ja, apen betroon ki jarur khojiga, to bara dukke baant hai. Yahan pe bataye gaye hai, duigo. Laatst zullen we doen om mijn kinderen weer. Ondanks alle beantwoorde vragen hadden de moeders vast een hoop van hun zonen terug te zien. Aan het einde van het gesprek richtten zij de rechtstreeks tot hem. Ki, ja, haar hier beta, apreken betaal. Maar mensen, dit zijn heel droevige. Op de kop bij je ja, betaalde je douane en een dildo randtroller gebaat. Dildo randtroller. Vrouwen brengen spullen voor arrestant. Hash in de rand. Ja, niet doen kakaurim lagawal. Ja, doen gandato. Oma hash bharke sipahi me lege bhaiya. Ja, niet jahalia me lege. Dildo rand. Dildo rand. Troller me. Oma ghusir raha haj bhaiya atwar ke sipahi santo dorop ke vanika ke dui aurat ke 21 jaar ke van twee 21 jarige vrouwen zijn aangehouden. Hij is opgela op een vriend ke dewe bij controle breek de rol en een zwart plastic zakje met vermoedelijk hash te bevatten. De ap is op een vriend ke gela haj ap is op apre ap pakad ke sipahi ek ban kari se bhai ki tu jahal me del do ran le gele water o ma tu bhalle bate kaun chi nani hash bhare raha. To ye baat hai hamare Surinam ki hamari janta. Ab dekho narcotica brigade hega jon jane drugs ke bare mein khoj ban kare badi der ker paise mausi jerry ken paise aur jerry ken flick tegen benzema je mara bij Moses Creek. Ego kriki hai jekar nama Moses Creek jerry ken me flick tuig ke plane ke tel paise aur tu jane drugs plane won utre na illegale veldtoon pe te e tanks was ek bhare hai tel in de omgeving van Moses Creek district Sipaluwini me bole gemeng police team paant ko jerry ken aangetroffen die vermoedelijk waren gevuld met vliegtuig benzine om bole inmiddels overgedragen narcotica brigade me geil hai bole de fonds volgde op informatie uit de gemeenschap dat op een locatie van gebieden meerdere jerrycans met verbloed vliegtuigbenzine waren achtergelaten. Toen bole paan ko jerrycan met bharala vloeistof bhaiya plane ke op eke baane me sab onderzoek kare toen jane binnenland me sab een illegale vliegveld banawe he a chota chota plane drugs lele aur bole utre he aur ohi utre he drugs lele. To verder verspreid hoe we dus to pakito kloon jane to pakito bhaiya bauro hardam bhai bole sarnaam is the plas pe baki NDP jab se kursi dhari se pakito ke baja ban hoi ge hai ab dekho phir hiya apan muh koli se aur pakito bir fel bole hai bole plas vraagteken bij de wijze waarop regering in Suriname onder leiding van president Jennifer Simon corruptie aanpakt. Volgens hem wordt in sommige gevallen wel opgetreden, maar schiet de aanpak in andere gevallen tekort. Hij vindt dat corruptiebestrijding alleen effectief kan zijn wanneer er streng en consequent wordt gehandeld. De abtutuwaarte regering mee, or tuka he, kabel in plaats dat je gaat helpen, meneer Pakito. En je gaat nu weer commentaar leveren waar je helemaal niks doet. Suriname eerst bolle tra Pakito, bhaiya, apika Pakito bolle mil. Miljarden schulden in Suriname, dollars achtergelaten bij LVV. Hoe komt het dat er miljarden zijn achtergelaten aan schulden, maar niemand nog in verhoor of het matje is geroepen? Waarom worden die mensen niet vervolgd? Waaraan ligt het? Zijn er politieke afspraken gemaakt? Zijn er situaties geweest waarbij ze niet anders kunnen? Waarom is hij zo stil? Al dus Biervel. De Biervel, kan je hier per regering ze poetje ke. Op media, kan je haar zo naam. Ik heb wel goed bijzonder. En die mee bhaai. Kieuw jij corruptie gooi je haan.
ये वो ब्रह्म फिसर भैया लेके ब्रह्म जाए और बिच्चे में को ब्रह्म फीस बिगड़ गए भाई, ब्रह्म फीस बिगड़ गए, एक तो पैख है ब्रह्म फीस के, तो ये बेचारा 2020 का ब्रह्म फीस रात के लेडिंग एल्फ आमे हुआ पे ब्रह्म फीस बिगड़ल है और ऊपर से ओकर का बोले ऊपर से मनो के बरूफ बिकल ले से भाई 2020 का ब्रह्म फीस और बतावे 11 लाइनिंग एल्फ आमे इन सुरिनाम बरू फंस एंड ब्लोवर दयान ब्रोंफीस एक तो बिगड़ा ला ओहु चोरी हुई गए है स्लाख्त फर हात ऑंदर वेग पेख करीगन एंड ड्यू दिस एंड ब्रोंफीस वेर्दर जहां पे चार आदमी अब टू ब्रोंफीस एंड बे हम स्टॉपटन ब्रोंफीस तर चार मिला हुआ पे रुकल है ओकल लगे और बोले फॉल्क द फरक्लारिंग फॉर द स्लाख्त ओवर रेट है फन आउट मेंकन बर्गस्ट्रांस से कमिश्नर्स वेते वे जात रहा और ब्रोंफीस हाथ है बखीफन बोले अब ढकेले बिचारा ढकेले ढकेले जा हैं ते को पांद्रियन फाइव तक लगे हुआ पे दुई को ब्रोंफीसर रुकल है हुआ पे दुई को आदमी चार को आदमी उतरल है और बोले हैगा ए फन बेय रेडर फ्रुक्ते या ऑफ है दखीना वाज दी ऋषि सो हेमन खात मेट अ फ्रेंड फन हिम कोर दार ऑफ स्टॉपड द मैन ऑफ एंड लीप हिम मेट अ मेस ऑफ द स्लाख्तोफर ऑफ vervolgens werd de bronvis van Thea weggenomen. Het viertal vluchtte daarna op de bronvis in de richting van commissaris Weitenweer. Surinaamse politie bolee, geile bolee, toen haar vriend ze jagra kalere ook een bronvis beroef kalis, bij je kutu te haar bronvis raha, bronvis bigalal laha, ohu ke leke, ose van peel bhangal he, ab sipahie karbare me, ondo suk kare he, हमारी जनता अब देखो भैया फिर आग लगा लेगो अपार्टमेंट में पुलिसी अमतनार स्वार खतरों में ब्रांड कॉम्प्लेक्स खरो दिल इन बुदल सिपाही रहता है अपार्टमेंट में और अपार्टमेंट में जबर आगे लगल है सिपाहियों चटाई गए है पुलिसी पुलिसी अमतनार बोले अप खरो इन बुदल सब जर गए है 13 सितंबर के बाद है रशीद पीर खान वेख में और बोलेगा स्वास्थ्य बसका अपार्टमेंट ऑफ complex, bolle de brand veroorzaakt aan single schade, bolle foto van de zwart geblakerde gevel, beschadigde ramen en loshangende dakplaten, बहुत ज्यादा भैया और बताई गई है संत दौरव की सिपाही के बारे में खोजबीर करे बला है ब्रांतवीर विश फेदर एडब्रेरी अज्ञा बुतादिश की और बड़का ना होवे भैया कोपल आंखोदन न आंखिफ्टन ओवर 4740 अमेरिकानसे डॉलर दुई मिला के सिपाही पकड़ी से को 53 एसका 39 ओकर फ्रेंडिन के नानी बोले आनलेडे फन आंखिफ्ट ओवर खेल बद्राख फन 4740 अमेरिकान डॉलर के बारे में है द आंखिफ्ट वेर खदान डू द ब्रूर फन एसका ओकर भाई अनखिफ्त करी सेगा का बोले है एकर बारे में और बोले है अने अने अंडरसुक इस नाल फोरन कर कोमन कि एसका के भाई यून है बोले एगो ख्राइस कलाकते त्योता पे अने फान से फ्रेंडिन तक कोपन फॉर $3,600 बोले ओ तो बेच रहा अब कुछ प्रूव कर वास दैट इट बतरा इन मानलिक टर्मिन फॉर $150 सो वर्दन अब खलोस द अनगेवर सो वर्फॉल्गन डोर मिडल फान लिस्टिके कुंस्ट्रीपन सेन बवोकन om meerdere geldbedragen om het koppel te staan. Bolle heeft verklaard dat zij volledige bedrag van 3600 had ontvangen. De kwitanties van de betaling zijn door haar ondertekend. Bolle wordt raad op haar chuklibati. Nadat zij de volledige bedrag had ontvangen, zou AJ hem geweigerd zowel het voertuig als het ontvangen geld aan te geven. Af te staan. Bolle otra paisa bhar des abbe oto wa na dewe he. Bolle hij verklaard dat hij zijn broer had gevraagd het voertuig van zijn vriendin te kopen. To isa bhaiya oplichterij ke baare me he. To sipahi ekar baare me ap onderzoek kariga. Ki ke sach bole he. और के झूठ बोले है हमारी जनता देखो चीना और अमेरिका को और हम जाइला बैतलांस न्यूज से चीना एंड फेस डून वार्स क्यू ऑन टॉप मानन ऑफ अस बंग मगरे
चीनवा अमेरिका बोले हैं, चीनवा के प्रेसिडेंट बोले यिपिंग और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के बोले हैगा दुईगो ग्रोत टॉप माने बोले हैगा ontwikkeling van sector te vertragen als bangmakerij बोले हैगा द टॉप माने अखतर ग्रोते वेस्टर्से अल बेड्रेवन स्टेलने सैटरडे दैट द सेक्टर टू स्नेल ग्रोइट ओम द वेलिगेड वोल्डोंदे टू कुनेन वारबोर्गन. और यहाँ पे बताए गए है कि दुई गो इतना बड़का बड़का आदमी बोले चीना प्लेज वेल फॉर बैलेंस मैं चीनी ऑथोरिटीज टेल एंड व्हाट. तो दोस्तों ये इकोनॉमी के बारे में आपको हम बता दिया है चीनवा के. और अब देखो भैया फ्रांकराइक या है सूरीनाम से, सूरीनाम से बातचीत करें तेल के बारे में. फ्रांकराइक मांगे समवर्क करे सूरीनाम में रोंथर खास इन फरदीपन. Frankrijk wilde samenwerken. Frankrijk wilde samenwerking. Ke bare mein hamari janta onder meer rond de toekomstige olie- en gassector. Franske ambassadeur John Hega Denise somar ke geloofbrief liai ke Jennifer Simon ke deze. Abule hamlo mangela samenwerker ke terugkeer naar Suriname na bijna 15 jaar. Voor de diplomaat betekent dat de benoeming een terugkeer naar Suriname na bijna 15 jaar के बाद में हमारी जनता. और फ्रांस अंबेसडर बोले हैगा मुखलक सामोवेरक करी सरनाम से फ्रांकराइक से तेल और खास के बारे में ओकर बसवार से सरस पर्सोनिके प्रोफेशनल है ऑन में ईस्ट पीरियड इन सूरीनाम. तो बढ़िया बात है जो फ्रांकराइक सूरीनाम से काम करेगा इस तेल के बारे में हमारी प्यारी प्यारी जनता. अब देखो तुरन जानो है सूरीनाम के सरमक्का में कितना मछली मरला दूर क्विक में से. जेनिफर सिमन बोले हैगा बोले जो सोना खोदे है बोले ओ सब ओमा डाड़े रहा उधर पे ब्रिंसवेग गए ले बोले ना बोले ओ क्विक को ना गए ले वन दन बदरई फोके लून तू तो बोले मछली जिए और बोले कानी कई किलोमीटर बाद मछली जाई के मरर है. तो एकर मान में क्रुशियल हेड इंस्पेक्सी बैले ऑन ब्रेक इन दोशी फिश तरफ से शर्मा का दिल तुई के बारे में हैगा. फ्रांकराइक में जाई के अनुसुख बैल है. और जेनिफर सिमोंस बोले रहा इन फिगरा साल को क्रीक मनीख बखिन 2026 बोले हैगा तक कोर्ट को मिंग फान मरी पास टोन कॉन्सेसिस ते हरस्टेलन बोले आउट द दोशी द सूरीनाम हीप इन गेसिन ब्लैक एक्ट नीट अन अनकोंडिगे हेड इंस्पेक्सी वर्कलिक हीप. तो यहां बतावे 7 तारीख जनवरी के 2026 में बिनन फास्टस्टेलन टर्मिन verbetering van de uitvoering के बारे में है. और बतावे onduidelijk है अब door verbeter plan bijlega van de waterkwaliteit onderzoek monitoring van de oppervlakte water grondwater flora en fauna. तो एक बारे में बड़ी लंबा चौड़ा बोले अफ्तार फन 15 किलोमीटर हीफ आइट कस्लाइटन ग्रासल को हीफ आन कफूर दर प्लांस वार द फेस तरफ द वेर फर्स्ट कसे ऑनगेफिर 15 किलोमीटर फरवेड लिखलिक फन अमेन बो एक्टिविटेटन दी अफ्तार स्लाइट एंड फरबान एक्टन नीट ऑटोमैटिस आउट इवन उन बोवेज दस द ग्रोट विनिंग सिस्टम द ब्रोन वास फन द फेस तरफ द मुरुक्री की से लेकर इन द सरमाका रिफीर द मछली जाय के सूरीनाम देश में और मरल है. तो एक बारे में तुई रो अंदरसुक अब सबन शुरुआत कर दे से हमारे प्यारे प्यारे जनता हमारे प्यारे प्यारे लोग. तो हम और आते जाते हैं भैया त्रिम कानिन ईरान ब्लेवन एंड ओली बहुदन सोअस इन वेनेजुएला. अरे भाई ईरान से और अमेरिका से इतना लड़ाई हुए त्रिम का बोले है अमेरिका कानिन ईरान ब्लेफन एंड ओली बहुदन सोवाल्स इन वेनेजुएला. वेनेजुएला ले ले से अमेरिका तेल बहुद करे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मुखलक है बोले अमेरिका के कि जो अफकलोप फन ओरलोक ईरान में भैल है अनवेशक ब्लेफ एंड ओली बहुदन है फरवेज दार बेन अमेरिकान से अनपक इन वेनेजुएला. बोले जैसे वेनेजुएला में कल बोले वैसे ईरान के तेलवा बोले हम लेबे. Hij zat dat VS Iran uiteindelijk zullen verlaten, maar dat Washington er ook voor zou kunnen kiezen te blijven en de olie te behouden.
keep the oil, zei Trump. Onder de mogelijkheid willen hem door Iran te hij hoorde we. Door oorlog waar hele bakje toch willen telwaar hem doen. Hoe aan behouden kerbe. President trok daarbij zelf de vergelijking met Venezuela. Amerika hebben daar onlangs onvergelijke overeenkomst gesloten waarmee Amerikaanse partijen vergaande invloed krijgen op een groot deel van de Venezolaanse olievoorraden. Tot Trump verwacht einde oorlog dit jaar. We ja tel hier bij hem loke $2.45 dala hoe je hier Trump ke en Iran ke oorlog se. En John hoa bijle iedereen voelt in zijn portemonnee. En hamar Trump bole he aise aise baanthe hamare janta. तो ये सब बात आपको हम बस सुना ही देते हैं कि और कैसे अब देखो भैया नब्रेक भइल है किसी नाम में कि 50,000 एसआरडी सब्सिडी मिलल हैगा फर्स्ट प्राइस इन सुरीनाम नब्रेक ओवर सब्सिडी फॉर 50,000 एसआरडी फर्स्ट प्राइस इन सुरीनाम में को नब्रेक गइल है एकर बारे में मिनिस्ट्री फॉर फॉल्स गेसोंडहेड ओ हैगा मिसिकाबा Bolle bekend gemaakt dat bericht over vermeende subsidiepaatje 50,000 keer voor gezinnen en jongeren niet op waarheid berust. Die gezin keer jongeren keer 50,000 subsidie willen bolle jood baat he. Minister spreek van een bericht hega. Bolle hega. Momenteel wordt gesteld dat de Surinaamse overheid subsidie 50,000 SRD dega voor nationale fonds voor gezin en jeugdondersteuning. Daarbij wordt beweerd dat alle gezinnen en jongeren in Suriname voor financiële ondersteuning gaan krijgen. Bolle iets goede baat he, bolle zomaar ik heb haar chaarsen van karise. Nep bericht dat door de kwaadwilligen wordt verspreid. Minister weten dat officiële mededeling hega. Bolle ietsje jua waar en na he. Bolle minister bolle vermeend overheidsfondsen waardoor boodschappen op het eerste gezicht officieel kan overkomen. तो हमारे जनता आप लोग को ये सब बात हम सुनाते हैं समाचार को हम बस सुनाते ही रहेंगे और समाचार आप लोग को हम बताते ही रहेंगे और हम चलते हैं जनता हम चलते हैं और आगे को भैया गिरधारी बस्त्राइट कोरिप्सी में स्पेशल तक रक्त लकमांग गिरधारी के है भैया एक रूम है भैया गिरधारी एक रूम है हाँ हमारे जनता गिरधारी एक रूम है और यहाँ बतावे गिरधारी फरेन किंग फन एक रूम इसे एक इकोनॉमिस्ट इन सुरीनाम बोले करप्शन सुरीनाम के बोले एरेस्ट के फॉर्मन आने बहुत जबर बोले एरेस्ट के बोले है का करप्शन सरनाम में उतो जिंदगी से है बाकी और ढेर हो गए भैया स्वामी गिरधारी लीव बाय डीलिंग फन साम लीविंग हेड का फुल दैट करप्शन अनफोल्डिंग द सीरीज वर्थ अन beste luisteraars Gerdari bolle feske in de toekomst meer aandacht zullen besteden krijgen ik er bare mee vooral met het oog op de verwachting in kom van olie en gassector ke bare mee maar janta आप लोग को एक गीत हम सुना देते हैं तो अभी हम वापस आ जाएंगे

और मुसाफिरे हो मैं यारो और चलते ही जाना है। ये गीत है जो आपको हमने सुना ही दिया है, हमारे यारो हमारी जनता। तो और आगे को अपना प्रोग्राम को हम लेकर चलते हैं। अब देखो भैया, सूरीनाम देश लेकर और पूरा दुनिया के समाचार आपको हम सुनाएंगे। जैसे आपको पता है, हर मंगलवार को शाम को 6 बजे हमारा प्रोग्राम को हम हर हाल करते हैं, और मंगलवार को, रविवार को शाम को, रविवार को शाम को 1 बजे हमारा प्रोग्राम चलते हैं, और शुक्रवार को 6 बजे हम लाइव भी प्रोग्राम करते हैं, यानी कि समाचार। सूरीनाम में बहुत गर्मी भैया, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना गर्मी है बैना फैफन दर तक तो अख्तन दर तक खराद भाई गर्म सूरीनाम में है। तो बताए गए हैगा 14 तारीख सितंबर के किस खबीर बताई से बहुत जबर पानी बरसेगा, बहुत जबर बरखा आएगा। तो मातखर इखन बहुत फालन पारी पानी जबर बरसेगा। मित्र लोग से दिन संद्रिम के बोले बकी चाहे उतरा पानी बरसी, गर्मिया उचने रही फैफन दर तक तो अख्तन दर तक खराद है। दुस मैं से दिन सूरीनाम खान ऑफ जैन दिसे लेवल फूले बोले लुक टेम्परेचर जो सूरीनाम के दरियन दर्त खराद है, सबसे लागी मारवाही नवरात्री दर्त खराद हमारी जनता। और बताए गए हैगा इन नाखर रविवार को पारा में और सगरो भैया बहुत गर्मी है, इतना गर्मी कैसे लोग सहीगा, वहाँ के लोग के इतना मुसीबत है वेर के बारे में हमारी जनता, गर्म के बारे में। और बोले हैगा यहाँ से जो आदमी जाए तो कौन कौन दशा हुई वहाँ पे गर्म से भैया। तो ये बात है, सूरीनाम में बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भैया। यहाँ पे देखो बताई गई है कि यहाँ बताई गई है आने वाला हफ्ता में वेर ब्रेक पर हमारी बो के, और बहुत गर्मी बताई गई है। रात के सेल्फ जैसन ट्विन तक खराद है, सवेरे देर तक खराद हो जा भैया। और यहाँ बतावे संजा के द्रियन देर तक रात के सीफन ट्विन तक खराद हो जा है सूरीनाम देश में। हाँ वूस दाख के इस फिरन देर तक खराद गर्म होगा। डोंडा के 35, फ्राइडा के 34, सैटरडे के 33, संडा के 33 ग्रेड होगा। इतना गर्मी है सूरीनाम में। तो आप लोग के थोड़ा सूरीनाम के गर्म बता दी भैया, जो आदमी गर्म लोभी करे है तो आपको तो प्रॉब्लम ना है, बाकी हमारा मान के ना भाई रात दिन कपुआ ने इस पानी में और वही महल के हम बैठल रहती भाई हमारा मान के ना रहा ये गर्म भाई एक कांडत नींद। अब देखो भैया और आगे हम चलते हैं। दृक्ष मिलल है भाई सूरीनाम देश में, दृक्ष मिलल है। बतावे गए गाय को 5-5 तक यार के आदमी राम लखन स्त्रात में रहे, राम लखन स्त्रात क्वाटा के गोसाई स्त्रात है और तो ठोफ जाने लगा भाई। वहाँ पे हाच मिलल है, कोकाइन मिलल है, मरवाना मिलल है। तो हम बोली तरी से बता दी लंबा चौड़ा लिखल है, लेकिन कोकाइन के चीज भैया उतरे हम बताई है जितना नूडक हैगा। ये बात है हमारी जनता। साथ साथ हम चलते हैं तुलन जानो है रोतनी लाइसनर के 25 तक यार के एगो नीजल अंदर है जो सूरीनाम में रह रहा वो फरमेस्ट हुई गए कितना रोत से सपनों के खोजे है ओकर ओतो जाए के सरमक्का के रीवा में मिला गुतरों में मिला रहा आगे आगे लगल रहा एगो नीजल अंदर नीमर एंड फिल्म प्रोड्यूसेंट है फॉर ए लास्ट वो निकेरी में रहा सरमाका में रहा ओकर पलवान नीदरलैंड में ओके बहुत खोजे हियाँ से गो हील खरूप गईल है कुत्ता उत्ता लेके ओके खोजे भैया मक्की अब्बे के कुछ पता ना मिलल है। 15 तारीख ऑगस्टस में ओकर उज्जर तो किया सोरेंटो सरमाका में मिलल है
Auro diezelfde dag gaf hij zijn laatste levensteken. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem en ze. Or betaiga jehega. Betaiga jego swampume milelezer makame 21 augustus ke. Or leisner ke seven koje he. Verdachte kego pakkerise S-A-J-S-N ke R-E ke aangehouden. Ryan Kenneth Terroriaal die eerder in onderzoek was gehoord. Maar toen nog niet al verdachte werd aangemerkt is nog steeds voorvluchtig. Ja, ik mila bhagal hai tab to kuch kar le tab to bhagal baate aur hua ke peeche jo hai 26 augustus ke opsporing dhardesh ki aur me examen khoje hain pakad ke choran ke tu chhod diye bhaiya tab jao tu double kaam karo aur batave hega het word vandaag van onder meer moord medeplichting van moord doodslag bhai lekar upar zware mishandeling opzettelijke vrijheidsberoving en deelname aan de criminele organisatie politie beschouwt hem als vuurwapen en vlucht weer gevaarlijk door naar de Mia Bhangal he. De appel vlucht weer gega vuurwapen ke ba aupe te chordelijke verhoor kerke. Dat is toch erg mensen. Familie ervaart groeiende machteloosheid. Familie van Leisner woont in Nederland en zegt nauwelijks zicht te hebben op de voorgang van een onderzoek. Bole hoe ze ik kom naar jane ketra onderzoek hoe he. Dat u jane scriptie te Suriname me bharale bhaiya. Zelf ego Braziliaan ke Colombiaan drugsdealer बन रहा सिपाही में सिपाही ओके खोल दे इसे सिपाही एन वेल बन है सो एरिक इस दैट इस सुरीनाम में से द पुलिस इज सेंस सेल्फ दैट नीड नीड अलमाल मा हील फील पुलिस इज सेन दैट हील एरिक करप्ट मेंसे से नीड टू वर्ट्राउन वी सेन ईदर द ऑल सेल्फ ऑन सेटन डंगबार ओके पलवार बोले है ओ खो जाई हुए है 10 कुत्ता 15 आदमी गए ले 2 तो 6 सितंबर हुआ फर्स्टकिलन लोकेशन से मक्का में खोजे है अंदर में द फिन प्लास फॉर अ ऑटो ब्रक हेल्पर Ziel van de verdachte RE en aangrenzende terreinen waren onderzocht. Ook het wrak zelf werd met de honden onderzocht, mensen. Bolle de zoekactie leverde geen lichaam op. Politie maakte 8 september mee bekend dat ze die aanwijzingen waren verkregen voor verdere strafrechtelijke onderzoek. Over de aard daarvan zijn geen mededeling gedaan. तो यहाँ बतावे हैगा रोतनी के अब एक को स्पोर ना मिलल है वे लेखन उस नियर बेस है फर्मिसिंग अल दोस नेटली लेसनर ओकर फैमिली लेते हैं तो यहाँ पे एक वो हेलर रही है रोतनी के बारे में कि कब कहाँ कौन ची ओकर बारे में ऑन द सुख भाईल है मार तो नहीं तू इसकी एंकलेस बोर में जे आप लोग जानो हेलिंग के भैया स्कूटर रहा और ये निकल के रहा और हेलिंग के सबर मार्शलेनो हेलिंग ये होई के बंद फोर्सेटर सबर फरकीसिंग में के जीतल है मार्शियानो हेलिंग ब्लेव फोर्सेटर फाने ओखम वर्कनीमर्स ऑर्गेनाइजेशन जो ABS कहेगा वहां पके ई ABS के फक बोन्स लीडर सेवन पिंस से पर किसी करेगा सेन टीम रिन्यूएबल वन डॉलर द बोन्स फॉर किसिंग फन टीम बंद्रू Helling zegt dat de plannen van de korte termijn vooral gericht zijn op het voortzetten van de activiteiten. Op het AW ook wordt momenteel gewerkt aan de afronding van de collectieve arbeid overeenkomst van CAO. Helling zegt EBSK, hoe ik bondvoorzitter, dat de kwestie nog achter de rechter is. EBS in de zaak veroordeeld, maar heeft tegen het vonnis hoger beroep aangetekend. Europa Brunswijk, Bhaijon Hega, uw directeur Hega, en Helling se ose bhaiya bara gadbad hai, aur sabna mantra i jite, ma u jeet gaye bhai, ab jeet gaye ab bonds voorzitter Helling se jo Hega, Marciano Helling ab konchi konchi directeur ke saath kari deen marken mein bhaiya, aur Ruslan deen marken ke go helicopter ke licht an licht an kogel se dagi se helicopter mein hi deen मार्कन के जो प्रेसिडेंट है बड़ी गुस्सा में है और बोले देनी मार्कन ऑन स्टेम ऑन अफस्कित लिख कोकल्स दो रूसी से स्किप दागी से एकर मारे में प्रीमियर मैथ्यू फ्रेडरिक्सन हेफ एट अफस्कित फॉर लिख कोकल दो रूसी से फ्रेगट फॉर ऑर्डर्ड एज अ रुकलोस एक्सी द लिख कोकल्स राखते
Deense krijgsman maandagavond bijna een militaire helikopter. Betawe, wat je go helikopter gedaan hebt. Of toen jij in Denemarken is namelijk. En deze Russische acties zijn bedoeld om de intimiderende en om ons te verdelen. Schrijft de Frederiksen in de verklaring. Obolega, dat zal niet lukken. Volgens Denen was de militaire helikopter bezig met de routineoperatie om foto's te nemen van een Russische fregat toen de opeens schoot met lichtkogel. De Russische schip bevond zich in de internationale wateren in de buurt van Getser. Dat is de zuidelijke plaats van Denemarken en ligt ten noorden van het Duitse Rotsok. Toen ik er waren mee in Rusland, moeten we oppassen mensen. Want er ben na volkertje dag die, dan wordt de oorlog allemaal nog heftiger en heftiger en heftiger. अब तो लोग जाने स्ट्रांथ हॉर्मूस में भैया तेल ओल हुआ पे लेक भाईल है ग्रीन पीस जो नहीं का एक्टिविस्ट है का फेव ओली फ्लेकर इन स्ट्रांथ फन हॉर्मूस सिख बार बोले देखा है तो एक बारे में इसे बांचे ब्रुसेल वेल मिग्रांसी नोटवेर बेरखरूत तुस्त्रूम असील सुकर्स के बारे में तो जाने ब्रुसेल जो नहीं का असील सुकर्स आवे है यूरोपीय कमिसी बोले है वुंसदाग के कि होग वर्स्केलर मिग्रांसी जो नोटवेर में बनल है Hij antwoord op de onverwachte stroom als hij zoekt naar Spaanse exclave. En als die noodwet wordt geactiveerd, kan de behandeling van asielvragen tijdelijk worden opgeschort, melden diverse Brusselse bronnen. Duitse politica zal woensdag aankondigen in haar States of the Union van de Europese variant van de troonrede. Jullie mee 80.000 migranten, Marokkose geile, Spanje, obole het leidde tot geschokte verontrustende reactie in Europese landen die veroordeeld. Die vooral vreesden dat veel van de migranten naar Europa zouden doorreizen. Maar Chanta. Zelensky blijft energiesector aanvallen in Rusland. Kiev reageert, ik er maar mee. Obole Rusland, toen jane, Amerika, jane, en Oekraïne ke kitra dage ab ulta Oekraïne Rusland ke bhi dage ab Rusland blijft onlangs so maar ke door de Amerikaanse Donald Trump gemeld akkoord doorgaan met de aanvallen van doelen in energiesector stelde Oekraïnse president Zelensky hij schreef dat Oekraïne op die aanvallen reageert bole je hame dage ga Rusland te bole reageer kere Rusland verklaart dat zowel Rusland Oekraïne ermee had ingestemd om te stoppen met de bestoken van energieinfrastructuren zoals olieraffinaderijen, elektriciteitscentralen die de afgelopen maanden veel zijn aangevallen. Tot telke waren met Marjanta, Jezebel, Samantjaar, Amco, Schrijf, Radio, Fahunke, Madjimse.

0: सुनने वालों नमस्कार, ये है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और हमारे आज कार्यक्रम में सहयोग दे रहे श्रीमती खैर लिंदा जी और अनास्तासिया जी। एक कार्यक्रम जो हॉलैंड में होने वाले हैं, जिसमें स्पिरिचुअल के अंतर्गत में सुनाया जाएगा, बताया जाएगा। और सद्गुरु जी जो फ्रेंच यानी कि फ्रांकरेक से यहाँ आने वाले हैं, तो हमारे कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं अनास्तासिया जी। अनास्तासिया जी, आप जो कहते हैं हम सबको कि हम गोरे लोग, और कैसे आप हिंदी कितना अच्छे से बात करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है।
1: धन्यवाद।
0: बड़ा धीरे से आपने कहे कि धन्यवाद। कहने के तात्पर्य यह है दोस्तों, सुनने वालों, अनास्तासिया जी कुछ सालों जो भारत में रहे हैं और भारत में रह करके अपना भाषा हिंदी खूब अच्छी तरीका से बात कर लेते हैं और उसमें मराठी भी बात कर लेते हैं। तो अनास्तासिया जी, पहले अपने बारे में हम सबको सुनाइए कुछ।
1: हाँ, तो मैं जब 4 वर्ष की थी तो मेरे पिताजी और माताजी एक आश्रम में, गोवा में स्थित एक आश्रम में रहने के लिए गए थे। और मैं 4 वर्ष की थी तो तब से वहाँ 15 साल रहती थी आश्रम में, गोवा में। मैं स्कूल में जाती थी वहाँ गोवा में, और वहाँ से मैंने मराठी हिंदी दोनों सीखा। मुझे भी गोवन लैंग्वेज कोंकणी भी थोड़ी आती है। मैं जन्म से साधना में साधना कर रही हूँ। मेरे पिताजी माताजी मेरे जन्मे के पहले साधना करने का शुरुआत किया था, और मैं साधना में बड़ी हो गई। और मैं छोटीपन से भगवान पर बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण बहुत बहुत प्यारा है और मैं उनके साथ बहुत बात करती हूँ। तो ये मेरे बदल थोड़ा थोड़ा है।
0: अनास्तासिया जी, आपने अति सुंदर रूप से ये संदेश को रखे कि भगवान से प्रेम करना कैसे होता है, और इसी अंतर्गत में और जो जाकर के सद्गुरु जी हमारे देश हॉलैंड में आने वाले हैं, कार्यक्रम जो होने वाला है सेवाधाम में मंदिर में, हम सब अभी सुनने वालों जरूर उसके बारे में बात करेंगे कि कई बजे और कब और कहां पर कार्यक्रम को रखा जाएगा। पर अनास्तासिया जी, हमें थोड़ा से संदेश दीजिए कि सद्गुरु जी जो अपने बचपन जो फ्रेंच में जिनका जन्म हुआ नेहतीन एनन शैफंतक में, और उन्होंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, उनके जब बायोग्राफी जब देखा जाए कि बचपन से उन्हें कुछ था भगवान के रुचि, थोड़ा से उसका और संदेश हम सबको लिए रख दीजिए।
1: हाँ, तो बचपन से मेरे पिताजी को भगवान में बहुत विश्वास था। लेकिन हमारे माता पिता, उनके माता पिता भगवान में बहुत विश्वास नहीं करते थे। लेकिन मेरे मेरे पिता के माता वो जीसस पर बहुत प्रेम करते थे, और वे पिताजी को भगवान के बारे में बहुत सुनाई देते थे। फिर पिताजी बड़े होते होते एक सुपर मॉडल बन गए, और सुपर मॉडल में वो काम करते थे। और फिर जापान में गए, जाकर उनको मेरे माताजी से मिलना हुआ। मेरे माताजी तब साधना में शुरू उनने किया था, और फिर माताजी ने बाबा को, सद्गुरु को साधना में उनके बारे में सब बताया। और फिर तब से पिताजी को ऐसे लगा कि अब मुझ मेरा जो सर्च था, या उनको बहुत ऐसे लगा लगता था छोटेपन में कि मुझे कुछ तो चाहिए। और फिर बाद में उनको लगा कि अपने मैंने ढूंढा जो मुझे चाहिए था। और फिर वे साधना करते करते, जैसे मैंने बताया, जब मैं 4 वर्ष की थी तो हम आश्रम में गए थे। अभी मैं 22 इयर्स की हूँ। वहाँ साधना करते करते वे ऐसे सारे नाम का एक, जैसे गोवा में सनातन संस्था ऐसे नाम का ये है, SSRF एक ब्रांच है उससे। तो मेरे पिताजी इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया उनने SSRF को सब संभालने का। और SSRF क्या है, वो सनातन साधना के तरह, लेकिन सब बाहर के लोगों के लिए। लाइक इंडिया में भी साधक आ सकते हैं SSRF में, लेकिन अब्रॉड ऐसे सब विदेशी लोग ऐसे जो साधना कर सकते हैं, क्योंकि विदेशी में थोड़ा अलग है इंडिया के तरफ। तो पिताजी ने ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उनको सबको साधना कैसे अच्छे से कर सकते हैं ऐसे सब सिखा रहे थे। नाम जप कैसे करना, भगवान को कैसे बुलाना, हमारे जो दोष है वो, हमारे जो बेस जेलसी ऐसे सब जो दोष है हमारे में, तो वो कैसे निकाल कर गुणों को अंदर लाने के लिए ऐसे सब कैसे। तो फिर दूसरों लोगों को भी साधने बारे में कैसे बुलाना, कैसे बताना, कैसे उनको वो जो माया है उससे बाहर निकालने का, उनको चैतन्य पॉजिटिविटी ऐसे सब लाने के लिए कैसे साधना कर सकते हैं, नाम जप, दोष निर्मूलन, ऐसे सब छोटे छोटे जो है वो कैसे सब अच्छे से करने का, और भगवान के चरणों में कैसे जा सकते हैं, ऐसे सब वो सब विदेशी साधकों को, सब साधु सब लोगों को सिखा रहे थे। और वो करते करते हमारे जो गुरु है इंडिया में, उनके गाइडेंस और उनके मार्ग से मेरे पिताजी 2018 में सदगुरु तक पर पहुंचे। और अभी हम एक जर्मनी आश्रम कर रहे हैं। तो 2021 में हमारे गुरु ने बोला कि जर्मनी में हम आश्रम बनाएंगे। तो पिताजी को पूरे जर्मनी को फिर कर उनको बोला कि आप एक आश्रम ढूंढो। तो 2 वर्ष मेरे पिताजी पूरे जर्मनी आश्रम ढूंढने के लिए उन्हें प्रवास किया। और फिर 2022 में हमको आश्रम मिला, एक जर्मनी आश्रम अलरोडे में। तो अभी मेरे पिताजी उनके रेनोवेशंस और साधकों को साधने के लिए कैसे बढ़ा सकते हैं आश्रम में, ये सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी यहाँ ले रहे हैं। तो ये थोड़ा मेरे पिताजी के बारे में है।
0: बहुत अच्छा रूप से आपने ये संदेश को रखे कि देखा जाए कि आपका, यानी कि सदगुरु जी जो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने सिर से लेकर के हम सब के लिए, क्योंकि हम सोचते हैं हमने जीना सीख लिया, पर जीना असलियत में जहाँ पर आनंद को प्राप्त कर सके तो साधना, और कैसे साधना होगा, इस अंतर्गत में सद्गुरु जी जो हॉलैंड देश सेवा धाम में आने वाले हैं। अनस्तासिया जी, मैं आपसे ये प्रश्न रखना चाहता हूँ कि सेवा धाम में, जैसे कि हमने सुने हैं कि 17 को आप लोगन फ्रेंच से छूटने वाले हैं और 18 को आप लोग नेदरलैंड्स यानी कि डेन हाग में पहुंच जाएंगे, तो कई बजे और कहां पर ये कार्यक्रम रखा जा रहा है?
1: तो

0: नवंबर, 2 दिनों में वो प्रोग्राम होगा।
1: और अनस्तासिया जी, जब देखा जाए कि 19 सितंबर शनिवार होता है, तो कितने बजे से कितने बजे तक कई सेशंस रखा जाएगा, इसके बारे में हम सबको जरूर बताइए।
0: पहला सेशन 10 o'clock इस बजे होगा।
1: 10 बजे सुबह में?
0: 10 बजे सुबह में शुरू होगा। मैं मेरे पिताजी को हिंदी में इंट्रोड्यूस करूंगी और फिर गणेश श्लोक बताऊंगी और फिर बाद में पिताजी श्री राम नाम जप का एक मेडिटेशन सेशन लेंगे। उसके बाद हम मेरे पिताजी एक्सप्लेन करेंगे कि नाम जप कैसे चलता है और कैसे हमको लाभ मिलता है नाम जप करते। और किसी को भी प्रश्न या ऐसे कुछ पूछना है तो इस टाइम में भी पूछ सकते हैं।
1: और देखा जाए ट्रांसलेट करने वाला है, यानी कि अनस्तासिया जी जो रहेगा, और हर रविवार को वहाँ हम लोग सेवाधाम में मंदिर भी लगाते हैं, जो कि दिन में 2 बजे से शुरू होता है 6 बजे तक। और इसमें कार्यक्रम, रविवार का कार्यक्रम कितने बजे से कितने बजे तक है?
0: रविवार का कार्यक्रम 10 से 12।
1: 10 से 12 बजे तक। तो दोस्तों सुनने वालों, आपने सुने हैं कि हमारे देश में और हम सब को और संदेश देने के लिए सद्गुरु जी, जिन्होंने बहुत से तपस्या किया है, बहुत सा और फ्रंटवर्डिंग भी पाए हैं, और जा करके हमारे साधना के लिए, स्पिरिचुअल के लिए कैसे किस प्रकार से हम सब उस पे और ध्यान दे सकते हैं, और इस प्रकार से जो यहाँ दनाह में कार्यक्रम होने वाला है। और अनस्तासिया जी, हम सब के जो अभी और भी संदेश सुनाने वाले हैं, कहने के तात्पर्य यह है कि हम अपने पितरों के बारे में क्या कर सकते हैं। अनस्तासिया जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और सद्गुरु जी हम सबको क्या संदेश सुनाने वाले, क्या हम सबको अभी से कुछ आप सुना सकते हो?
0: हाँ, तो अब थोड़े दिनों में पितृ पक्ष आने वाला है। तो पितृ पक्ष क्या होता है? जब पितृ दोष हमारे ऐसे बहुत लेवल्स होते हैं, तो पाताल होता है, फिर भूमि, फिर भूमि तत्व, फिर ऐसे दूसरे दूसरे लेवल्स होते हैं भगवान तक। तो ये पितृ पक्ष क्या होता है? जब पितृ दोष हमारे जो रीजन होता है वहां वे नीचे ऊपर से नीचे आते हैं और उनका हमारे हमारे पर इफेक्ट और होता है। तो उन दिनों में हम कैसे पितृ दोषों को के जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं उनसे कैसे हम सेफ रख सकते हैं? तो हम कैसे सेफ रख सकते हैं हमको? तो एक होता है नाम जप करने का, श्री दत्तात्रेय का। तो श्री दत्त जी पितृ दोषों को यहाँ से भगवान तक कैसे पहुँचा सकते हैं? इनका वो भगवान होता है। तो पितृ पक्ष के समय रोज दत्त जी का नाम जप किया तो हमको पितृ दोषों से कुछ होता नहीं।
1: बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं अनस्तासिया जी, हम सब यहाँ पर कभी कभी लोग अपने मुसीबतों को लेकर के और हम कहीं मंदिर में या कहीं मुसीबत के जहाँ पर पहुँच जाते हैं, कोई हल नहीं मिलता है, और हल नहीं मिलता है, और जबकि हमारे अपने, हमारे पितृ ऋण, देव ऋण, और ऋषि ऋण, इस पे जो हम ध्यान दे तो हम उसे कितना

दीवाना हुआ पागल, नॉक्सेज द लवली सॉन्ग मेंशन। तो हम जानते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किसी के चुनरिया उड़ जाते हैं, तो चुनरिया पे भी गीत बन चुका है यारों।

सलमान ए रानी मुखर्जी। इनके गनहोफ

और सर से वो सर की तो कभी धीरे धीरे के सांझ में हम चलते गोविंदा और नीलम की ओर, वो है खुद गर्ज, मूवी का नाम है खुद गर्ज से पर हिट सॉन्ग मैं से मीना से नाचा की डरियल कैलेंडर शबाब है।

और आप की आजानी से और क्या क्या हो जाते हैं हमारे यारो यारो, प्यार की कागज पे लिख दूँ तेरा नाम।

में जल दे रहे, क्या हुआ ये मुझको, क्या हुआ है? और रोमांटिक सॉन्ग जिस देश में गंगा बहते हैं।

लाखों है निगाहों में जिंदगी के राहों में पद्मश्री मोहम्मद रफी का ये एक मोहब्बत भरी और ये गीत है एक बार ना एक बार बार बार बार बार माइज मुकेश और करोड़ों को चुराने वाला करोड़ों का दिल चुराने वाला माइटी मुकेश और आशा जी आ रहा है एक बार ना सौ बार।

माइल की बुके आशा जी का ये दिल लेकर नजराना का ये सॉन्ग थे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं कोई जलवा का ओर, और वो है पद्मांश श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, और इस गीत को बेटी और बेटा का सुनना चाहिए मूवी का नाम है दोस्तों।

अगर तेरी जलवा खुदाई न होती तो क्या क्या होती। उसके बाद हम चलते हैं कि मेरे दिल रुबा ना गुस्सा, मेरे दिल रुबा मुझ पर खफा न हो। बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये पुराना सॉन्ग है दोस्तों, नुपर मोफी है दोस्तों। तो ये गीत आपको हम सुनाए जाते हैं, आओ सुना जाए।

मोहम्मद रफ़ी, परमात श्री मोहम्मद रफ़ी के साथ साथ मुकेश माइती मुकेश के भी गीत बहुत बहुत पसंद करते हैं, तो एक माइती मुकेश का भी हो जाए। ठोकर मौफी का नाम है, नेखती सेफन तक का ये हिट सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं ढूंढता हूं किसको, ये आपको तो पता होगा, और हम भी है तुम भी हो। मैती मुकेश गीता दत्त का ये सॉन्ग है मूवी मूवी मूवी, राज कपूर।

आदित्य लता जी का ये सॉन्ग है और इसमें काम किया है राज कपूर पद्मिनी के साथ हम चलते हैं एक मनोज कुमार और मल्हार सिन्हा का मूवी जिसमें माइती मुकेश भी अपना गीत को गाया है और वो है हरियाली और रात।

मेरे तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। मौफी के नाम है हरियाली और रास्ता सुनाएंगे महेंद्र कपूर का ये और एक सुपर हिट सॉन्ग है लाइफ लाइफ लाइफ ऑफ खनो वुमेन्स।

और एक लाइव सॉन्ग थे महेंद्र कपूर का सॉन्ग थे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं एक और गीत हो जाए, मूवी के नाम है हरियाली और रास्ता, जिसमें मनोज कुमार मल्हा सिन्हा ने काम किए हैं। करोड़ों का दिल चुराने वाला मैथी बुकेर ए नाइटिगेल लता जी का ये सॉन्ग है।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और ओल्ड इन गोल्ड जो गीत होता है उसमें स्वाद बहुत ज्यादा है। हम चलते हैं एक गीत के ओर जिस फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिनेमन का एक सुपरहिट फिल्म है जो आप इस गीत को जानते होंगे दोस्तों।

और दो लफ्जों की है ये कहानी। मूवी के नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन ने तमन इस फिल्म में काम किया है। गीत को गाया है आशा भोसले दोस्तों। और ये ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग आपको जरूर अच्छा लगेगा। आओ सुना जाए ये क्या है।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये गुमारे।
1: कहाँ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

और तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं दोस्तों, ओल्ड इन गोल्ड का प्रोग्राम यहां से हम चलाते हैं हमारे। तो यहां पर क्या है, आओ सुना जाए ओल्ड इन गोल्ड का ये सॉन्ग और पुराने गीतों की बाहर प्रोग्राम है।

जन्म ओल्ड एंड गोल्ड गांजोंग हम आपको सुनाते हैं हमारे यारो हमारे दोस्तों। और एक और हो जाए ये बहुत पुराना गीत है कि अखियों का नूर है तू जोहर एन महमूद इन गोवा अथवा से सुपर हिट फिल्म में से। और ये गीत आपको हम सुनाते हैं रेडियो फाहून के माध्यम से और यहां से सुनाते हैं।

0: ये गीत थी एक बहुत मशहूर गीत है, आओ सुना जाए ये क्या है।
1: बेकरार
0: महेंद्र कपूर
1: न जाए।
0: नहीं दोस्तों,
1: आपको हमारी कसम लौट
0: हेमंत कुमार।

और ये रातें, ये मौसम, और क्या क्या होता है दोस्तों, और पुराने गीतों के भाड़ सॉन्ग, हम चलते हैं झूमता मौसम मस्त महीना। और नता जी और परमा श्री मनाली का ये सॉन्ग है।

और झूमता मौसम मस्त महीना नैतिक लता और परमा श्री मनाली का ये जोंग आपको हम चलाए हम चाहते हैं माइती मुकेश की ओर की जोर।

और मेरा दिल ये पुकारे आजा ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग, और कभी कभी होते हैं सर पे टोपी और वेलकम क्लियर दुपट्टा। आओ सुना जाए।

फनहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहुन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753 तक सेफ नफेटा फनहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

शब्द जो है ये रेगी हिंदी म्यूजिक आपके लिए जो पेश हो रहा है मेरे प्यारे सुनने वालों, और आपसे ये बता दे इस रेडियो स्टेशन जो ऐसा ही न्यू स्टाइल गीत आपके लिए ला रहे हैं, इस द इर्स्ट एंड बेस्ट रेडियो स्टेशन सिर्फ आपके लिए, आपके लिए नए से नए गीत आपके लिए चुनकर खोजकर और ला रहे हैं सुनाने के लिए। और ये रेगी स्टाइल में आप ये शब्द जो है उसे सुने और एक एक शब्द हमारे जीवन के कुछ लाइन इसमें जरूर आप पकड़ पाएंगे। हाँ, सोचेंगे हाँ ये तो बात सही है। आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए यहाँ से चलते सुनने के लिए फिर ये रेगी स्टाइल में और शब्दों में क्या हमको सुना रहे।

हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0735 23 47 47। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 20 7 8। फाहून हिंदुस्तानी रात।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कुछ पूर्वभाषी तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वप्न, यानी कई ऐसे लोग हुए हैं जिनको सपने में पहले ही पता चल गया था कि उनके आने वाला समय कैसा है या उनके जीवन में कौन सी घटना घटेगी। आभूषणों पर अक्षरों का अर्थ। एक महत्वपूर्ण स्वप्न का वर्णन अयुमान प्रश्नेटी नामक पुस्तक के 80-85 पृष्ठ मिलते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिल्ट प्रेकेट आगटे एक बहुत प्राचीन आभूषण पर खुदे अक्षरों का अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा था। वह बेबीलोनिया के किसी सम्राट से संबंधित 3000 वर्ष से अधिक पुराना था, जिसके दो टुकड़े थे। एक दिन आधी रात के स्वप्न में एक पुजारी ने बताया कि दोनों टुकड़े एक ही गोल वस्तु के तोड़कर बनाए गए हैं। दूसरे दिन हिल प्रेकेट ने उनको जोड़कर देखा तो स्पष्ट पड़ा गया भगवान नीलिम्ब को सम्राट कुरी गालजू की भेंट।

सुनने वालों, ऐसा ही एक संदेश मैं आपके लिए और रखने जा रही हूँ, सही वसीयत की सूचना। अमेरिका में सन 1937 में प्रकाशित नामक पुस्तक में चैफिन के एक धनी किसान ने 1905 में एक उत्तराधिकार पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी समस्त जायदाद तीसरे बेटे के नाम लिख दी, और 1919 में एक दूसरे उत्तराधिकार पत्र में जायदाद चारों बेटों में बराबर बांट कर लिख दी। बाइबल में रख कर बिना किसी को बताए भूल गया। 7 सितंबर 1921 को चैफिन का देहांत हो गया और पहली वसीयत के अनुसार जायदाद तीसरे बेटे को मिल गई। जून 1925 में चैफिन की आत्मा ने दूसरे बेटे को स्वप्न में बताया कि बाद वाली वसीयत ओवरकोट में रखी बाइबल के भीतर रखी है। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो जायदाद चारों भाइयों में बांट दी गई। सुनने वालों, देखो अभी आपने सुना कि एक परिवार के स्वप्न तो कि उनके पिताजी ने कैसे वसीयत बना के रख दी एक बेटे के लिए, फिर दूसरी वसीयत बनाई दूसरे तीन बेटों के लिए, लेकिन वो दूसरा उनको कागज़ नहीं मिला तो पहली वसीयत के मुताबिक पहले बेटे को ये सारी जायदाद मिलने वाली थी। लेकिन जब दूसरे बेटे को स्वप्न आया कि नहीं, एक और वसीयत बना के उन्होंने अपने यास में रखी हुई है, तो वो बेटे ने वो कागज़ निकाला, अदालत में पेश किया, फिर एक भाई के बजाय चारों भाइयों को बराबर जायदाद मिली।

सुनने वालों, आप सुन रहे हैं फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो, जो आप सबके लिए अब नए नए प्रोग्राम लेकर आता है। अब हम आगे चलते हैं। नेत्रों का फड़कना यानी आँखों का फड़कना। दाएं नेत्र की ऊपरी पलक, दाएं नेत्र की निचली पलक। धन यश प्राप्ति चिंता का विषय। बाएं नेत्र की ऊपरी पलक, बाएं नेत्र की निचली पलक। शत्रु से संघर्ष, कहा सुनी हो जाना, नीचा देखना। दाएं नेत्र का दायां कोना, कहा सुनी में नीचा देखना। बाएं नेत्र का नाक वाला, शुभ संकेत पुत्र प्राप्ति, शिष्य या कम आयु के प्रियजन से भेंट। यदि दाई आँख फड़कती है तो शुभ, परंतु स्त्री के लिए अशुभ। यदि बाई आँख फड़कती है अशुभ है, परंतु स्त्री के लिए शुभ है। दोनों एक साथ फड़कती हैं तो स्त्री को भय चिंता शोक हो जाता है। बायां नेत्र नीचे को शुभ होता है, बायां नेत्र ऊपर को चिंता भय शोक लड़ाई वाला होता है। सुनने वालों, अभी आप लोगों ने सुना नेत्रों का फड़कना, यानी जब हमारी आंखें फड़कती हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है।

सुनने वालों, स्वप्न विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर में से सारे अंग ही फड़क सकते हैं, चाहे आँख हो, चाहे हमारा तालुआ हो, चाहे कंठ हो, चाहे कंधे हो, अब मूछें भी हो सकती हैं। सुनने वालों, समूची मूछ, शुभ, धन, धान्य, दूध, दही, सवारी, ऐश्वर्य। दायां भाग शुभ, विजय, बायां भाग कहासुनी, झगड़ा। सुनने वालों, आप सबने सुना कि मूछें फड़कने से भी लाभ हो सकता है और परेशानी भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। ये संदेश जो आप सबने सुना, ये स्वप्न विज्ञान से निकाला गया है। सुनने वालों,

तालू का फड़कना, कंठी की कंठी, आर्थिक दृष्टि से शुभ भोगों की प्राप्ति, तालू का दायां भाग रोग से परेशानी, तालू का बायां भाग किसी अपराध में बंधी, दाढ़ी फड़के अपशकुन, लड़ाई मुकदमे में हार, दाढ़ी का दायां भाग सुख की प्राप्ति, दाढ़ी का बायां भाग अधिक अच्छे धन यश दोनों मिले।

सुनने वालों, हमारा अगला संदेश है कंठ का फड़कना। पुरुष का इच्छित भोजन मिले, स्त्री का कंठहार आदि मिले। कंठ का बायां भाग अच्छी उपलब्धि, कंठ का बायां निचला भाग अल्प मूल्य के आभूषण मिले। कंठ का ऊपरी भाग स्वर्णमाल मिलने की संभावना, कंठ का निचला भाग शस्त्र पीड़ा। सुनने वालों, ये संदेश रखा गया कंठ के बारे में जो हमने निकाला स्वपन विज्ञान से। सुनने वालों, आप सबको तो मालूम है कंठ किसे कहते हैं। कंठ कहते हैं गले को, और कहते नहीं कि गले के लिए हार भी चाहिए, कंठ हार।

सुनने वालों, अब मैं आपको बताऊंगी कि स्वप्न में देखे गए रंगों का फल, कि अगर हमें सपने आते हैं उसमें हमें रंग दिखाई देते हैं तो उन सपनों का क्या मतलब है। लाल रंग, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु। हरा रंग, धन कमाने की योग्यता। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन। सफ़ेद रंग, अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना। काला रंग, दुर्भाग्य। सुनने वालों, ये है स्वप्न में रंगों के बारे में स्वप्न, कि जब हमें सपने आए उसमें रंग दिखाई दे तो उन सब का क्या मतलब होता है। सुनने वालों, आप सबने सुना कि सपन में देखे गए रंगों का क्या महत्व होता है और उनका क्या मतलब होता है। जैसे कि लाल रंग दिखाई दे तो उसमें अच्छा स्वास्थ्य होगा और आयु हमारी बढ़ेगी। और जैसे कि आपने सुना कि हरे रंग का क्या मतलब होता है, हरा रंग धन कमाने की योग्यता, कि अगर हरा रंग दिखाई देगा सपने में तो हमें धन कमाने की योग्यता प्राप्त होगी। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन, कि अगर हमें सपने में नीला रंग दिखाई दे तो उससे हमारा परिवार सुखी होगा। सफ़ेद रंग दिखाई दे तो अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति, कि हम समाज में एक अच्छा सा स्थान प्राप्त करेंगे। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना, कि हमें अपना मकान हो जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना, यदि सपने में हम लोगों को पीला रंग दिखाई दे तो उसका मतलब है कि हम दूसरों की नफरत के शिकार बनेंगे, दूसरे हमसे जलेंगे। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना, कि अगर हमें सपने में भूरा रंग यानी ब्राउन रंग दिखाई दे तो दूसरे लोग हम पे दोष लगाएंगे कि तुमने हमसे बेईमानी की है। काला रंग दुर्भाग्य है, वो तो आप सब जानते हैं कि काला रंग हमेशा दुर्भाग्य का ही होता है।

स्वप्न में देखी गई धातुओं का फल, सोना, अनेक कठिनाइयां, रोग, धन संपत्ति की हानि, चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात, तांबा, यात्रा में दुर्घटना, लोहा, अपने परिश्रम। सुनने वालों, सपने में जब हमें धातुएं दिखाई दें, यानी कि सोना चांदी जिससे बनता है, तो उसके क्या क्या परिणाम होता है? सुनने वालों, जैसे कि धातुओं से क्या क्या परिणाम होता है, जैसे सोना खाउट हमें अगर दिखाई दे सपने में, तो उससे हमें अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, रोग होता है, धन संपत्ति की हानि। हमारी नानी और दादी भी कहते होते थे कि सोना मिलना भी मुश्किल है और खोना भी मुश्किल है। अगर मिल जाए तब भी उसका अच्छा परिणाम नहीं होता, अगर खो जाए उसका भी अच्छा परिणाम नहीं होता। चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात। अगर सपने में हमें चांदी दिखाई दे तो उससे हमें प्रेम में निराशा होती है और कोई हमारे साथ विश्वासघात करता है। सुनने वालों, तांबा, अगर तांबा हमें सपने में दिखाई दे तो यात्रा में दुर्घटना हो सकती है। सुनने वालों, अगर सपने में हमें धातुओं में लोहा दिखाई दे तो उसका मतलब है अपने परिश्रम, कि हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम यानी मेहनत करनी पड़ेगी। सुनने वालों,

सुनने वालों, बुरे सपनों से बचाव, यानी कि अगर हमें बुरे सपने आए तो उसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं। सोते समय व्यक्ति का हाथ उसके सीने पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथ से निकलने वाली विद्युत से हृदय की स्वाभाविक क्रिया अधिक होती है। सोते समय विष्णु, कृष्ण, माधव, महामुनि, कपिल, आस्तिक का स्मरण कर लें। सोते समय व्यक्ति यह शावर मंत्र 3 बार बोलकर बाएं घुटने पर 3 बार हाथ मारकर शिव का स्मरण करके सो जाए। शिव की कूची, बजर का ताला, ई देही का बजरंग रखवाला, शिव गौरख, शिव गौरख, शिव गौरख। सोने से पूर्व स्वास्थ्य प्रसन्नचित हो तथा सोते समय उत्तर की तरफ सिर नहीं करना चाहिए।

सपने में अंक देखना, यानी सुनने वालों, अगर हमें सपने में साइफर्स दिखाई दें तो उसका क्या मतलब होता है? स्वप्न में 8 का अंक देखना दुर्भाग्य सूचक होता है। हमारा निजी विचार है कि शुक्र के तुला 7 या वृषभ 2 लगन वालों को 8 शनि का अंक दुर्भाग्य सूचक नहीं होगा। 18 का मंगल अंक देखना जातक को विपत्ति में डाल सकता है, परंतु मेष वृश्चिक लगन वालों को कोई हानि नहीं, उसको कोई हानि नहीं पहुंचती। 11 का अंक देखना सौभाग्य सूचक है। सुनने वालों, अब आपको अगर सपने आए और उसमें आपको साइफर्स दिखाई दें

सुनने वालों, अगर आप सपनों में खुद को अस्वस्थ यानी रोगी देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? अपने सिवाय किसी अन्य को अस्वस्थ देखने से कष्ट विपत्ति होती है, रोगी भी होता है, परंतु स्वयं को यानी अपने को अस्वस्थ देखने से प्रसन्नता, सुख शांति मिलती है, परिवार के साथ मिलाप बढ़ता है।

विभिन्न देशों में छींक संबंधी मनोरंजक मान्यताएं, यानी सुनने वालों अलग अलग देशों में कि छींक आने पर कैसे लोग उनका उनके बारे में सोचते हैं। ब्रिटिश न्यू गियाना के क्योटा जाति के लोग शयन कक्ष यानी स्लाब कमर में छींक को इस बात का सूचक मानते हैं कि आत्मा इस शरीर में वापस आ गई है। गुल्लू जाति के लोग छींक आने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। टोंगा जाति के लोग यात्रा आरंभ के समय छींक आने को अपशकुन मानते हैं। जमैका के नीग्रो जाति के लोग मानते हैं कि यदि नाक में खुजली का अनुभव हो तो लोग जातक की बुराई सोच रहे हैं। एस्टोनिया के निवासी यह मानते हैं कि यदि दो गर्भवती स्त्रियां यानी दो स्वांगर औरतें एक साथ छींकें तो वह कन्याओं को जन्म देंगी, और यदि दो पतियों को एक साथ छींक आए तो लड़कों का जन्म होगा। जर्मनी में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि जूता पहनते समय छींक आ जाए तो उसका अत्यंत शुभ लाभ मिलता है। पर्शिया के लोग छींक आने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शैतान से उनकी रक्षा की जाए। यूनानी लोग छींक को देवी कृपा का संकेत मानते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं तिथियों के अनुसार स्वपन फल, यानी कि जो डेट है, तारीख है, 1, 2, 3 महीने में आती है, अगर उसके अनुसार सपना आए तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 1 का स्वपन विलंब से फल देता है, 2 तारीख का स्वपन विपरीत फल देता है, 3 तारीख का स्वपन विपरीत तथा विलंब से फल देता है, 4-5 तारीख का स्वपन 2 मास से 2 वर्ष में फल देता है, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख का स्वपन शीघ्र सत्य फल देता है, 11-12 तारीख का स्वपन विलंब से फल देता है, 13-14 का स्वपन फल मिथ्या देता है, पूर्णिमा का स्वपन फल अवश्य देता है, कृष्ण पक्ष की 1 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 2 तारीख का स्वपन फल सार्थक परंतु विलंब से, 3-4 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 5-6 तारीख का स्वपन फल 2 मास से 3 वर्ष में, 7 तारीख का स्वपन फल शीघ्र मिलता है, 8-9 का स्वपन फल विपरीत देता है, 10-11-12-13 तारीख का स्वपन फल मिथ्या होता है, 14 तारीख का स्वपन फल सत्य तथा शीघ्र होता है, अमावस्या का स्वपन फल मिथ्या देता है। सुनने वालों, ये सब थे कि तिथियों के अनुसार अगर हमें सपना आए तो उसका क्या फल मिलता है।

सुनने वालों, हम कुछ बातों को अच्छा भी मानते हैं, शुभ मानते हैं, ऐसे ही जैसे हथेली का शगुन। यदि प्रातःकाल जागने पर हाथों की हथेलियों पर दृष्टि पड़ जाए तथा हाथ में कलश, ध्वजा और छत्र हो तो समझो कि 7 माह तक यानी 7 महीने तक धन का लाभ होता है तथा भावी उन्नति भी होती है यानी तरक्की भी होती है। सुनने वालों,

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

0: ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಂಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಧಿನಂ ಕುರುಮೆ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಶು ಸರ್ವದಾ ರುಬ್ರರು ಮಿಲ್ನೆ ಕಾ ಮೌಕಾ ನಹಿ ಪಾರಹ ಅತ ಶಬ್ದೋ ಸೆ ಅಪನೋ ಕೋ ನಮನ್ ಕರ್ ಲೇತಾ ಹೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿಸಿ ನ ಕಿಸಿ ರೂಪ ಮೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋತಾ ಹೈ ಇಸಿಲಿಯೇ ಆಪ್ಕಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಕೋ ಹೃದಯ ಸೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಫಾಹೋನ್ ರೇಡಿಯೋ ಕೆ ಸಭಿ ಸುನ್ನೆ ವಾಲೋ ಕೋ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸೆ ಅಭಿನಂದನ್ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ हम सब फिर एक बार उपस्थित हो गए हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। आज का कार्यक्रम में हमारे और राजेंद्र जी और बबली जी जो यहाँ उपस्थित हो गए हैं, तो बबली जी आप अपनी ओर से एंट्री कीजिए, फिर हम सब वही गीत की ओर बढ़ेंगे जो जिससे हम सब कार्यक्रम को हर बार शुरू करते हैं।
1: वक्त और अध्यापक दोनों हमें सिखाते हैं, पर दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अध्यापक सिखा कर परीक्षा लेते हैं और वक्त परीक्षा लेकर सिखाता है। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।
0: तो जैसे कि आपने सुन चुके हैं कि बबली जी ने भी अपना एंट्री डाल दिए है और हम वही गीत की ओर बढ़ते हैं जिसे हम हर सप्ताह चलाते हैं। तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। जिसका मन अभी उदास होगा तो ये गीत जरूर सुने और सुन करके और मन का उदासीपन जो है उसे हम दूर करते हैं, ताकि हम अभी जो आज ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम में धमाकेदार संदेश लेकर हम आए हैं उसे हम आपके लिए जरूर प्रस्तुत कर सके। पहले हम तेरा राम जी करे बेड़ा पार।

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डड़े, ये गीत जो हरिओम सरन जी ने और अपने आवाज से हम सबके लिए, आज वो नहीं है फिर भी ये गीत जिंदगी भर जीवित रहेंगे और हर बार भी खास करके ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम में जो हम सब चलाते रहते हैं। बबली जी, जैसे कि आज का विषय रखा गया है, विषय का बोल, विषय जो है आज का, जिसका संदेश ये है कि भंडारा का महत्व, तो भंडारा किसको कहते हैं?
1: भंडारा जब हम पूजा पाठ अर्चना करते भगवान की, तो उसके बाद जो सबको प्रसाद दिया जाता है या भोजन खिलाया जाता है उसको भंडारा कहते हैं।
0: उसको भंडारा कहते हैं?
1: हाँ जी।
0: और ये भंडारा ऐसा, क्योंकि यहाँ होलान देश में भी हम सब मंदिर आदि जाते हैं, और देखो अब समय जो ये 2 साल जिसमें महामारी ने अपना और खूब दिखाया, जैसे कि पहले मंदिर भरे रहते थे लगभग 150 लोगों से, तो अब उसके आधा से भी कम हो गए। उसमें कितने लोग जो हम लोग के साथ मिल करके सत्संग करते थे, आज हम लोग के साथ भी नहीं हैं। और यहाँ ये हो जाता है कि क्या भंडारा अभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके बारे में आपके कुछ जानकारी है?
1: अभी धीरे धीरे लोग मंदिर आना शुरू है, तो शायद आगे में चल के भंडारा हो सकता, क्यों नहीं हो सकता।
0: और ये बताइए कि भंडारा, जैसे हम लोग यहाँ, जैसे कि अभी आपने कहा कि भंडारा जब कोई भी कार्य करे, जैसे कि यज्ञ कराए या कोई यज्ञ, वैसे ऑफिशियल यज्ञ चाहे आप ना कराए, पर भंडारा लोग करवा सकते हैं ना?
1: करवाने को हाँ, अपना नाम, कई नाम देते हैं, कई नेते भंडारा करवा सकते हैं, लेकिन यज्ञ करके भंडारा करो तो उसमें सफलता और मिलती।
0: तो दोस्तों, जैसे कि अभी हम सब, आज का विषय भंडारा है, उसके बारे में तो अभी तो बस कुछ ना कुछ ये संदेश की ओर हम लोग बढ़े नहीं हैं, पर उससे पहले हमारे विशेषज्ञों लोग जो हमारे लिए खोज करके रखे हुए रहते हैं, तो क्यों ना बबली जी, पहले हम थोड़ा सा ये जो पहला संदेश है भंडारा के ओर बढ़ने से पहले, क्यों ना हम पहले अपने सभी सुनने वालों को उसका थोड़ा सा झलक सुना देते?
1: हाँ जी, जरूर। इसका विषय है कर्म।
0: कर्म यानी कि कर्म, कर्म के साधारण रूप में कैसे, क्या कहते कि जो हम करते हैं?
1: हाँ, इंसान जो कार्य करता है उसको कर्म कहते हैं, तो कि इंसान जैसे कार्य करेगा वैसे उसको उसके कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा।
0: जैसे करनी वैसे भरनी।
1: हाँ जी, ऐसे ही।
0: क्यों ना हम पहले गीत चला देते हैं?
1: जरूर।

0: का ज्ञान, ये गीत मुकेश जी और लता मंगेशकर जी ने,
1: हाँ जी,
0: इस फिल्म में अपना और कला से कौन प्रदर्शन दिए?
1: मनोज कुमार जी और हेमा मालिनी जी।
0: और ये बताइए कि मुकेश जी के और जो एक महान सिंगर थे और उसके बेटा भी कुछ गीतों को भी गाए हैं ना?
1: हाँ जी, मुकेश जी के बेटे हैं नितिन मुकेश।
0: नितिन मुकेश
1: और नितिन मुकेश के बेटे हैं नील नितिन मुकेश।
0: नील नितिन मुकेश, और वो गायक है या एक्टर है या कुछ क्या करते हैं?
1: नहीं, वो एक्टिंग करते हैं फिल्मों में, वो गायक नहीं बने।
0: नील नितिन मुकेश,
1: हाँ जी, मुकेश जी के पोते।
0: ऐसा, तो दोस्तों जैसे कि अभी आप सुंदर गीत को सुने कि यह है गीता का ज्ञान, पर आज का विषय जो हमारा है भंडारा। भंडारा लोग क्यों कराते हैं, भंडारा करने से क्या फायदा है और भंडारा और कितने प्रकार के किए जा सकता है, ये तो हम जानते हैं बबली जी की भंडारा में जब जाओ और कोई भी भंडारा करावे तो कम से कम लोग वहाँ जब उपस्थित हो जाते तो लोग वहाँ पर तिलक लगाते हैं ना?
1: हाँ जी,
0: तिलक लगाते हैं। पर अच्छा, अभी विषय की ओर हम सब छलांग लगाने वाले हैं, भंडारा से पहले कुछ संदेश जो आप हम सबको सुनाने वाले हैं।
1: भंडारे भी दो तरह के हैं, एक लंगर कहलाता है, एक भंडारा कहलाता है।
0: तो लंगर कहाँ पर कहलाते हैं?
1: सिखों में जो सरदार लोग हैं वो गुरुद्वारे में जो भोजन करवाते हैं उसको लंगर कहते हैं।
0: उसको कहते हैं लंगर।
1: हाँ जी, और जो मंदिर में लोग यज्ञ के बाद करवाते हैं उसको भंडारा कहते हैं।
0: ऐसा करवाते हैं कि हाँ, उसे भंडारा। और पर लंगर का एक विशेषता और है ना?
1: हाँ, लंगर है वो पंक्ति में बैठ के, नीचे बैठ के खाया जाता है,
0: नीचे बैठ के खाया।
1: हाँ जी, पंक्ति में बैठ के भोजन किया जाता है।
0: पंक्ति में बैठकर भोजन किया जाता है।
1: हाँ जी, और जो भंडारा है उसमें जब यज्ञ के बाद प्रसाद देते हैं तो सब लोगों को बांटा जाता है।
0: और ख़ास करके देखिए, बात यह है क्योंकि आज का विषय जो हमारे विशेषज्ञ लोग रख दिए हैं, तो जैसे कि ये कोरोना ये महामारी आया है तो अब कुछ कुछ बदलाव भी आने वाला है, कुछ कुछ बदलाव हो चुके हैं और कुछ मंदिरों में ऐसा हो गया है कि वहाँ पर जैसे कि बैठ के लोग आराम से और अपना भंडारा करते थे, अब ऐसा हो गया है कि लोग इन पैक कर देते हैं और उसे लेकर के आपके अपने घर पे जा करके भोजन करना है। तो पता नहीं ये ठीक है या नहीं ठीक है, अभी तो हम सब इसके बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, पर संदेश क्या है? और बबली जी, क्योंकि अभी हमारे जो खोजी सेना होते हैं, जो हमारे लिए हमारे विशेषज्ञों है जो हम सब के लिए तेमा को रखते हैं, तो हर बार कुछ ना कुछ और संदेश उसमें रख देते हैं ताकि हम सब अपने सभी सुनने वालों को, जो ये रेडियो फाहोन है 188 देशों तक ये सुना जा सकता है और अन्य देशों में जो इस समय जो कार्यक्रम को सुनते हैं, तो फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो जो डनहाग शहर से न्यूटन स्ट्रीट 25 से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। आज का विषय जो भंडारा रखा गया है, और उस ओर बढ़ने से पहले जो विषय से पहले है तो बबली जी हम सबको सुनाने वाले हैं।
1: हाँ जी जरूर, कर्म, जिसका विषय है कर्म। मादा बिच्छू की मृत्यु बहुत ही दुखदायी रूप में होती है। मादा बिच्छू जब अपने बच्चों को जन्म देती है तब यह सभी बच्चे जन्म लेते ही अपनी माँ की पीठ पर बैठ जाते हैं और अपनी भूख मिटाने हेतु तुरंत ही अपनी माँ के शरीर को ही खाना आरम्भ कर देते हैं।
0: तो बबली जी, मादा बिच्छू यानी कि जो बिच्छू होते हैं ना,
1: हाँ जी,
0: जिसे हम कहते हैं स्कॉर्पियन
1: नर, हाँ जी,
0: मादा बिच्छू,
1: हाँ, नर और मादा, नर हुआ आदमी, मादा हुई औरत।
0: ओ ऐसा,
1: हाँ जी,
0: तो ये यानी कि जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं,
1: हाँ जी, क्योंकि बच्चों को जन्म तो माँ ही देगी ना, मादा नर नहीं दे सकता था।
0: पर और क्या संदेश है?
1: और तब तक खाते हैं जब तक कि उसकी केवल अस्थियां ही शेष ना रह जाएं। वो तड़पती है और कराहती है लेकिन यह बच्चे पीछा नहीं छोड़ते और यह बच्चे उसे पल भर में ही मार देते हैं, बल्कि कई दिनों तक मादा बिच्छू मौत से बदतर और असहनीय पीड़ा को झेलती हुई दम तोड़ती है।
0: ये तो बड़ा आश्चर्य वाला बात है।
1: हाँ जी, क्योंकि बच्चे पल भर में नहीं मारते, उसे तड़पा तड़पा के मारते हैं
0: बिच्छू का विशेष। दोस्तों ये कार्यक्रम में हम एक सुंदर सा गीत जरूर इसमें जोड़ देते हैं ताकि हम सब ये संदेश जो अभी बाकी है और आपके लिए रखने वाले हैं।

0: ये सुंदर गीत जो फिल्म का नाम लक्ष्मी से निकाला गया, जिसमें अक्षय कुमार ने अपना कला से प्रदर्शन दिया, जिसका और सुंदर संदेश हम सब अभी जो ये गीत के माध्यम से भी कुछ न कुछ संदेश हम सब कोशिश कर रहे हैं यहाँ आपके लिए रखने को। कहने का तो ये है कि देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो बबली जी, आगे में संदेश बिच्छू का संदेश और क्या संदेश है?
1: मादा बिच्छू की मौत होने के पश्चात ही यह सभी बच्चे उसकी पीठ से नीचे उतरते हैं। 84 लाख के कुचक्र में ऐसी असंख्य योनियां हैं जिनकी स्थितियां अज्ञात हैं। कदाचित इसलिए भवसागर को आगम और अपार कहा गया है। संत मत के मुताबिक यह भी मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का ही भुगतान है।
0: तो ये भी कर्मों का फल कहा जाता है ना?
1: हाँ, फल भी कह सकते हैं जरूर। अर्थात इंसान इस मनुष्य जीवन में भी कर्म करेगा। नाना प्रकार की असंख्य योनियों में इन कर्मों के आधार पर ही उसे दुख और सुख मिलते रहेंगे, यह तय है। मनुष्य जन्म बड़े ही मुश्किल से मिला है। यह जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं ना, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था, और इनमें से भी कोई सेठ साहूकार या कुछ और होंगे। इनके गुरु भी इन्हें नाम का भजन करने को कहते थे तो यह भी हंसकर जवाब देते थे कि अभी हमारे पास समय नहीं है। वो मनुष्य जन्म हार गए, परमात्मा की भजन बंदगी नहीं की और पशु योनि में आ गए। अब देखो समय ही समय है, लेकिन अब गुरु नहीं है। बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं, कोई दुत्कारता है तो कोई फटकारता है। कर्म बहुत रुलाते हैं और किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। अगर हम अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? परमात्मा की बंदगी कर्म फलों को भी धो डालती है। हमें चाहिए कि हम नियमती परमात्मा का भजन सिमरण करते रहें और उनका शुक्रिया अदा करते रहें।
0: तो ये संदेश हुआ बिच्छू का, और जो जा करके उनके बच्चों कैसे खा जाते हैं ना।
1: हाँ जी।
0: और करनी का फल यानी कि 84 लाख योनियों में हम सब भी मनुष्य का जीवन में को प्राप्त हुआ है, और क्या करना है ये तो बस हम किसी को ये नहीं कह सकता क्या ठीक है या अच्छा है। हमें तो बस ये मौका मिला है कि कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश में अपना संदेश को और रखने को। ज्योति का प्रकाश का यही लक्ष्य होता है कि हमारे जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा सा और प्रकाश आ जाए। दोस्तों, अभी हम सब आपके लिए ये संदेश लेकर आए हैं जो भंडारा कहलाते हैं। जैसे कि अभी आपने सुने भी है कि भंडारा दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि गुरुद्वारा में और वहाँ पर लंगर कहलाते हैं, वहाँ पर पंथी में बैठ करके खाना खाया जाता है, और भंडारा भी जो हम सब जैसे सूरीनाम में, वैसे तो ना कि यज्ञ में, हम लोग सूरीनाम में ऐसे बैठते थे जहाँ पर विवाह संस्कार होते थे आदि, तो वहाँ और किस चीज़ का, कहीं केला का पत्ता तो कभी वारी बोंग का पत्ता पे, और अल्मीनियम के गिलास होते थे, सभी एक साथ में बैठ करके और वहाँ पर भी और भोजन करते थे। मेरे ख्याल से उसे भी भंडारा कहते हैं कि नहीं?
1: जरूर, वो भी भंडारा है। भारत में भी पहले अभी भी पत्तल में भंडारा दिया जाता है, जो प्रसाद होता है। और गुरुद्वारे में आजकल थालियाँ चल पड़ी, थाली में देना शुरू कर दिया,
0: क्योंकि हम लोगों ने सूरीनाम में ऐसे होते थे कि जब खाना जब बटाए लगते थे ना, तो पहले पत्ता को ठोक ठाक करके उसे और अपने स्थान से बैठाते थे, फिर जब पत्ता बटा जाता था तो उसके बाद में चावल लाया जाता था, और चावल कहते जो हम लोग भात से कहते हैं ना, भात।
1: हाँ जी।
0: तो भात से हम लोगों ने जब भात जो बटा जाता था तो उसमें एक यानी कि एक कैसे कहते हैं गहराई बना देते थे, क्योंकि गहराई इसलिए बनाया जाता था उसमें, क्योंकि भात के बाद में अभी दाल आने वाले हैं, और दाल कहीं गिर ना जाए, और खाने का राजा कहलाता है दाल को।
1: हाँ जी,
0: तो दाल के लिए हम सब और तैयारियां करने लगते थे। दोस्तों, हम सब उस ओर बढ़ने वाले हैं जिस ओर का विषय है आज भंडारा, और आप भी इस बात को सुन करके कुछ कुछ ख्याल आते होंगे आपके कि भंडारा कैसे हुआ था, होते थे सूरीनाम में, और कहीं कहीं तो कुछ शेखे नरासी पहले वाले तो पैरा पे बैठ करके भी, और यानी कि भंडारा अपना खाना आदि और खिलाते थे। क्यों ना हम एक सुंदर गीत की ओर बढ़ते हैं और फिर संदेशों में संदेश जो आज है तो हम सब आपके लिए रखने वाले हैं।
1: हाँ जी, जरूर।

0: ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। पब्लिक को तो सब कुछ मालूम होता है कि कौन नेता कैसा है, कौन मिनिस्टर कैसा है, तभी तो उसको कुर्सी मिलती है।
1: तो ये पब्लिक ये सब जानती है, पर आज का विषय जो हमारे है कि हमें संदेश मिला है कि भंडारा क्यों किया जाता है, कैसे कराया जाता है, और उस पर ज़्यादा तादाद में हम सब तो कुछ ना कुछ उसके बारे में बातचीत हो ही चुके हैं, उस ओर बढ़े बबली जी।
0: हाँ जी जरूर। लॉकडाउन में वे लोग पिछले कई दिनों से इस जगह पर खाना बांट रहे थे। लॉकडाउन में लोगों ने जगह जगह खाना बांटा था।
1: हाँ, इंडिया में यहाँ पर भी ना।
0: हाँ जी, पूरे वेरल में
1: कहीं कहीं पे और जा करके खाना को बांटे।
0: हाँ जी, क्योंकि सब लोगों का काम नहीं था, कुछ नहीं था, तो इसीलिए सबने खाना बांटना शुरू किया। तो
1: ऐसे भी है कि मंदिरों में भी, मंदिरों से भी, काफ़ी मंदिरों और ब्यूथ हाउस से भी लोग बना बना करके और खाना को और बांटे।
0: हाँ जी, हैरानी की बात यह थी कि एक कुत्ता हर रोज आता और किसी न किसी के हाथ से खाने का पैकेट छीन कर ले जाता था।
1: ये भारत का वृतांत है।
0: हाँ जी, भारत का। आज उन्होंने एक आदमी की ड्यूटी भी लगाई थी कि खाने को लेने के चक्कर में कुत्ता किसी आदमी को ना काट ले। लगभग 11 बजे का समय हो चुका था और वे लोग अपना भोजन वितरण शुरू कर चुके थे, तभी देखा कि वह कुत्ता तेज़ी से आया और एक आदमी के हाथ से खाने की थैली झपटकर भाग गया। वह लड़का जिसकी ड्यूटी थी, वह डंडा लेकर उस कुत्ते का पीछा करते हुए कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता भागता हुआ दूर एक झोंपड़ी में घुस गया। वह आदमी भी उसका पीछा करता हुआ झोंपड़ी तक आ गया। कुत्ता खाने की थैली झोंपड़ी में रख के पास में बैठा था। उस लड़के ने झोंपड़ी में देखा कि एक आदमी अंदर लेटा हुआ है। चेहरे पर बड़ी सी दाढ़ी है और उसका एक पैर भी नहीं है, गंदे से कपड़े हैं उसके। ओ भैया, यह कुत्ता तुम्हारा है क्या?
1: यानी कि एक कुत्ता जो किसी के जहाँ पर खाना बटा है वहाँ से थैला कहते हैं जो लिफाफा ना।
0: हाँ जी,
1: तो लिफाफा लेकर के और चले जाते हैं।
0: हाँ, वहाँ से भाग गया और भाग के एक झोंपड़ी, यानी जैसे घास फूस की झोंपड़ी
1: बनाते हैं।
0: हाँ जी, झोंपड़ी में घुस गया।
1: तो वहाँ एक व्यक्ति रहते थे।
0: हाँ जी, वो व्यक्ति बेचारा, उसका एक पैर नहीं था और बेचारा गंदे कपड़े पहने हुए तो लेटा हुआ था,
1: ऐसा बीमार आदमी।
0: हाँ जी, बीमार आदमी। और जो कुत्ते को डंडा लेके पीछे भागा कुत्ते के, वो भी वहाँ पर पहुँच गया लड़का। ओ भैया, यह कुत्ता तुम्हारा है क्या? मेरा कोई कुत्ता नहीं है, कालू तो मेरा बेटा है।
1: यानी कि अब समझ में आ रहा है कि कालू कुत्ता का नाम है।
0: हाँ जी,
1: ये गलत फैमिली हमारे सभी सुनने वालों को ना होए।
0: और नहीं, जरूर उसे कुत्ता मत कहो भाई, वह आदमी बोला। अरे भाई, यह हर रोज खाना छीनकर भागता है, किसी को काट लिया तो? ऐसे लॉकडाउन में तो डॉक्टर कहाँ मिलेगा, इसे बांध के रखा करो। इतने में कुत्ता उठकर बाहर चला गया। गरीब बोला, मैं इसे मना नहीं कर सकूंगा, मेरी भाषा भले ही ना समझता हो लेकिन वो मेरी भूख को समझता है। जब मैं घर छोड़ के आया था तब से ही मेरे साथ है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने उसे पाला है या इसने मुझे पाला है, मेरे तो बेटे से भी बढ़कर है। मैं तो इसी रेड लाइट पर पेन बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, पर आजकल सब बंद है। वह लड़का एकदम मौन हो गया। उसे यह संबंध समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उस आदमी ने खाने का पैकेट खोला और आवाज़ लगाई, कालू, ओ बेटा कालू, आ जा खाना खा ले।
1: तो उन्होंने ये आवाज़ लगाई कि बेटा कालू खाना खा ले।

0: अम्मा एक रोटी दे, बाबा एक रोटी दे, ये सुंदर गीत जो पुराने फिल्म से निकाला गया। और बबली जी, इसमें संदेश क्या है? और क्योंकि अभी जो संदेश आप दे रहे थे कि एक कुत्ता जो पशु हो करके और अपने मालिक के लिए और जा करके खाना लाते हैं, तो और संदेश क्या है?
1: हाँ जी, इतने में कुत्ता उठकर बाहर चला गया। गरीब बोला, मैं,
0: यानी कि जब वो व्यक्ति कुत्ते के पीछा पीछा करते करते कोठी में आए।
1: हाँ जी, तो दोनों में बातचीत,
0: कोठी और झोपड़ी में अंतर है ना।
1: हाँ जी, झोपड़ी होती है घास फूस से बनी और कोठी तो सुंदर
0: बड़ा घर।
1: हाँ जी, बड़ा घर,
0: बड़ा मकान।
1: हाँ जी, गरीब बोला, मैं इसे मना नहीं कर सकूंगा। मेरी भाषा भले ही ना समझता हो, लेकिन वो मेरी भूख को समझता है। जब मैं घर छोड़ के आया था, तब से ही मेरे साथ है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने उसे पाला है या उसने मुझे पाला है। मेरे तो बेटे से भी बढ़कर है। मैं तो इसी रेड लाइट पर पेन बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, पर आजकल सब बंद है।
0: तो ये लॉकडाउन के अंतर्गत है, ये भारत देश में एक ऐतिहासिक संदेश जो आप हम सबको सुना रहे हैं।
1: हाँ जी,
0: और दोस्तों ये संदेश अभी और आगे बढ़ाया जाएगा, पर उससे पहले क्यों ना हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं।
1: हाँ जी,
0: गीत का बोल जो इस समय हम सब कर दे मदद गरीब के।

0: फूलो फलो, ये सुंदर गीत जो हम सब चलाए। आज का विषय जो कि भंडारा है और भंडारा का महत्व, अभी तो उस ओर हम सब पहुंच ही नहीं पाए हैं, बस छलांग लगाने वाले हैं। और बबली जी, ये बात तो हम भी जानते हैं कि शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से और बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से, ये बात हम जरूर जानते हैं। पर संदेश में जो आपने रख रहे ये सुंदर संदेश, जो भारत देश के एक इतिहास तथा एक ये कह सकते हैं इतिहास, अभी हाल ही में जब लॉकडाउन के समय पे हुआ है, अभी हाल ही में ऐसा संदेश जो भारत देश में हुआ है, तो उस संदेश में क्या और रखा हुआ है?
1: हाँ जी जरूर। आगे वो कहते हैं, वह लड़का एकदम मौन हो गया, उसे यह संबंध समझ में नहीं आ रहा था।
0: क्योंकि जो वो जो मालिक तथा हाँ, जो आदमी
1: मालिक और कुत्ते का संबंध उस नौजवान को समझ में नहीं आया।
0: ऐसा?
1: हाँ जी। इतने में उस आदमी ने खाने का पैकेट खोला और आवाज लगाई, कालू ओ बेटा कालू, आ जा खाना खा ले।
0: तो वो आदमी ने कालू बेटा को बुलाया, यानी कि वो कुत्ते को बुलाया।
1: हाँ जी, आवाज़ दी। कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उस आदमी का मुंह चाटने लगा, खाने को उसने सूंघा भी नहीं। उस आदमी ने खाने की थैली खोली और पहले कालू का हिस्सा निकाला, फिर अपने लिए खाना रख लिया। खाओ बेटा, उस आदमी ने कुत्ते से कहा, मगर कुत्ता उस आदमी को ही देखता रहा। जब उस आदमी ने अपने हिस्से से खाने शुरू किया तो उसे देखते हुए कालू ने भी खाना शुरू कर दिया, दोनों खाने में व्यस्त हो गए।
0: दोस्तों, ये एक अच्छा संदेश है जिसे शायद हम भूल गए होंगे। पहले भी हम कोई भी यज्ञ में और जाते थे, कोई भी और ऐसा कार्य में जाते थे, तो पहले कुछ नियम होते थे कि कौन पहले खाना खाएगा, और उसके बाद में हम सब बच्चे जब थे तो खाने खाते थे। और आज लोग कहते हैं कि समय बदल गया है, समय से हमें भी बदलना है, पर क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, इसका जानकारी शायद हम सबको नहीं होगा। पर यहाँ ये संदेश है कि देखिए कि एक पशु जो है, पशु जो जा कर के अपने और मालिक के लिए खाना लाते हैं, खाना मालिक के साथ में खाते हैं, और किस प्रकार से मालिक के खाना प्राप्त करते हैं और फिर खाना को खाते हैं।
1: हाँ जी। उस लड़के के हाथ से डंडा छूट गया, जो पीछे कुत्ते के भागा था उसके हाथ से डंडा छूट गया,
0: यानी कि जो खाना का रखवाला था।
1: हाँ जी। और डंडा नीचे गिर पड़ा। जब तक दोनों ने खा नहीं लिया, वह अपलक उन्हें देखता रहा। अंत में लड़के ने कहा, भैया जी,
0: यानी कि उसे आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार का अवभेद हो रहा है यहाँ, किस प्रकार का और जो एक पशु और एक मनुष्य का।
1: हाँ जी। भैया जी, आप भले ही गरीब हो, मजबूर हो, मगर आपके जैसा बेटा किसी के पास नहीं होगा। कहते हैं, कहते कहते उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और उस आदमी के हाथ में रख दिए।
0: तो कहने के ये बात हो जाता है दोस्तों कि देखो, एक पशु जो अपने और बुजुर्ग यानी कि अपने और मालिक के लिए खाना तैयार करके और लाते हैं और तथा वहाँ से छीन करके लिफाफा लेकर आते अपने मालिक के लिए, हमें शायद ये संदेश ये देता रहा होगा कि हम शायद बहुत भीड़ भाड़ के जिंदगी में जी रहे हैं, हमें अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए तो दूर, अपने नाना नानी आजा आजी जो हमारे बुजुर्ग है, उनके लिए तो समय है ही नहीं। तो हम कहेंगे कि हमें बहुत भीड़ भाड़ है, हमें अपने जीवन का करियर को बनाना है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है और हमें अपना जीना जीना है। तो यहाँ एक ऐसा एक पशु, एक कुत्ता हो करके और जो जा करके अपने मालिक के लिए, जो अपने मालिक के सेवा के लिए क्या करते हैं। बबली जी, ऐसा क्यों ना क्यों हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं, गीत के बाद में ये संदेश जरूर आप और आगे ले जाना।
1: हाँ जी जरूर।
2: ये समझो और समझाओ।

0: दाल रोटी खाओ प्रभु की गुण गाओ, ये सुंदर गीत जो हम सब कार्यक्रम में रखे। दोस्तों आज का जो विषय है भंडारा, अभी उस ओर हम सब छलांग लगाने वाले हैं। समय पे हम सबको भी ध्यान देना है बबली जी, पर आज का संदेश में जो ये भी संदेश हम रख देते हैं, अपने हौसला को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी हौसला को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी के ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जो अभी संदेश बबली जी ने सुनाई कि एक पशु जो एक कुत्ता और जा करके और अपना संदेश हम मनुष्य को और यानी कि देते हैं। कभी काल के हम लोग पशु, आजकल तो व्हाट्सएप बरे काफ़ी बनते हैं बबली जी।
1: जी।
0: और व्हाट्सएप बरेख में देखो रंग बिरंगी और संदेश पशु पंछी के ओर से लोग और बना बना करके रख देते हैं, और उसमें हम सब के कितना सीख मिलता है दोस्तों। और आज के विषय जो बबली जी हम सबको आगे सुनाने वाले हैं, क्या संदेश है बबली जी?
1: हाँ जी, आगे वो कहते हैं, रहने दो भाई, किसी और को इसकी ज़रूरत होगी, मुझे तो मेरा सपूत कालू ला ही देता है। मेरे बेटे के रहते हुए मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं। वह लड़का हैरान था कि आज आदमी आदमी से छीनने को उतारू है और यह कुत्ता बिना अपने मालिक के खाए खाना भी नहीं खाता है। उसने बड़े प्यार से कालू के सर पर हाथ फेरा और बोला, कल से खाना लेने आ जाना कालू, हम तुझे 2 पैकेट देंगे, ठीक है? और हाँ, किसी से छीना नहीं, सीधा हमसे लेना।
0: तो ये संदेश है कि वो यानी कि जो भंडारा करते थे तो कुत्ता को ये संदेश देते हैं ना कि आ करके रोज और
1: हाँ
0: खाना ले जाना।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: अपने मालिक के लिए।
1: हाँ, और 2 पैकेट देंगे कल से,
0: कल से जो छीन कर ले जाते थे उसके छीनने की जरूरत ही नहीं।
1: हाँ जी, अब दोनों के 2 पैकेट मिलेंगे, एक मालिक के लिए एक कुत्ते के लिए। इस संदेश से हमें शिक्षा भी मिलती है।
0: शिक्षा जरूर जरूर, कुछ उसके बारे में आप बताओ।
1: हाँ जी, कालू तो जन्म से ही जानवर है, फिर भी वह उसकी शक्ति का उपयोग किसी गरीब मजबूर की सहायता करने में लगा रहा है। हमें तो भगवान ने असीम कृपा का मानव जन्म दिया है और हम कोई दवा के नाम पर, तो कोई हॉस्पिटल के नाम पर, तो कोई अन्य किसी नाम से किसी मजबूर को लूट रहे हैं।
0: ना ही सिर्फ हॉस्पिटल के नाम पे, पर आश्रम के नाम पे और ऐसे कितने प्रकार के चीजों पे लोग को लूट मार में लगे हुए हैं।
1: हाँ जी, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलने वाला है, ऐसा ना हो कि हमने कोई सत्य कार्य ही नहीं किया और हमारा ये अमोलक जन्म चला गया।
0: तो दोस्तों इन बातों पे जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ये सुंदर शरीर ये सुंदर काया हम सबको प्राप्त हुआ है, क्योंकि पाना तो सभी चाहते हैं भगवान को, पर पकड़े बैठे हैं अभिमान को। तो अभी हम जो आज का विषय है उस ओर छलांग लगाने वाले हैं, पर क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते हैं।

0: ये सुंदर गीत जो हम सब सुने और जा कर के जिसमें राजेश खन्ना ने अपना कला से प्रदर्शन किया कि जिसने ऐसा नहीं कि कोई ऐसा है कि कभी जाने अनजाने में कोई पाप नहीं किया होगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा संदेश हम सब छलांग लगाने वाले हैं, जो आज का भंडारा है विशेष और यानी कि तेईमा, तो भंडारा से पहले बबली जी मेरे ख्याल से आप फिर कुछ कहने वाले हैं, आप उंगली उठा चुके तो हम आपका माइक जरूर ऑन पे कर देते हैं। और क्या संदेश है?
1: हाँ जी जरूर। चींटी कितनी छोटी,
0: चींटी बोले तो जो चूटी,
1: हाँ जी हिंदी में चींटी कहते तो,
0: हाँ जी
1: चींटी कितनी छोटी है, उसको यदि हरिद्वार से ऋषिकेश यात्रा करनी हो तो लगभग 3-4 जन्म लेना पड़ेगा।
0: 3-4 जन्म?
1: हाँ जी।
0: वैसे तो हरिद्वार से ऋषिकेश बस 24 किलोमीटर का फासला है।
1: वो इंसान के लिए ना, चींटी के लिए नहीं।
0: चींटी के लिए 3-4 जन्म लेना पड़ेगा?
1: हाँ जी। लेकिन यही चींटी हरिद्वार जाने वाले व्यक्ति के कपड़े पर चढ़ जाए तो सहज ही 3-4 घंटे में ऋषिकेश पहुँच जाएगी।
0: वो तो पैदल ही पैदल 3-4 घंटे में पहुँच जाएंगे।
1: हाँ जी। ठीक इसी प्रकार अपने प्रयास से भव सागर पार करना कितना कठिन है, पता नहीं कई जन्म लग सकते हैं। इसकी अपेक्षा यदि हम गुरु का हाथ पकड़ लें और उनके बतलाए मार्ग पर श्रद्धापूर्वक चलें तो वो आसानी से आपको भव सागर पार करा सकते हैं।
0: आसानी से भव सागर पार करा सकते हैं। दोस्तों ये सुंदर संदेश जो बबली जी ने हम सबको सुनाए, अभी हम एक गीत की ओर बढ़ रहे हैं। गीत के बाद में हम सब और जो आज का मूल्य संदेश यानी कि भंडारा है उस ओर हम बढ़ने वाले हैं। चला देते हैं ये गीत और फिर उसके बाद में विषय और बढ़ेंगे।
1: हाँ जी।

0: तेरी मेहर बानिया जो फिल्म जिसमें जैकी श्रॉफ अपना और कला से प्रदर्शन दिया, बबली जी ये फिल्म किस चीज़ के बारे में जा रहा था?
1: ये फिल्म जानवर के ऊपर है, कुत्ते के बारे में, कि कुत्ता अपने मालिक का कितना वफादार है। जैकी श्रॉफ का कुत्ता होता है इस फिल्म में, और पूनम ढिल्लो ने भी अभिनय किया है। पूनम ढिल्लो को लोग मार देते हैं, फिर कुत्ता खोजबीन करके लाता है और बताता है जैकी श्रॉफ को कि किसने मारा है पूनम ढिल्लो को।
0: जो जानवर होता है कितना वफादार होता है।
1: हाँ जी, ये दिखाया गया है।
0: चलो आज के विषय जो हम सब रखे हैं, और विषय जो हमारे आज का है भंडारा, विषय जो भंडारा है और उस ओर बढ़ने वाले हैं, पर भंडारा में क्या मिलता है पहले उस ओर के लिए एक सुंदर सा गीत चला देते हैं, क्योंकि भंडारा में हमें ये पता है कि वहाँ कम से कम खाना मिलेगा, तो खाना मिलेगा पीना मिलेगा, भंडारा में अभी क्या क्या मिलेगा ये हम सब और सुनने वाले हैं।

0: क्या मिलेगा भंडारा में, क्या से क्या नहीं मिलेगा। बबली जी, ये बात है कि आज का विषय जो अभी हम सब शुरू किए हैं और भंडारा के ओर हम लोग छलांग लगा चुके हैं, तो संदेश शुरू कैसे होता है?
1: संदेश शुरू होता है, गुरु नानक सच्चे पातशाह रावी नदी के किनारे बैठे थे।
0: गुरु नानक सच्ची पासा,
1: सच्चे पातशाह,
0: ऐसा?
1: हाँ जी। वहाँ पर सेठ धोनी चंद आया, गुरु नानक जी के दर्शन करके मन मोहित हो गया। पूछा, यह कौन है? भाई मर्दाना जी बोले, यह जगत गुरु गुरु नानक देव जी हैं। सेठ बोला, आप मेरे घर भोजन करने आ सकते हैं, आज हमारे पिता का श्राद्ध है। गुरु नानक जी बोले, ठीक है, अपना एड्रेस बता दो, आ जाएंगे। मर्दाना जी बड़े हैरान हुए, यह तो किसी का भोजन मानते नहीं, आज कैसे मान लिया? सेठ धोनी चंद ने कहा, महाराज, मेरा एड्रेस किसी से पूछ लीजिए, यहाँ सबसे अमीर मैं ही तो हूँ। संतो, सतगुरु को घर बुला रहा है और यह नहीं कह रहा, सतगुरु यह घर तो तेरा ही है, यहाँ नगर में 1 लाख मोर होना, किसी के पास तो अपने घर के आगे एक झंडा लगा देता है, मेरे पास 12 लाख मोर हैं, बाहर झंडे लगे हैं, किसी से पूछ लेना सेठ धोनी चंद का घर कहाँ पे है, आज आप बहुत लंगर है, आके खाना।
2: तो लंगर वहाँ पे भारत में बहुत रहता है, तो कैसे उसको प्रोग्राम किया जाता है लंगर का?
1: लंगर सब मिलके बनाते हैं और अपना फिर पहले पूजा पाठ करते हैं, तो उसके बाद पंक्ति में बैठकर सब लंगर खाते हैं।
2: हाँ, तो वो सब फ्री रहता है खरातीस?
1: हाँ जी।
2: बहुत अच्छा, भारत में सब इस प्रकार का लंगर होता है। अभी हम भी भारत गए थे तो वहाँ पे लंगर किया था।
3: राजेंद्र जी, हमने देखा व्हाट्सएप बरख पे कि कितने 100 लोग वहाँ था और आपने लंगर करवा रहे थे।
2: हाँ, 700 लोग था।
3: 700 लोग?
2: हाँ।
3: और यहाँ हम सब मंदिरों में बस 50-60 लोग हो जाते तो हम लोग,
2: हाँ,
3: और 700 लोग का और लंगर करवा के आप पहुँच गए।
2: पहुँच गए,
3: तो क्यों ना हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में अब राजेंद्र जी परेल के पीछे आ गए, क्योंकि हम मुझसे तो कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो ही जाते हैं, और अब आप आ गए हैं तो कार्यक्रम लगातार आगे की ओर हम बढ़ाने वाले हैं।
2: जरूर।

0: रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दिए भगवान। इसका मतलब है कि रघुपति जो है भगवान जो है वो राजा राम हैं और पतित पावन जिनके पावन में हैं वो सीताराम हैं। ईश्वर अल्लाह, ईश्वर हो या अल्लाह हो ये कई नाम, भगवान का नाम ही कोई ईश्वर कहता है कोई अल्लाह कहता है, सबको सन्मति सबको अच्छी बुद्धि दे और सबको तार दे। बहुत ही सुंदर जो गाना था संजय जी ने पिटारा से निकाला, शांता जी तभी है नहीं पिटारा लेके, लेकिन अभी संजय जी पिटारा लेके बैठते हैं। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाने बढ़ते हुए सतगुरु की जो बात चल रही थी, सदगुरु सच्चे पातशाह ने तो तारना था, मर्दाना जी से कहा चल मर्दानिया आज इसी का नंबर लगाते हैं, आज इसको तारने चलते हैं। सच्चे पातशाह सेठ के घर आए, यहाँ पंक्तें लगी है, पंक्तें मतलब कई लंबी लाइनें लगी है, नगर के वासी लंगर भोजन कर रहे हैं, सौ ब्राह्मण भी एक तरफ बैठे भोजन कर रहे हैं, सच्चे पातशाह भी जाकर बैठ गई। सेठ जी ने कहा आ जाओ आप भी यहाँ बैठ जाओ, नानक सच्चे पातशाह ने कहा पहले सबको खिला दो। सेठ कहने लगा आप तो बड़े संतोषी हो सबर वाले हो, नहीं तो यहाँ लंगर बांटना शुरू होता है तो लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। सच्चे पातशाह ने पूछा सेठ ये लंगर किस लिए लगाया है। सेठ कहने लगा महाराज जी ये अपने पिता पितरों की कल्याण के लिए लगाया, आज मेरे पिताजी की बरसी है ना। सच्चे पातशाह ने पूछा तो पिताजी का कल्याण हो गया। सेठ जी ने कहा हाँ महाराज, सौ ब्राह्मण खा के चले गए, सुबह से पता नहीं कितने लोग लंगर करके चले और अभी भी लंगर चल रहा है, सबने यहाँ कहा तेरे पिता का कल्याण हो गया। गुरु नानक जी कहने लगे अभी तेरे पिता का कल्याण नहीं हुआ है, वो तो बाघ की योनि में जंगल की झाड़ी में तीन दिनों तक भूखा बैठा है, तीन दिनों से भूखा बैठे हैं। ये बात सुनकर सेठ हैरान हो गया। सच्चे पातशाह ने कहा ये जो तूने मेरे लिए थाली लगाई है न इसे ले जा, वहाँ नदी के पहले परले तरफ झाड़ में तेरा पिता बैठा है बाघ बन के, मेरी थाली ले जा, हमने अपनी नज़र कर दी है इस थाल में, अब ये प्रसाद बन गया है। सदगुरु के पास दो तरीके के भोग लगता है, एक प्रसाद जो हम पदार्थ खाते हैं, एक गुरु लंगर चख लेवे या गुरु की नज़र पर जावे। सेठ को विश्वास नहीं हुआ, इतने सालों से श्राद्ध कर रहे थे किसी ने कुछ नहीं कहा, इन्होंने तो नई बात कह दी, पर सच्चे पातशाह की बाणी गुरु नानक जी की नज़र बैठकर सेठ कांप गया। कहने लगा महाराज वो तो बाघ हैं कहीं मेरे पे ना आ जाए। गुरु नानक जी कहा जा नहीं आएगा तेरे पे, तू मेरा दर्शन करके जा रहा है, वो जब तेरा दर्शन करेगा निहाल हो जाएगा, वो तेरा पिता है ये उसे ज्ञान हो जाएगा, जा दुनी चंद जब तक तू लौट के नहीं आएगा हम तेरे इंतजार में यहीं बैठे रहेंगे। सेठ चल पड़ा कभी दो कदम आगे कभी दो कदम पीछे, मन कभी नहीं मानता कभी नहीं मानता, पर नाव में बैठकर नदी के परली तरफ गया जहाँ गुरु नानक जी ने कहा था झाड़ियों के पीछे वो तेरा बाप है तू उसका पुत्र है। जब झाड़ियों के पीछे गया तो वहाँ बाघ मिला, और जब झाड़ खड़कने की आवाज़ हुई तो बाघ ने मुंह ऊपर किया दुनी चंद के ऊपर, तो सेठ को लगा मेरा बाप भी मेरे ऊपर ऐसा ही देखता था, उसकी आँख भी ऐसी लगती थी। जाकर प्रसाद का थाल आगे रखा और कहा बापू भूख है न तेरे लिए गुरु नानक जी ने प्रसाद भेजा है, और जैसे ही उसके हाथ से प्रसाद आया वो बाघ का रूप त्याग कर जीवात्मा रूप धारण कर लिया और कहने लगा दुनी चंद जल्दी जा, तेरे घर परमात्मा रूप नारायण आए हैं, उनकी कृपा से मेरा कल्याण हुआ, तुझा उनके चरण पकड़कर वो कहीं चले न जाए। पता है मैं इस योनि में क्यों आया, मेरा अंत समा आया तो पड़ोस में मांस बन रहा था, मांस की बू मेरे पास आई, मेरा अंत समा मुझे लगा, थोड़ा मुझे भी मिल जाए तो मैं भी खा लूँ, तब निरंकार ने मुझे बाघ की योनि दी, अब जितना मर्जी उतना मांस खा क्योंकि अंत समय जैसा मन में ख्याल आ जाए नारायण उसी तरफ भेज देता है। अंत समय नारायण याद आ जाए तो नारायण खुद लेने आ जाता है। आज का हमारा ये वृतांत रहा। अंतकाल नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जो मेरे भक्त त्रिलोचन ने नरमुक्ति पीताम्बर मंगे हृदय बसे। सेठ जब घर आया तो गुरु नानक जी के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा सदगुरु आपने सच कहा, आज मेरे पिता का कल्याण हुआ है। तो इस प्रकार से कल्याण होता है जो कहानी के माध्यम से लोगों को सुनने को और समझने को मिला, किस प्रकार से हो सकता है वही सब लोगों को कल्याण कर सकते हैं। तो क्यों ना हम एक सुंदर से नगमे की ओर बढ़ते हैं।
1: जरूर नगमे की ओर बढ़े, पर राजेंद्र जी ये बात मुझे, जैसे कि अभी आपने कहा कि वो शेर अंत समय आने पे और मांस का और बदबू सूंघ लिए थे, उसे मन किया खाने को।
0: हाँ, जब उसका अंत समय हो गया तो अंत समय में इसलिए कहते हैं कि अंत समय जब आता है तो एकदम भक्ति भाव में और प्रभु की ओर श्रद्धा विश्वास करके अच्छी तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन वहाँ पे कुछ उनकी इच्छा मांस खाने की हुई और जब जो इच्छा होती है उसी तरफ उस योनि में वो व्यक्ति चले जाता है और उसकी बाघ योनि बनी, व्याघ्र यानी बाघ। और फिर परमात्मा ने, प्रभु ने कहा कि जा तो मांस ही खा पूरी जिंदगी भर, खूब मांस खा।
1: तो यानी कि वो शेर का और जा करके जन्म पाया और जाओ कि खूब मांस खाओ।
0: हाँ, बाघ का जन्म पाया और उसने मांस ही खाया और कुछ खाया ही नहीं,
1: बस मांस ही खाए।
0: हाँ,
1: तो दोस्तों ये बात हो जाता है कि किस प्रकार से और भंडारा का महत्व जो आज हम सब और आपके लिए रखे। राजेंद्र जी वो गीत की ओर हम सबको बढ़ना है जिसका हमें बेचैनी से इंतजार नहीं है, फिर भी लागी छूटे ना।
0: हाँ, लागी छूटे ना तो बहुत ही बेचैनी से इंतजार रहता है।
1: दोस्तों ये बात हो जाता है कि जिसके मन में ये होता है कि हमारे दो हाथ, हम अपने दो हाथ से कमाए और 100 हाथ को खिलाए, तो जो ऐसा सोचते हैं तो उनके कहावत है कि भंडार हर समय हरा भरा रहता है। तो क्या इसमें संदेश है, क्या सीख है, ये हम आप पे निर्भय रख देते हैं। पर हमारे जो राजेंद्र जी है पनेल के पीछे वही गीत और बढ़ रहे हैं। राजेंद्र जी
0: जी
1: चला दीजिए।
0: जरूर।

दूर हूँ फिर भी निशाना है तेरा, और सोच ले फिर से। दूर तो रेडियो के माध्यम से सब लोग अपने अपने घर में और अपने काम में लगे हैं, लेकिन जो रेडियो का संदेश है एक जगह से बोला जाए और 188 देशों में चले जाता है, जैसा कि संजय जी कहते हैं हर समय, सब लोग वहाँ संदेश पाते हैं। और मुझे लगता है कि संदेश सुन के सबको कुछ ना कुछ ज्ञान का जो भंडार है उन पे उनको भी कुछ मिलता है, और उसको आगे की ओर वो अपने लिए कुछ कार्यक्रम अच्छे से करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को कि इतनी प्रेम से रेडियो पावन हिंदुस्तानी को सुनते हैं और उसको विचार करते हैं, और हम लोगों को उसका धन्यवाद भी देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।

0: सनम।
1: जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक सच्चे और अच्छे दोस्त भी ये कहते हैं कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। आप सभी को हार्दिक से धन्यवाद दिया जाता है कि जो कि कार्यक्रम में और सहयोग दिए अपने हमारे साथ, जो बबली जी जो अपने ओर से सहयोग दिए, हमारे पैनल के पीछे भाई राजेंद्र सिंह जी और मैं हूँ आपका सेवक संजय। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।